मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 48 सेकेंड्स हुए हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

ये आकाशवाणी लखनऊ है। प्रकृति का शांति और नई ऊर्जा लिए प्रातः का आगमन हो रहा है। मंद पवन संग पंछियों का सुर, उगते सूर्य की लालिमा, धरती पर मनोहारी छटा बिखेर रहे हैं। ऐसे पवित्र वातावरण में योग व्यायाम करना शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है और विचारों को सकारात्मकता प्रदान करता है। दिन भर नई शक्ति, आत्मविश्वास, एकाग्रता बनाए रखने के लिए शुरू कीजिए योग और जीवन में संतुलन बनाइए। हम भी आ चुके हैं लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात।

0: अपने दैनिक कार्यों के साथ हमारे श्रोता रेडियो सेट ऑन कर चुके हैं और उन्हें इंतजार है देश दुनिया में हो रही गतिविधियों को जानने का। तो देर कैसी, प्रातः के 6 बजने ही वाले हैं। चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, सुन लेते हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: लाग था
2: आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगूबाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन

ईच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। आईएनएस दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। आईएनएस संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। आईएनएस अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्वागत है आप सभी का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 किलोहर्ट्ज पर। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। और आज योग दिवस है, तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय है कृषि चर्चा का। आज की कृषि चर्चा में खरीफ में दलहन उत्पादन विषय पर आइए सुनते हैं अमरनाथ सिंह से की गई भेंट वार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों,

0: या थोड़ी सा ढलुआ खेत हो,
1: हाँ पानी निकल जाए,
0: पानी निकल जाए, ऊसर जमीन अगर है तो कोशिश करें कि उस खेत का चुनाव ना करें, क्योंकि उसमें सफलतापूर्वक दलहनी क्रॉप नहीं ली जा सकती।
1: खेत की तैयारी में क्या कुछ खास है?
0: खेत की तैयारी में गर्मी के सीजन में गहरी जुताई करें मिट्टी पलटहर से, उससे दो फायदा होता है, एक तो खरपतवार कम हो जाता है, दूसरे जो हमारे हानिकारक कीड़े होते हैं जो आगामी फसल के हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जमाव प्रभावित कर सकते हैं, उन सबों से भी नियंत्रण हो जाता है। और जब सूर्य की रोशनी हमारी जमीनों पे पड़ती है तो हमारी जो जमीन है वो जल धारण क्षमता और हर तरह से वो ठीक ठाक हो जाती है, खास करके खरपतवार कीट से इसके छुटकारा पाए जाते हैं। इसे
1: उन्नत प्रजातियों की बात करें तो अरहर, उड़द और मूंग की कौन कौन सी वेराइटी अच्छी है जो प्रति इकाई क्षेत्र में अच्छी पैदावार देती है?
0: देखें, अरहर दो तरह की प्रजातियां हैं, एक तो अरहर में अगेती प्रजाति है जो लगभग 30-35 दिन में हो जाती हैं, उसमें उपास है UPAS, उसको हम 60 में उपास 120 कहते हैं, पारस है टाइप 21 है, ये सब लगभग 130-135 दिन में हो जाती हैं, 18 से 20 कुंटल इनका औसत उत्पादन होता है। और जो देर से पकने वाली अरहर की प्रजाति है उसमें नरेंद्र अरहर 1, नरेंद्र अरहर 2, मालवीया चमत्कार, पूसा, बहार, अमर, ये सब बहुत अच्छी प्रजातियाँ। उसी तरह से मूंग में नरेंद्र मूंग 1, पंत मूंग 1, मालवीया जागृति, मालवीया कल्याणी, आजाद मूंग 1 है, पंत मूंग 3 है, और उर्द में भी इसी तरह से शेखर है, नरेंद्र उर्द 1 है, और IP 94-1, ये सब उन्नतशील प्रजातियां हैं। और इनका चुनाव करते समय कोशिश करें कि इनकी खरीदारी विश्वविद्यालय या सरकारी संस्थान से करें।
1: जी, नजदीकी जो राजकीय कृषि बीज भंडार है
0: जी,
1: वहां से भी ले सकते
0: जी,
1: हैं
0: जी, जी,
1: सहकारी समितियों के माध्यम से ले सकते हैं, और कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों
0: से भी प्राप्त कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, बुआई के समय कौन कौन सी बारीकी है?
0: सबसे पहला काम तो बुआई के समय हमको ये करना है कि बीज का शोधन जरूर करना है
1: जी,
0: उर्द मूंग का हो चाहे अरहर का, 2 ग्राम थीरम प्लस 1 ग्राम कार्बन डाइजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसका शोधन कर दें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बीज की मात्रा नहीं लगती है, लगभग 5-6 kg पर एकड़ के हिसाब से सीड लगता है, चाहे अरहर का हो चाहे इसका हो,
1: उर्द और मूंग का भी।
0: हाँ, मूंग का भी उतना है, क्योंकि हमारी जोत कम हो गई है, थोड़ी कम एरिया हम लोग बोते हैं, तो इसका बीज शोधन जरूर करें। और दूसरी चीज, हम लोग जो सबसे कमजोर खेत होता है उसको दलहन के लिए चुनते हैं, तो ऐसा न करें, थोड़ी जो हमारा मजबूत खेत है उसमें थोड़ी उर्वरक का भी प्रयोग करें। और दलहन से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा है SSP जो सिंगल सुपर फास्फेट होती है, 100 kg पर एकड़
1: जी,
0: और अगर DAP से कर रहे हैं तो 40 kg पर एकड़ को प्रयोग कर सकते हैं, और 12-15 kg पोटास पर एकड़ प्रयोग कर सकते हैं।
1: सिंह साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ में दलहन उत्पादन के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 94-53-34-63-34, 9453-34-63-34, 94-53-34-34। बीज शोधन अवश्य करें, सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें, और अगर पौधा बहुत घना हो जाए तो उसका बिरलीकरण कर दें। इन सब बातों का अगर ख्याल करेंगे तो खरीफ में दलहन से अच्छा उत्पादन किसान भाई हमारे प्राप्त कर सकेंगे।
1: अमरनाथ सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ में दलहन उत्पादन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे खरीफ में दलहन उत्पादन विषय पर अमरनाथ सिंह से की गई भेंट वार्ता कृषि चर्चा कार्यक्रम में। भेंट करता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। जितना बड़ा संघर्ष जीत उतनी ही शानदार, और किसी भी कार्य के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए समर्पण एक महान गुण है। आइए सुनते हैं आज का सुविचार। विषय है समर्पण, वाचन स्वर शीला मिश्रा का।
3: स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों के साथ पैदल भ्रमण को निकले। निर्माणाधीन मंदिर के पास उनकी दृष्टि 3 मजदूरों पर पड़ी। उन्होंने पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, गधे की तरह जुटे हुए हैं, देख नहीं रहे हो?

0: दिन भर काम करने पर थोड़ा बहुत मिल पाता है, पर इतने के लिए ठेकेदार मानो जान निकाल लेता है। स्वामी विवेकानंद ने यही प्रश्न दूसरे से किया। वो बोला, मंदिर बन रहा है, हमारी तो किस्मत में यही था कि मजदूरी करें, सो कर रहे हैं। तीसरे व्यक्ति ने भाव भरे हृदय से उत्तर दिया, भगवान का घर बन रहा है, मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरी पसीने की बूंदें भी इसमें लग रही हैं। जो भी मिलता है उसी में मुझे खुशी है, गुजारा भी चल जाता है और प्रभु का नाम भी हुआ जा रहा है। स्वामी जी ने शिष्यों से कहा, ये अंतर है तीनों के काम करने के ढंग में। मंदिर तीनों बना रहे हैं, पर एक गधे की तरह मजदूरी में, दूसरा यंत्रवत भाग्य के नाम पर दुहाई देता हुआ और तीसरा समर्पण भाव से जुटा हुआ है। इसी समर्पण के सहारे आत्मा और परमात्मा के बीच तादात्म्य उत्पन्न होता है और अजस्र शक्ति के स्रोत का द्वार खुल जाता है। कठिन परिस्थितियों और हजारों विपत्तियों के बीच भी मनुष्य आत्मविश्वास के सहारे आगे बढ़ता जाता है और अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। वस्तुतः समस्त शारीरिक और मानसिक शक्तियों का आधार यही समर्पण है। इसके अभाव में सारी शक्तियां सुप्तावस्था में पड़ी रहती हैं। जैसे ही समर्पण भाव जागृत होता है, अन्य शक्तियां भी उठ खड़ी होती हैं और आत्मविश्वास के सहारे असंभव समझे जाने वाले कार्य इसी समर्पण से पूरे हो जाते हैं। विराट वृक्ष की शक्ति छोटे से बीज में छुपी रहती है। यही बीज खेत में पड़कर उपयोगी खाद पानी प्राप्त करके बड़े वृक्ष के रूप में प्रस्फुटित होता है। उसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी समस्त संभावनाएं और शक्तियां बीज रूप में छुपी हुई हैं, जिनको विवेक के जल से अभिसंचित कर और श्रेष्ठ विचारों की उर्वरा खाद देकर जागृत किया जा सकता है। यदि व्यक्ति अपने अंदर की अमूल्य शक्ति और सामर्थ्य को जान लेने में सफल हो जाए तो वो सामान्य से असामान्य और असामान्य से महान हो सकता है। मनुष्यों की संगठित शक्ति यदि श्रेष्ठ मार्ग पर चल पड़े तो विश्व का कायाकल्प कर सकती है। शक्ति के उदित होते ही असंभव समझे जाने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं, जिनको पूर्ण होते हुए देखकर आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वैयक्तिक जीवन में भी समर्पण ही संपूर्ण सफलताओं का आधार है। विश्वास के अभाव में श्रेष्ठतम उपलब्धियों से लोग वंचित रह जाते हैं। असफलताओं का कारण है अपनी क्षमता को न पहचान पाना और अपने को अयोग्य समझना। जब तक अपने को अयोग्य, हीन, असमर्थ समझा जाएगा, तब तक सौभाग्य और सफलता का द्वार बंद रहेगा।
1: समर्पण, ये विषय था आज के सुविचार का। वाचन स्वर शीला मिश्रा का था।

आराधना, ईश्वर की पूजा शब्दों की गिनती नहीं बल्कि हृदय की भावना है। जब हम ईश्वर को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं तो बाकी सब अपने आप सही स्थान पर आ जाते हैं, सभी कार्य सफल हो जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना 747 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप और डीटीएच पर भी। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, जहां से आप 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुराजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग दिवस कार्यक्रम में लिए चलते हैं।
1: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
3: थैंक यू, नमस्ते। एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री रविंद्र नारायण रवि एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट

0: গল শ্রী শুভেন্দু অধিকারী হ্যাভ অ্যারাইভড অ্যাট দি আইকনিক রেড রোড অ্যান্ড দি অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার উইল বি লিডিং দি নেশন টুডে অ্যান্ড হি উইল personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging. And we can see that everyone is assembled here and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
1: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए। यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे। इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं और यहां पर अब संबोधन हो रहा है।
0: श्री प्रताप राव जाधव, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष।
1: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ।
2: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने यूट्यूब पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत

वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों का की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है, योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के, मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस

that we can work to ensure that age does not reduce human potential. Yoga can help human life to aspire for constant growth. Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रियाओं और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है, लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं, तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टा

0: मसू कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was the Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi addressing the gathering at Red Road, Calcutta on the occasion of the International Day of Yoga 2026. And lakhs of yoga enthusiasts have assembled here at the Red Road Neelam, and everyone is looking forward to the Honourable Prime Minister, who will lead in the day's yoga आसनास सेलिब्रेशंस हियर टुडे।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विशाल जनसमूह को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता से स्वागत का उल्लेख किया, साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया। और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या ना हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है, जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगा

0: योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन हैं वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं बल्कि वो मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honorable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
0: जी, और इस समय यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहां पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
2: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था ले आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए, निजर जाएगा।
0: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं हम सब और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है। योग साधकों के बीच
1: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट अराइव्ड एंड ही विल बी गोइंग टू द डेजिग्नेटेड एरिया एंड ही हैज जस्ट अराइव्ड देयर एंड ही विल बी परफॉर्मिंग द आसनास फ्रॉम हियर and he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road, and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
0: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की। विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूँगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं।
3: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है। मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है।
0: जी,
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी प्रिवेंट करता है और साथ में इसको के थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं।
0: जी,
3: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि सारी जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हमारे जो हेड का, सिर का वेट है उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है।
0: जी, यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं उसके बहुत सारे लाभ है, ये हमें आपने अभी बताया। हम

0: श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है। ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है।
1: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से
0: जी और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं, और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
2: गुरुजी मुनीश नाजी, वी वुड आल्सो लाइक टू नो फ्रॉम यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द बिगिनिंग ऑफ दिस आसना।
3: यस, एक्चुअली आसन को हम इस तरह से समझें कि सीट ऑफ अवेयरनेस, हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रीवासन है इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से, ये जागृत होती है और उसकी आसन वहां पे अवेलेबल हो जाती है। मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुंच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहाँ से शुरू होती है और ये बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं। तो
0: जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनीश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है आध्यात्म में।
3: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस जानता नहीं है, है ना। अगर हम कहते हैं जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म, जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है, उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है ना, जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है। इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना। हमारी चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर उसका प्रेजेंस हमारी टोटालिटी पर रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं, हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
0: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं।
1: स्कंध चालन जो है ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है, और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
0: जी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नजर आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए, तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
1: योग में करियर के ऐसे जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चले जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, MSc है, MA है और PhD है
0: जी।
1: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन

0: होगी, उस तरह से आपका कैरियर आप डिसाइड कर सकते हैं, वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि।
1: जी, मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूँगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना, योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है?
2: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
1: जी,
2: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं, जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे
1: जी।
2: तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है। आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है
1: जी। Yes, and और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है। और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
0: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं
1: जी।
0: एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन।
1: Jee.
3: Yes, and as you were mentioning, Neelam, that today is the International Day of Yoga, and the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Healthy Aging. And the Honorable Prime Minister also mentioned in his speech that in the 1920s, Paramhamsa Yogananda set up the yoga center in Kolkata and also at other places. And today, the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone is indeed a gift for humanity by India to the world.
1: जी, यहां पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जमीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ तो अर्धचक्रासन है, हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को, हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहां पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
0: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है,

0: स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
1: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
0: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है
1: जी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नज़दीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नज़दीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके। और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक।
2: And we can also see Neelam and the Honorable Prime Minister is going to many enthusiasts and volunteers who have come here and he is interacting with them and he is just pepping them up. This shows that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
1: जी बिल्कुल। और ये जो आसन है इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है। वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए। और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए। अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए। और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है। और जो हमारी पंचवायु कही गई है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है
1: जी।
0: तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है, साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है
1: जी। और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहां पर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में। यहाँ पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए। बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य। कौशिक जी,
2: यस एब्सोल्युटली, एंड एज वी मेंशन्ड अर्लियर आल्सो द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टेकिंग कीन

0: interest, especially among the teenagers and youngsters who are present here, and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
1: जी, और अब यहां about this asana, अभ्यास किया जा रहा है शशक आसन का. खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशक आसन करते हैं, और यहाँ पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशक आसन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है. और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है. और अब यहाँ पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा. सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए उत्तान मंडुकासन. प्रतिमा जी, इस आसन के बारे में आप हमें बताएं.
2: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडुकासन. शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है, और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं. उसके जस्ट बाद जो काउंटर पोस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडुकासन. ये स्पेशली लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है. साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज़ का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है. साथ में मन को भी शांत करता है, और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है. एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये.
1: जी, और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है. तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है, और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता.
0: And now I think the enthusiasts are performing Vakrasan.
1: So जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा. तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है. प्रतिमा जी,
2: बिल्कुल सही है कि हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है. ये मोड़ कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है. तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है. साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन.
1: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन,
2: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है.
1: जी, और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नज़र से सभी को देखते हुए और परखते हुए, यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
0: जस्ट गाइडिंग देम टू डू द उन्हें बिल्कुल गाइड कर रहे हैं परफेक्ट मैनर. एंड नाउ प्रतिमा जी, अबाउट दिस पर्टिकुलर आसना, इफ यू कैन शेयर विद आवर लिसनर्स.
2: मकरासन, ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है, और ये इसमें देखेंगे आप, जब हम जनरली फीट के बल लेटते हैं इसमें पेट के बल लेटना होता है, और ये हमारी पूरी जो स्पाइन, अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है. और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं, और लोअर लिम और अपर लिम है, इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ हैं, टोज बाहर की तरफ हैं, तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है. तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं. साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है, साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये.
1: जी, और बेहद खूबसूरत बात यह है कि

0: हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है, ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं। अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है। हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की, ताड़ासन की, तो प्रकृति से प्रेरणा ली है। तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चलें। मकर आसन, मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा, उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं। और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। यहाँ पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है, लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है। इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा,
1: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे। ये भुजंगासन, भुजंग मतलब कोबरा पोज, और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है, और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है। साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है। स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है, शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथन करता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है। ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सर्वाइकल वालों के लिए भी आसन बेनिफिशियल कहा जाता है। और सर्पासन अलग है, भुजंगासन अलग है। यहाँ पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं।
0: जी गुरु मुनेश सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रही हैं। आपका क्या विचार है, क्या योग को हमारे स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
2: जरूर जरूर। एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम बच्चे से ही, बहुत छोटे कॉन्शसनेस से ही जब हम योग बताना शुरू करते हैं, योग से उनको जोड़ते हैं, तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं, एक अच्छे इंसान को बनाते हैं। और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है, पूरी जगत का भला होने वाला है। और मैं तो ये बहुत खुश हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं, इससे यही योग की जो नेचर है, योग का जो नेचर लव है, यही दिखाता है, जॉय ऑफ गिविंग है, यही दिखाता है। आज वो अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग, सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है, इतनी इतनी अच्छी हो रही है, मतलब कह नहीं सकता हूं मैं। बहुत ही सुंदर
0: जी,
2: बहुत
0: ही। और यहाँ पर हम अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं जो कि योग भी हमें सिखाता है, प्राणों के साथ जुड़ना। और सेतु बंध आसन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। सेतु यानी पुल, तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना सेतु बंध आसन। इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी।
1: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम, बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है, तो स्पाइन पर भी काम करता है, एब्डोमेन पर भी काम करता है, शोल्डर्स पर भी काम करता है, थाई मसल्स पर भी काम करता है
0: जी।
1: और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से। और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं उनके उन पर भी काम होता है सेतु बंधासन।
0: जी सेतु बंधासन। और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं। योग के बारे में एक अच्छी बात यह भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान से कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र, एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्ध हल आसन शायद यहाँ पर किया जा रहा है। और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले

0: जाकर सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी, ताकि सहज भाव से कर सके। अर्धहल आसन, पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर, और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं। शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना, पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
1: पवन मुक्त आसन जो है आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोश्चर है ये
0: जी,
1: और पवन मुक्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पवन मुक्त आसन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु विकार से संबंधित होते हैं। तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु हैं उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं। तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन, जिसके कि वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है
0: जी। गुरु मुनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी योगाभ्यास करवाते रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।
2: एक्चुअली क्या है, योगा में उसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध है
0: जी।
2: हमारी चित्त की वृत्तियां अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप कितना भी सशक्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियां ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, आपकी वृत्तियां ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें, इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है। हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, और खास करके मेडिटेशन और खास करके योग और ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की ज़िंदगी जिया जाए, है ना। योग योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त की कंट्रोल नहीं है, जो जो अपने कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
3: Dr. Pratima, now I think we are seeing the Kapalbhati, so you can throw some light on this particular aspect.
1: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कपालभाति। कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाति मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा उसको जो धोपनी चलाता है, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सेलेशन और पैसिव इनहेलेशन कपालभाति में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है वो इसको करने से संतुलित होता है। और योग एज सच जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो भी बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं, और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो कपालभाति मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहाँ मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी, गारंटी फॉर हेल्थ हैप्पीनेस एंड हारमोनी, ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही, जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर

0: बिहेवियर अच्छा होगा और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरेक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे
1: जी। और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहज आसन में सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है डॉक्टर प्रतिमा?
0: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में

0: पद्मासन में नहीं बैठ सकते, वो सहज आसन में सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है डॉक्टर प्रतिमा?
1: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है, उन सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है। प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन के क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है, आयाम मीन्स लॉन्ग करना, लंबा करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भव। मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है। लेकिन यहाँ पर योग शब्द है, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भव, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें या योग अभ्यास को हमें बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है। ये भी कहा गया है युक्तम युक्तम त्यजेद वायु युक्तम युक्तम च पूरयेद, मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं।
0: जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है, गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है। और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के, किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं, तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा,
1: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतल प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है, वात सॉरी पित्त जो है हमारा, उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही।
0: जी, जठराग्नि को पूरी तरह से व्यवस्थित कर देता है। जी, और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है।
1: भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद। क्यों? क्योंकि ये हमिंग बी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षण्मुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है। डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये
0: जी।
1: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है, ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
0: यानी शरीर के जो अंदर सॉफ्ट टिश्यूज हैं, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी। जी, भ्रमर जैसी आवाज हम इसमें,
1: और बाहर से कनेक्शन कट भी करना होता है, ताकि हम अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है, तो हम अपने आप से जुड़ पाए।
0: स्वयं से ही हम जुड़ते हैं, अपने भीतर हम जाते हैं। जी,
2: नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द आसनास, दैट इज ध्यान और मेडिटेशन, विच इज अ टाइम फॉर आर सेल्फ असेसमेंट एंड becoming one with the universe. Dr. Pratima,
1: meditation is not just meditation, it is medication of body as well as mind. क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया। तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है। मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना। तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है।
0: जी, और गुरु मुनेश सेना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है।
2: मैं तो

0: नहीं कहूँगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा पता नहीं चल रहा आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें। मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है और कई लोग ध्यान की सिर्फ वो शरीर में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है। सारी अपॉर्चुनिटी इन्फॉर्मेशन जो भी वेव्स में अभी तरंगित हैं, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो, द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो, इमीडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में है आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। सारी चीजें, मेरी खुद की मैंने लाइफ बताऊं कि मेरी स्पाइन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो मैं किसी की हील कर रहा था और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना होगा। मैंने सिर्फ ध्यान करके उस स्पॉट पे एक प्रकाशित सूर्य को देखा, प्रकाशित शिवलिंग को देखा और विद इन 3 मंथ्स मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं ध्यान के, जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि ध्यान से आप अपने पूरे जीवन का उत्तर पा सकते हो, आंसर पा सकते हो। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए ना, आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो, आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी, आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आप रिएक्टिव कम हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिव ज्यादा हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है और जो परम स्वरूप है ना, वही आदि स्वरूप है, वही शिव है, वही अनंत है, वही चैतन्य है
1: जी। आदि योगी से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान। और यहाँ पर अब प्रार्थना शांति मंत्र का पाठ किया जा रहा है।
2: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों पर।
1: और जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है
2: और धीरे
1: इसकी
2: धीरे
1: ये अद्भुत बात है, ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं। और मैं गुरुजी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम पंच तत्वों की बात करते हैं और साथ ही हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूँ जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं और आप एक मैग्नेट की तरह हो जाते हैं। आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुंचने लगता है। तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई।
3: And the Honorable Prime Minister is now making his way towards the exit of the Red Road, and everyone who were present here and who were led by the Honorable Prime Minister on the occasion of the 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yogasanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
1: Ji, jal, thal, nabh, sabhi yog mein honge. Hum jante hain ki Bharat mein to suryodaya jab ho raha hai to humne namaskar kiya hai aur saath hi yoga abhyas kiya hai. Duniya ke aise bahut sare desh hain jinme jahan jahan bharatiya dutavas hain unki or se vishesh ayojan honge aur ab kyunki bahut sare desh duniya ke yog ko apna चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है, कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है। तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन

0: का उत्सव ना बनाएं बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ें।
1: योगा 365, दैट इज व्हाट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड मेंशन्ड, एंड वी वुड आल्सो लाइक टू इन्फॉर्म our listeners that as the Honorable Prime Minister has mentioned that the gift of India was just not only Lord Buddha or peace but also yoga, and this yoga has been practiced by Indians since times immemorial. It is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga, has embraced yoga, as it promotes not only healthy lifestyle, but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munesh Sinhaji, you were mentioning about the importance of meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform our audience?
2: Yes, सबसे पहले मैं जो लोग ध्यान करना चाहते हैं या ध्यान की दुनिया में आना चाहते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में वो ना जाएं, सिर्फ स्टैचू बन के 10 मिनट रोज एक महीने की प्रैक्टिस करें, एक समय चुने 10 मिनट या 15 मिनट उस सिर्फ स्टैचू हो जाए, जैसे बच्चे में हम लोग स्टैचू गेम खेलते थे, चलते चलते अचानक कोई स्टैचू चिल्लाता था और हम जिस पोजीशन में होते थे उसी पोजीशन में रुक जाते थे। अपने जीवन में भी आप अपनी किसी एक फेवरेट जगह पे, घर के किसी कोने में आप बैठें और 15 मिनट के लिए सिर्फ स्टैचू हो जाए, और स्टैचू होने के बाद आपके मन की मन, आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर है, वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी। कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सारी आपके मनस्पटल के इसमें चलती चली जाती हैं। आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस, मैं एक विटनेसर हूँ जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूँ, मैं एक दृष्टा हूँ। द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है, आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शसनेस हो जाते हैं, जहां पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शसनेस में विलय हो जाता है। जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है, फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज एक हो जाती है, फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और सिर्फ बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस, जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास, इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते। ह्यूमन जितने भी इस पूरी पृथ्वी पे, जगत पे जितनी भी सृष्टि में लोग हैं उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है, इसीलिए कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं। द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है। शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो वर्ल्डी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है, बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान तो मैं कहूँगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं तो ध्यान करें, इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी। हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीजें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज हो ही रही है कि हम अपने से दूर चले गए हैं। अगर इस प्रयास पे जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस एक हो रही है, और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस जब एक होती है तो प्रकृति की भी कॉन्शसनेस एक होती है, क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है, जो हम है वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम है।
0: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही, और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक

0: तंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हमें बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है। और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं, लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है, और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
1: Yes, and as Guru Munish Sinha ji mentioned, and as you also mentioned, Neelam ji, that today we saw the Honorable Prime Minister lead the nation in performing yogasana at the Red Road Kolkata, but at the same time also yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships, and also adjacent to Red Road there flows the river Ganga, which is also known as Hooghly, and on 500 boats yoga enthusiasts performed yogasanas there, and in the wonderful mangrove of Sundarbans also people performed yogasanas on board their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel and others also performed yogasanas there. And also our border security force personnel performed yogasana on the Thar Desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
0: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल, थल, नभ सभी आज योग में होंगे, और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में, कार्यालयों में, संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं। इन दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया, योग पार्क जो हैं वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं। 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए, और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है, और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं, हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं। और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनकी जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है, तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं, और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है। स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं। आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है। और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी, कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं, उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है, और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा है, क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है, सभी की निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना। विश्व भर में 2500 से ज्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में

0: आज योग किया जाएगा और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं। आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग। आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना। मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स। मैं नीलम मलकानी अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से आप वहां पर सलाहकार, डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित हुए सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
3: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: और अब मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में NEET UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे तीन टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान

परंपरा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है, जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।

0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉरपीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
2: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
4: धन्यवाद फरहत। NTA ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट UG पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्ध योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की

0: हस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है, मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
1: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Headlines the Asian Age. The war between Iran and Israel too continues to dominate front pages of dailies. Iran closes Hormuz amid Israeli attacks on Lebanon, reads the Hindu headline. On the 12th International Day of Yoga 2026, the pioneer writes that 6 lakh people will perform yoga today with Prime Minister Modi in Kolkata. 2 studies led by AIIMS have found that yoga may improve women's hormone and insulin levels, reports the Times of India. An AI-enabled queue management system will be implemented in Kerala's Sabarimala Ayyappa temple from November, reports the Hindu. In just over 3 months, from the end of February until early June, Indian records in athletics were broken 20 times, reveals the Indian Express. And finally, the ASI has made significant discoveries at Rakhigarhi, perhaps the largest site of the Indus Valley civilization, with the recovery of 8 skeletons and pottery offerings, reports the Tribune. DNA testing is underway. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. International Yoga Day being celebrated across the globe today. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in practicing common yoga protocol from historic Red Road in Kolkata. Prime Minister to also commission 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata today. National Testing Agency to conduct NEET UG re-examination in India and abroad this afternoon. 3 Indian-flagged crude oil tankers carrying over 8.6 lakh metric tons of cargo successfully crossed Strait of Hormuz. IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in cricket, India A to take on Sri Lanka A in tri-series final in Dambulla this morning. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। आज दुनिया भर में योग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रूट से मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की कयादत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में 3 बहरी जंगी जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को पानी में उतारकर बहरिया में शामिल करने की रस्म भी अंजाम देंगे। इम्तिहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी आज सह पहर भारत और बैरून मुल्क में नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान मुनाकिद कराएगी। भारतीय परचम बरदार 3 ऑयल टैंकर्स ने कामयाबी के साथ अब नए हुर्मुज पार कर लिया है, जिसमें 8.6 लाख से ज्यादा मेट्रिक टन तेल लदा है। महकमा मौसमियात ने आज जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में आज सुबह दम्बुला में 3 मुल्कों की सीरीज के फाइनल में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अब खबरें तफसील से। आज भारत और दुनिया भर में योग का 12वां आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज योग का मौजू है सेहतमंदी बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद सरगर्म और बावकार बढ़ती उम्र की खातिर योग को जिंदगी भर अपनाने की अहमियत उजागर होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रोड से योग के बारे में बैनर अक्वामी दिन की कौमी तकरीब की कयादत की, जहां आज सुबह हजारों लोग सुबह से ही योग आसन में उनके साथ शामिल हुए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि योग महज जिस्मानी वर्जिश नहीं है और न किसी उम्र के लोगों तक महदूद है, ये इंसानी जज्बे का इजहार है।
3: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
2: वजीर आजम ने कहा कि हमें योग को किसी मखसूस मौके तक महदूद नहीं रखना चाहिए, इसे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
3: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर

0: पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
1: 2015 में योग के आलमी दिन के शुरू होने के बाद वजीर आजम ने नई दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, मैसूरू, न्यूयॉर्क, श्रीनगर और विशाखापट्टनम समेत मुख्तलिफ मकामात से योग तकरीबात की क्यादत की। बहुत से मरकजी वजरा, रियासती वजरा और सीनियर एहलकार भी योग के दिन की तकरीबात में हिस्सा ले रहे हैं, जिसका एहतमाम मुल्क भर में किया जा रहा है। कौमी तकरीब से सेहत, हम आहंगी और इज्तिमाई बहबूद को फरोग देते हुए एक आलमी तहरीक के तौर पर योग के बढ़ते हुए रोल का इयादा होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: योग के आलमी दिन की शानदार तकरीब में आज मुल्क व बैरून मुल्क में लोग पूरे जोश व खरोश के साथ इसमें शिरकत कर रहे हैं। सकाफत की वजारत भारत के महकमा आसार कदीमा के इश्तराक से 100 आइकॉनिक मकामात पर योग के खसूसी प्रोग्रामों का एहतमाम कर रही है और भारत की मालामाल सकाफती विरासत को उसकी पायदार योग रिवायात के साथ जोड़ रही है। बड़ी तकरीबात नई दिल्ली में लाल किला, हरिद्वार, कोनार, हम्पी, महाबलीपुरम, मुंबई, नालंदा, अहमदाबाद, सारनाथ, ले, हैदराबाद और सिलचर समेत 12 अहम मुकामात पर मुनाकिद की जा रही हैं। आयुष की वजारत ने कहा है कि 6 लाख से ज़्यादा तंजीमों ने योग संगम पोर्टल पर इंदराज कराया है, जिससे इस साल की तकरीबात में आवाम की बेमिसाल शिरकत की अक्कासी होती है। बैन अलाक़वामी सतह पर 210 से ज़्यादा भारतीय मिशन सकाफती ताल्लुकात के लिए भारतीय कौंसिल की मजबूत कोशिशों के ज़रिए दुनिया भर में तकरीबन 2500 मुकामात पर योग तकरीबात का इनेकाद कर रही है। दिल्ली में योग तकरीबात कई अहम मुकामात पर मुनक़िद हो रही हैं। नील योग तकरीबात शांति पथ, कर्तव्य पथ, न्यू मोती बाग, कनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क, तालकटोरा गार्डन और यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद हो रही हैं। दिल्ली से रोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में रियासती सतह के योग के आलमी दिन के प्रोग्राम में मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। ये तकरीब सादर में गैरिसन ग्राउंड में मुनक़िद हुई थी। योग के दिन की तकरीब के बाद सदर जमहूरिया रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी पहुंचेंगी, जहां वो मेहमान खसूसी की हैसियत से यूनिवर्सिटी के 36वें तकसीम असनाद की तकरीब में शिरकत करेंगी। गवर्नर मंगूभाई पटेल भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद में सदर जमहूरिया कूनो नेशनल पार्क जाएंगी, जहां वो सहरिया कबायली बिरादरी, चीता ट्रैकर्स और पार्क की फील्ड टीम के अरकान से मुलाकात करेंगी। योग का 12वां सालाना बैन अलाक़वामी दिन मनाने के लिए कौमी राजधानी खित्ते में बहुत से मरकजी वजरा और तंजीमें योग सेशंस में शिरकत कर रही हैं। सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज शांति पथ में योग के दिन की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर एक इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने योग को आलमी सतह पर ले जाकर जबरदस्त खिदमात अंजाम दी हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज योग के बारे में सालाना बैन अलाक़वामी दिन के मौके पर नई दिल्ली के नेहरू पार्क में योग तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में भारत में नॉर्वे के सफीर मे एलन स्टेनर भी शामिल हुए। खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में योग के आलमी दिन की तकरीबात में हिस्सा लिया। अदाकार अक्षय कुमार योग सेशन खेलों के वजीर के साथ शामिल हुए। ब्रह्मा कुमारी संजीम ने भी नई दिल्ली में लाल किले पर योग के आलमी दिन की तकरीब मनाई। उत्तर प्रदेश में आज योग के आलमी दिन के मौके पर खसूसी योग प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। गवर्नर, वजीर आला, नायब वजीर आला, कानून साज असम्बली के स्पीकर, कानून साज कौंसिल के चेयरमैन और रियासत के सभी वजरा ने मुख्तलिफ जिलों में मुनक़िद योग तकरीबात में शिरकत की। सऊदी अरब के रियाद शहर में 500 से ज्यादा शुरका ने कल योग के आलमी दिन के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की, जिससे मुल्क में योग की बढ़ती मकबूलियत और लोगों की जिंदगी में सेहत और तंदरुस्ती को फरोग देने में इसके रोल की अक्कासी होती है। आज योग के आलमी दिन से पहले कल मगरबी ममालिक में योग से दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने बड़े ग्रुपों में योग की वर्जिश की। कनाडा के टोरंटो में ओंटारियो कानून साज असेंबली में सरकारी नुमाइंदों, सिफारती तंजीमों, योग की मश्क करने वालों और तंदरुस्ती से मुतालिक इदारों और कम्युनिटी रहनुमाओं ने योग के एक पुरजोश मश्क में हिस्सा

लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में भारतीय बहरिया के प्लेटफॉर्म्स में देसी टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए तीन बहरी जंगी जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह को पानी में उतारकर बहरिया में शामिल करने की रस्म अंजाम देंगे। बहरिया के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के जरिए डिजाइन किया गया और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के जरिए तैयार किए गए ये तीनों बहरी जहाज लड़ने की कार्रवाइयों की सलाहियतों को मुस्तहकम करेंगे। इसके अलावा ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे और बहरी आबदोज शिकन जंगी सलाहियत को भी मुस्तहकम करेंगे। INS दुनागिरी एक प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट है, जिसका मकसद ब्रह्मोस मिसाइल्स और दरमियानी दूरी की फिजाई दिफाई निजाम से लैस किया गया है। INS संशोधक एक निगरानी करने वाला जहाज है, जो साहिली और गहरे पानी में हाइड्रोग्राफिक ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि INS अग्रह एक आबदोज शिकन जंगी बहरी जहाज है, जिसे टॉर्पेडोज, रॉकेट लॉन्चर्स और सुनार निजाम से लैस किया गया है। ये साहिली दिफा के लिए तैयार किया गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।

0: INS संशोधक एक निगरानी करने वाला जहाज है जो साहिली और गहरे पानी में हाइड्रोग्राफिक ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि INS अग्रह एक आपदोज शिकंजंगी बहरी जहाज है जिसे टॉर्पेडोज, रॉकेट लॉन्चर्स और सुनार निजाम से लैस किया गया है। ये साहिली दिफा के लिए तैयार किया गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कौमी अहलियत और दाखिले का टेस्ट नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान आज कराया जाएगा। नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान भारत में 551 शहरों और बैरून मुल्कों के 14 शहरों में मुनाकिद होगा, जिसमें 22,79,000 से ज्यादा उम्मीदवार इम्तिहान में बैठेंगे। इम्तिहान अंग्रेजी और 12 भारतीय जबानों में मुनाकिद कराए जा रहे हैं। इम्तिहान से कबल इम्तिहान कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने सभी निजाम, जैमर्स, CCTV, तलाशी लेने वाले अमले और बायोमेट्रिक की तस्दीक करने के लिए कल कौमी पैमाने पर मॉक ड्रिल का इनेकाद किया था। NTA ने कहा है कि वो साफ, शफाफ और खुशुसलूबी से इम्तिहान मुनाकिद कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: नीट के इम्तिहान को साफ, शफाफ और खुशुसलूबी से कराने के लिए मुशाहिदीन, कोऑर्डिनेटर्स, पुलिस फोर्सेज और मुंतजमीन समेत 2,00,000 से ज्यादा अमले को तैनात किया गया है। साफ, शफाफ और मुनसिफाना इम्तिहान को यकीनी बनाने के लिए एक कसीर सतही सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी तैनात किया गया है। इसमें CCTV, निगरानी कैमरे, आधार पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक, सील बंद प्रोटोकॉल के तहत मखसूस मकामात पर खुफिया इम्तिहान से मुतालिक साजो सामान को महफूज तरीके से हवाले करने और इम्तिहान से मुतालिक साजो सामान की नकलो हमल के लिए GPS से लैस गाड़ियां शामिल हैं। NTA गलत मालूमात को रोकने, बेजाबतगी खत्म करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निगरानी भी कर रही है। नीट के इम्तिहान आज 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक मुनक़िद होंगे। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 8.6 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा की खेप के साथ भारतीय परचम बरदार खाम तेल के 3 टैंकर्स ने कल आबनाए हुरमुज को कामयाबी के साथ पार कर लिया है और अब वो भारत आ रहे हैं। इन टैंकरों में भारतीय अमले के 94 अफराद सवार हैं। इन टैंकरों के नाम में देश वैभव, देश विभोर और सेमर हेराल्ड हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सोनोवाल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की फैसला कुन क्यादत में हुकूमत भारतीय बहरी मफादात के तहफ्फुज को सबसे ज्यादा तरजीह देने पर काम कर रही है। जनाब सोनोवाल ने कहा कि उनकी वजारत भारतीय मल्लाहों और तवानाई की लाइफ लाइन्स को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की जमानत के लिए तमाम मुतल्लिका एजेंसियों के साथ सरगर्म तरीके से तालमेल कायम कर रही है। 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल MIFF आज इख्तिताम पजीर हो जाएगा। 10 आवेजी फिल्मों, शॉर्ट फिक्शन, एनिमेशन और AI सिनेमा का ये 2 साला फेस्टिवल 15 जून को शुरू हुआ था और आज रात एक शानदार इख्तितामी तकरीब के साथ खत्म होगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: सिनेमा के शानदार रंगों से भरे 5 दिनों के बाद मिफ 2026 आज इख्तिताम पजीर होगा। ताहम इख्तितामी तकरीब से पहले फिल्म शायकीन के पास मुख्तलिफ सेक्शंस में प्रिज्म, बेस्ट ऑफ फेस्ट, नेशनल कंपटीशन, मोजेक और इंडिया लाइव्स एंड लैंडस्केप्स के तहत गैर फिक्शन कहानियों की ताकत का तजर्बा करने का एक और दिन होगा। मिफ के आखिरी दिन की अहम तरीन पेशकश में से एक वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट की स्क्रीनिंग होगी, जो इस लेजेंडरी फिल्म साज की 125वीं सालगिरह के मौके पर दिखाई जा रही है। आशा मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में मुनाकिद होने वाली इख्तितामी तकरीब में बैनर अक्वामी और कौमी मुकाबलों के जुमर में बेहतरीन फिल्मों को 18 अवार्ड दिए जाएंगे। मुंबई से अंकित आप्टे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: भारतीय महकमा मौसमियात ने आज जैली, हिमालयाई, मगरबी बंगाल और सिक्किम में और बहुत तेज बारिश के सबब रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने जुमेरात तक असम, मेघालय में इक्का दुक्का मकामात पर भी तेज बारिश की पेशगोई की है। क्रिकेट में आज डिम्बोला में खेली जाने वाली 3 मुल्कों की सीरीज के फाइनल में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अपने साबिका मैच में शिकस्त को भुलाते हुए इंडिया ए श्रीलंका ए को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने आज योग के आलमी दिन से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की सिलसिले में शह सुर्खी है, आयोग के बैन अक्वामी दिन के मौके पर आयुष की वजारत ने लोगों से बड़ी तादाद में हिस्सा लेने की अपील की। अखबार इंकलाब की शसुर्खी है, सख्त सिक्योरिटी के दरमियान

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। पूरी दुनिया में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में देश का किया नेतृत्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में लिया हिस्सा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। और आज देश के 551 शहरों में आयोजित होगी नीट UG पुनर्परीक्षा। सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम।

योगाभ्यास के। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश ही नहीं दुनिया भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक

0: ओलंपिक रेड रोड पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह से देश का नेतृत्व किया। वहां उन्होंने योगाभ्यास कर योग को दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाने का संदेश दिया। प्रदेश में भी योग दिवस के अवसर पर सभी जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और योगाभ्यास कर निरोगी रहने का संदेश देते हुए प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी का मैं बुंदेलखंड वासियों का, प्रदेशवासियों का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के लोगों को, 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सब के लिए एक विजन प्रस्तुत किया है।
0: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहीं लखनऊ स्थित जनभवन में इस अवसर पर महिला योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाओं ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। इसी तरह विभिन्न जनपदों में प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल हुए। योग दिवस पर विद्यालयों में सामूहिक योगाभ्यास और योग से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां विद्यार्थियों को योग के शारीरिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल के हुगली में तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। इनमें उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं, जिनके खातों में 4,352 करोड़ रुपए की राशि पहुंची है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशभर के किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया।
2: पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रदेश भर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री योगी ने प्रदेश के किसानों की ओर से इस सौगात के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि अन्नदाता के परिश्रम, सम्मान और समृद्धि के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। प्रदेश के किसानों ने खुशी व्यक्त करते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। जौनपुर के एक लाभार्थी ने कहा,
3: किसानों को बहुत फायदा मिलता है। बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए, जुताई देने के लिए काम आ जाता है। उसके लिए हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं। जैसे छोटे मोटे किसान हैं, उनको फायदा हो जाता है, इससे किसानों को आसान हो जाता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ललितपुर में 1,766 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज सहित 221 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड विकास का एक मॉडल बन रहा है। उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना बुंदेलखंड में साकार हो रही है। शुद्ध पेयजल लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है।
4: अब मुझे अच्छा लगता है कि हमारी बहन और बेटियां, हमारी माताएं सिर में घड़ा लेकर के नहीं, हर घर नल की योजना साकार हो रही है। बुंदेलखंड के अंदर शुद्ध पेयजल उनके घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है, तो बुंदेलखंड अब एक मॉडल बन रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी अगर हम कहीं बसाने जा रहे हैं, तो वहां भी बुंदेलखंड में बसाने जा रहे हैं।
0: श्री योगी ने कहा कि ललितपुर में प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित किया जा रहा है।
4: आज ललितपुर बदल चुका है। अब ललितपुर के पास अपना मेडिकल कॉलेज भी है, अटल आवासीय विद्यालय भी है, और अभी 1,500 एकड़ क्षेत्रफल में हम उत्तर प्रदेश का

0: पहला फार्मा पार्क आपके ललितपुर जनपद में बनाने जा रहे हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट UG की पुनर्परीक्षा आज देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 22,69,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को इस बार परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद के कारण रद्द कर दी गई थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और नकलविहीन ढंग से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी केंद्रों पर CCTV कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। केंद्रों पर मजिस्ट्रेटों की तैनाती के साथ पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। प्रदेश में 59 जिलों में नीट की पुनर्परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल विशेष अनारक्षित स्पेशल रेलगाड़ियां चला रहा है। वहीं प्रवेश पत्र दिखाने पर अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों की जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। December 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकान जनगणना का काम कल 100% पूरा कर लिया गया। पहले चरण में निर्धारित 22 मई से 20 जून 2026 तक घरों की गणना का कार्य संपन्न हुआ। राज्य के जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार जनगणना का दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गणना होगी। इसी चरण में जाति गणना भी की जाएगी। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पूरी दुनिया में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में देश का किया नेतृत्व। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में लिया हिस्सा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त। प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान हुए लाभान्वित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। और आज देश के 551 शहरों में आयोजित होगी नीट UG पुनर्परीक्षा, सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह

0: APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से ही बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, जिन्हें हमारे श्रोता ईमेल कर भेजते हैं। आपके मेल आपके गीत। आप सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कालका से हमें मेल भेजा है शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। और 67 मोहाली चंडीगढ़ से मेल है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर और डॉक्टर अमनदीप का। इन्होंने मेल भेजा है और अपना फरमाइशी फिल्मी गीत ये सुनना चाहते हैं। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल ने हमें मेल भेजा है और ये अपनी फरमाइश लिख भेजे हैं। आपकी फरमाइश का गीत हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। और एक मेल है, इसे भेजने वाले हमारे श्रोता हैं, इन्होंने मेल भेजा है। ये हैं जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू, भानु, रामशंकर, रक्षा, रामसागर, रामचरण प्रजापति और इनके घर परिवार के बहुत सारे सदस्य। आपने हमें मेल भेजा है और अपनी फरमाइश भी लिख भेजी है। ये श्रोता हैं, इन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग, आपको नमस्कार, सुप्रभात। ये हैं नरेंद्र, तनेजा, मीनाक्षी और इनके घर परिवार के बहुत सारे सदस्य टाउन करनाल से, इन्होंने हमें मेल भेजा है। और एक श्रोता हैं हमारे, ये हैं, इन्होंने प्यार भरा नमस्कार लिखा है, राहुल नगर ऑक्सीजन पार्क अमरावती से सिद्धार्थ गोंडानी, अर्चना ताई, हीरामण शेंडे, प्रणय, प्रसिद्धि, प्रतिभा, आप सभी सुनना चाहते हैं आंधी फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

मोताला महाराष्ट्र से मेल भेजा है विजय सुरलकर रतनमाला ओम कुमार ने, और एक और मेल है इसे भेजने वाले हमारे श्रोता हैं जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, रमेश चंद्र, आयुषी, अनुज, अर्चना, राजकुमार बोड़ाना, मूसा भाई, और सुदामा नगर खंडवा से मेल भेजा है लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप ने, और नमस्कार के साथ ये अपना फरमाइशी फिल्मी गीत भी सुनना चाहते हैं। ज़रूर सुनवाएंगे श्रोताओं आपको हम आपका पसंदीदा गीत। और ये हमारे हैं श्रोता, ये ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर, मेहराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से इन्होंने मेल भेजा है, और ये मेल है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक, जियाउल, मोहम्मद उमर, राजेंद्र कटारे जी का, और आप सभी सुनना चाहते हैं आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में तीसरी मंजिल फिल्म का ये गीत।

बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मे, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष, इन्होंने हमें मेल लिख भेजा है और अपना पसंदीदा गीत ये सुनना चाहते हैं। ये हैं राजकोट गुजरात से रश्मि, झरना और भरत कुमार। इन्होंने हमें मेल लिख भेजा है और अपना फरमाइशी फिल्मी गीत भी इन्होंने सुनना चाहा है। और अगले जो हमारे हैं ये हैं ग्राम पंचायत काई मऊ कुआरियापुर सैंडी हरदोई उत्तर प्रदेश से मुदित और इनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। इन्होंने योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजी हैं, आपको भी शुभकामनाएं। और इन्होंने संदेश लिखा है, योग हमें खुद से जोड़ता है और जीवन को संतुलित बनाता है। आइए एक संकल्प लें, हर दिन योग करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। और इसी के साथ हम आपको सुनवाएंगे आपका पसंदीदा गीत जिसे आप सुनना चाहते हैं। लता मंगेशकर की आवाज़ है, अगर तुम ना होते फिल्म है।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही वक्त हो चला है आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम से इजाजत लेने का, तो दीजिए अनुमति वैशाली को नमस्कार। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के दौरान शिक्षा क्षेत्र में हुए नवाचारों और विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल से खास बातचीत। वार्ताकार है आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार ने बीते 12 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। सरकार ने नई शिक्षा नीति, रोजगार परक कोर्सेज, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने जैसी पहलों के जरिए उच्च शिक्षा को विद्यार्थियों के समग्र विकास का जरिया बनाया है। बीते 12 वर्षों की इस यात्रा पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति राजकुमार मित्तल जी। राजकुमार जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: प्रोफेसर मित्तल, आप खुद एक शिक्षाविद हैं और एक बहुत ही अहम केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर भी विराजमान हैं, और आपने जो एक लंबा वक्त शिक्षा के क्षेत्र में बिताया है, अपने अनुभव से बताएं कि बीते 12 वर्षों में एनडीए की सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं?
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 12 साल का कार्यकाल रहा वो बहुत ही हम सबके लिए प्रेरणादायक, उत्साही और अनेक तरह के सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी परिवर्तन हुए, और मुझे लगता है कि इन सब परिवर्तनों को करने का जो पीछे आधार रहता है वो शिक्षा ही रहती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी शिक्षा पे बहुत महत्व देते हैं और हम देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसकी प्रगति के रूप में देख सकते हैं, और इसमें शिक्षा नीति में एक ट्रांसफॉर्मेटिव का पोटेंशियल है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके समक्ष विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, क्रिटिकल एरिया में टेक्नोलॉजी के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, मेड इन इंडिया का जो कंसेप्ट दिया, ये सारे के सारे एक बड़े ही इनोवेटिव, रिफॉर्मेटिव टाइप के कंसेप्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए, और इन सबके पीछे जो आधार है वो शिक्षा नीति ही है। शिक्षा में बहुत सारे परिवर्तन आज हम देखते हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बात हो। भारत आज विश्व का तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा हुआ है, और आज बहुत बड़ी खुशी की बात है कि बाहर से भी लोग जो पहले अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़कर IIT IIM से बाहर जाते थे, अब लोग भारत में ही अनेक तरह की संभावनाएं खुली हैं, उसमें आप काम देख रहे हैं, बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, स्टार्टअप लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे लगता है हुआ है। स्वदेशी इंडियनाइजेशन बहुत बड़े स्केल पर, चाहे वो डिफेंस हो, एनर्जी सेक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र हो या और अन्य क्षेत्र, कृषि वगैरह में, इन सब में भी स्वदेशीकरण बहुत बड़े पैमाने पर और जो नवाचार है वो हुआ है। इसके पीछे भी जो मुझे लगता है कि वो शिक्षा ही आधार के रूप में कार्य

0: करता है।
1: जी प्रोफेसर मित्तल, जैसे कि हम लगातार देखते रहे हैं कि प्रधानमंत्री युवा शक्ति को बहुत महत्व देते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि युवा शक्ति ही है वो आगे लीड करेगी और भारत को ग्लोबल लेवल पर एक पहचान देने में अहम भूमिका निभाएगी। तो शिक्षा नीति की जहां आप बात कर रहे थे, बहुत लंबे समय के बाद ये परिवर्तन आया और नई शिक्षा नीति लाई गई, कितनी जरूरत थी इसकी?
0: क्योंकि भारत, हम सब जानते हैं कि विश्व की जो 20% के करीब लगभग युवा शक्ति वो भारत में रहती है, भारत युवाओं का देश है और पॉपुलेशन डिविडेंड जो एक हमें एक यूनिक सिचुएशन हमें दिखती है उसका सदुपयोग करना, उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने युवाओं को स्किल करें, उसकी इम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाएं, उनमें व्यवहारिक ज्ञान दें और उनके लिए अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए नए अपॉर्चुनिटी खोलें। और सरकार आज जो आवश्यकता है, मुझे तो ये लगता है कि जो भारत का विकास है वो उद्यमिता के रास्ते होगा, यानी उनका जॉब सीकिंग बिहेवियर की बजाय जॉब प्रोवाइडर उनका जो बिहेवियर होगा, माइंडसेट, वो बहुत आगे भारत को लेके जाएगा। भारत ऐसा ही देश था जहाँ पर उद्यमशीलता पाई जाती थी और पूरे विश्व का लगभग एक तिहाई जो ट्रेड था, उत्पादन था, वो यहीं से होता था और बेरोजगारी और ये इस तरह की जो दूसरी समस्याएं थी वो उस समय नहीं दिखती थी। तो आज मुझे लगता है कि बहुत युवाओं को उनका जो पोटेंशियल हमारे पास एक अवेलेबल है, ये विश्व में कहीं और इतनी बड़ी संख्या नहीं है, इसका सदुपयोग करना और इसको सही रास्ते पर, इसकी इम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना, इनके पोटेंशियल को रियलाइज करना, इनकी कैपेबिलिटी को इन्हांस करना, ये हम सबके लिए आवश्यक है और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो इसी की तरफ ले जाती है।
1: जी, जैसा कि आपने कहा कि नई शिक्षा नीति ने बिल्कुल नया आयाम दे दिया है शिक्षा को, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग की हम बात करें या खेलों की बात करें, खेलों को भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे वो छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो। तो नई शिक्षा नीति के तहत अगर हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की बात करें, आपके विश्वविद्यालय ने कौन कौन से अहम कदम उठाए हैं?
0: देखिए, जैसे मैंने बताया कि शिक्षा नीति का एक जो स्तंभ है वो है उद्यमशीलता को प्रेरित करना, के लिए हमने अपने विश्वविद्यालय में नव कल्पना के नाम से एक सेक्शन 8 कंपनी खोली है और आपको मैं बताते हुए मैंने बड़े खुशी का अनुभव हो रहा है कि लगभग 25-26 हमारे पास विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने इस कंपनी के अंतर्गत अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराया और वो नए नए आइडिया पे काम कर रहे हैं ताकि अल्टीमेटली वो एक स्टार्टअप कर सके अपना। हम उसके लिए एक हमारा बोर्ड है, इंडस्ट्री के साथ अपना जुड़ाव हम बढ़ा रहे हैं और हमारा कोशिश होगा कि जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं उनको भी इस सुविधा का लाभ दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा उद्यमशीलता की जो भावना है उनमें भी वो जाए, इसकी तरफ हम नव कल्पना के माध्यम से लगे हुए हैं। एक तो ये एक बहुत बड़ा कदम हमने उठाया। दूसरा जो कदम महत्वपूर्ण है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के को आप ध्यान से देखें तो वो ये बात कहती है कि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने विश्वविद्यालय में 12 अभी हॉबी क्लब्स खोले हैं, जैसे कि डांस, ड्रामा, अर्बन गार्डनिंग, खाने पीने का कुजीन, एंटरप्रेन्योरशिप, एनवायरमेंट के ऊपर सेंसिटिविटी और ऐसे ऐसे कुछ फोटोग्राफी, ये खोले हैं। हम ये मानते हैं कि बच्चे को इनमें रुचि लेनी चाहिए अपने स्वभाव और अपनी सोच के मुताबिक। दूसरा, तीसरा, यदि आप देखें तो हमारे विश्वविद्यालय में 250 एकड़ की उसमें भूमि पर ये एक बहुत हरा भरा कैंपस है जिसमें ग्रीनरी के ऊपर बहुत फोकस है, 1.5 लाख से ज्यादा इसमें प्लांट्स लगे हुए हैं। अभी हमने पिछले साल ही इसमें रिकॉर्ड किया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, एक साथ सबसे ज्यादा प्लांट एक समय में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ मिलकर लगाए थे और अब हमारा फोकस यहाँ पर जो फ्रूट बेस्ड प्लांट है वो लगे। हमने एक उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से हर्बल गार्डन भी विकसित किया है। चौथा पॉइंट हम योगा का देते हैं, योगा, मेडिटेशन और उनका जो मेंटल स्ट्रेस लेवल के माध्यम से एक हमने उम्मीद नाम से एक प्लेटफॉर्म किया है। उस प्लेटफॉर्म में हमारे पास योगा के टीचर हैं, मेडिटेशन के हैं, आयुर्वेद के टीचर हैं, हॉस्पिटल हमारा है और भी जो अलग अलग साइकोलॉजी का एक काउंसलर लगा हुआ है। ये सारे के सारे बच्चों में, बच्चों की गाइडेंस, उनकी काउंसलिंग, इसी तरीके से हमारे और भी बहुत सारे इसमें प्लेटफॉर्म है, एनसीसी, एनएसएस, जो विद्यार्थियों के फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग और इंटेलेक्चुअल लेवल को सामूहिक रूप से देखते हैं ताकि उनका विकास समग्रता से बन सके और

0: वो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी और समाज के भी काम आ सके, तो ये भी एक बार हमारी सोच इस दिशा में भी निरंतर चलती रहती है।
1: जी सर, एक अहम पहलू आजकल जिस पर सरकार फोकस कर रही है वो है डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रही है, और दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये दोनों जो चीजें हैं, आपको क्या लगता है कि हायर स्टडीज को किस तरह से और बेहतर बनाएंगी या इसका क्या फ्यूचर है आने वाले समय में?
0: देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं मानता हूँ कि एक टेक्नोलॉजी है जिसका दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, और मैं तो ये मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी जब आती है वो एक नदी में जो जल है उसके प्रवाह की तरह होती है, वो आएगी और नीचे बहेगी जैसे नदी बहती है, इसी तरह टेक्नोलॉजी आएगी और उसका इंडस्ट्री में, समाज में और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का प्रयोग भी होगा। उसका हमें सिर्फ ये देखना है कि हम उसके साथ एडजस्टमेंट कैसे करें, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो दो तीन करेक्टरिस्टिक जो मनुष्य में जो टेक्नोलॉजी से अलग उसको पहचान देते हैं वो है जजमेंट करने का, कि कोई काम करना है नहीं करना, ये जजमेंट टेक्नोलॉजी नहीं देगी, मगर हम व्यक्ति को अपना दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा, अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये जो विवेक का प्रयोग है ये शायद अभी तक प्रकृति ने मनुष्य के पास ही रखा है। लीडरशिप है कि कोई काम कब कर, टेक्नोलॉजी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको यूज करोगे जब आप कहोगे तो तब हो जाएगी, नहीं करोगे तो वो अपने आप तो कुछ नहीं करेगी वो। तो लीडरशिप का जो है इनिशिएटिव लेना, रिस्क लेना, काम करना, लोगों के साथ बातचीत करना, गाइडेंस देना, नर्चरिंग करना, ये ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होते हैं लीडरशिप के, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं उनको रिप्लेस कर सकती। और मेरा ये मानना है कि जो क्रिएशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए क्रिएशन, क्रिएशन कैन नॉट रिप्लेस द क्रिएटर इन ए वे। क्रिएटर से बड़ा नहीं हो सकती वो क्रिएशन। कोई पेंटिंग बनाता है तो पेंटिंग बड़ी नहीं हो सकती, जो पेंटर है वही बड़ा रहेगा, और आगे वो इससे भी बेहतर बना सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए इससे ऊपर भी कोई अभी होगी, तो पहले जो भी टेक्नोलॉजी आती है हम मानते हैं यही अल्टीमेट है, मगर इसमें इम्प्रूवमेंट आदमी करता रहता है व्यक्ति मानव, तो इसलिए तो मानव को तो रिप्लेस नहीं कर सकती, मगर इसमें पोटेंशियल बहुत लाभ का है, क्योंकि जो आज स्कोप है इसका प्रोडक्टिविटी उत्पादकता ये बढ़ाती है, स्पीड पे ये काम करती है, और उसको और बेहतर स्टोरी टेलिंग के तरीके से भी चीजों को प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इसका मतलब इसका प्रयोग लाभ बहुत है शिक्षा में, और हमारा विश्वविद्यालय ये है कि हमने एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है। हमारी सोच है कि जो सभी विद्यार्थी हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाए, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, उसकी इम्पोर्टेंस को और उसके रेलेवेंस को और उसके लाभ को सब बच्चों तक ले जाया जाए।
1: जी सर, अगर रिसर्च की बात करें, जैसे रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो अंबेडकर विश्वविद्यालय में इस तरह के कौन से कदम उठाए जा रहे हैं जिससे जो छात्र हैं वो रिसर्च और इनोवेशन को और अधिक अच्छे तरीके से परस्यू कर सकें?
0: हमारे पहला तो प्रयत्न यही रहता है कि अच्छे विद्यार्थियों को इसमें रिसर्च में लाया जाए, और जो हमारा जो लाइब्रेरी है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसके माध्यम से आज सब जो बेस्ट जर्नल्स हैं वो बच्चों को अवेलेबल कराए जाते हैं, बच्चों के साथ उनकी काउंसलिंग और गाइडेंस और उनके साथ ओरिएंटेशन वो किया जाता है। एक हमारा एमिनेंट लेक्चर सीरीज प्रोग्राम होता है जिसमें जो भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में जिसने काम किया हो उनके साथ लेक्चर होता है, उनके साथ बच्चे इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो रिसर्च है हम उसको प्रमोट करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को, और ज्यादातर बच्चों को फेलोशिप दी जाती है, चाहे वो यूजीसी की फेलोशिप हो, जेआरएफ हो या कोई और फेलोशिप हो, ताकि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और अब हमारा जो प्रयत्न लगातार जारी है वो हम थोड़े थोड़े रिफॉर्म करके पीएचडी ऑर्डिनेंसेज में और बच्चों के साथ संवाद करके हम चाहते हैं कि बच्चों का एक आउटकम बेस्ड रिसर्च हो, यानी रिसर्च फोकस्ड वे में, कि क्या उसका इकोनॉमिक वैल्यू होगी, क्या उसकी सोशल वैल्यू होगी, इस पर हम शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि जो क्वालिटी और जो रिसर्च निकले उसका उपयोग हो कोई, इसकी तरफ हम लगातार कोशिश कर रहे हैं।
1: सर, आपने बताया कि आपके यहाँ स्कॉलरशिप्स, फेलोशिप्स ये सब दी जा रही है छात्रों को बढ़ावा देने के लिए। सरकार ने जो कदम उठाए उनमें एक ये अहम कदम है कि जो स्कॉलरशिप्स और जो फेलोशिप्स हैं इनको भी बढ़ाया है, तो इससे आपको लग रहा है कि कितना परिवर्तन आ रहा है?
0: देखिए, विद्यार्थियों को एक बहुत बड़ा है कि आप यूजीसी की जो जेआरएफ है उसमें लगभग 40-42 हज़ार पे बच्चों को मिल जाते हैं, इतना एक फेलोशिप 5 साल तक बच्चा कोई भी किसी टॉपिक के ऊपर बड़े आराम से बिना किसी तनाव के अच्छे तरीके से

0: कर सकता है, बाहर रह सकता है। तो ये सारी ऐसी बातें हैं जो सरकार ने की हैं और इसके माध्यम से एक उनके आत्मबल को भी बढ़ावा मिलता है कि उनको इस टाइम में कोई नौकरी नहीं ढूंढनी, ये बहुत कॉन्फिडेंस देता है उसमें।
1: सर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में इस वक्त एडमिशन की प्रक्रिया भी चल रही है, तो जो छात्र आपके यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं उनको क्या करना होगा, उसकी क्या प्रक्रिया है?
0: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो मुख्य कैंपस है और जो अमेठी सैटेलाइट कैंपस है उसमें पीजी एडमिशन की प्रक्रिया अभी जारी है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी चला हुआ है सीयूटी के माध्यम से, कोई भी उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है और ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके साथ साथ यदि जो बच्चे दूर दराज में या किसी कारणों से नहीं भर पाते और सीटें जो बच जाती हैं उनके लिए नॉन सीयूटी का भी प्रावधान किया हुआ है। अभी थोड़े दिन के बाद जो यूजी लेवल का है वो भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और मैं तो यही कहूंगा कि विश्वविद्यालय ने एक अपनी प्रतिष्ठा बनाई है, हमारा विश्वविद्यालय नैक A++ रेटेड यूनिवर्सिटी है जो कि हाईएस्ट ग्रेड नैक से मिलता है। अभी NIRF में भी हमारा 69th रैंक है और अभी जो IIRF इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क उसमें हमारा 19वां नंबर है। तो सारे पैरामीटर के जो ग्रेडिंग और रेटिंग के पैरामीटर है उसमें हम काफी ऊपर हमारे रिकॉग्निशन मिलती है हमें, और हमारा प्रयत्न भी है कि विद्यार्थियों की जो बदलते समय में जो जरूरतें हैं उनके साथ संवेदनशीलता से उनको पूरा कर उनमें योग्यताएं कैपेबिलिटी का विकास किया जाए। तो मैं सभी विद्यार्थियों से ये आश्वासन देता हूँ कि उनको शिक्षा की जो क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित जो बातें हैं ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनको पूरा करता है।
1: हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: धन्यवाद आपका।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के दौरान शिक्षा क्षेत्र में हुए नवाचारों और विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल से खास बातचीत। वार्ताकार थी आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा। 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं, पेश है उर्दू कार्यक्रम। पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की है।
4: समय नादाब, उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेजबान मोहम्मद फर्रुख जमाल। आज 21 जून है और आज के दिन को आलमी योम योगा के तौर पर मनाया जाता है। इस हवाले से आप समाअत फरमाएंगे। पहले एक मुख्तसर तकरीर। योगा सिर्फ वर्जिश नहीं बेहतर ज़िंदगी जीने का फ़न भी है। इसके बाद हम आलमी योम योगा के हवाले से आपको एक उबी रिपोर्ट सुनवाएंगे और प्रोग्राम के आखिर में आप समाअत फरमाएंगे जनाब राज आज़मी से उनका कलाम। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस मुख्तसर तकरीर से। उन्वान है, योगा सिर्फ वर्जिशी नहीं बेहतर ज़िंदगी के जीने का फ़न भी है। आलमी योम योगा हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का ख़ास मकसद ये है कि हिंदुस्तान की कदीम सकाफत के ज़रिए जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी मशक्क़तों के साथ सेहत और तंदरुस्ती के फ़वाद को आलमी सतह पर उजागर किया जा सके। योगा करने के बहुत से फ़ायदे हैं। योगा करने से बहुत सी बीमारियों से हम निजात हासिल कर सकते हैं, खुद को चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं, साथ ही योगा करने से रूहानी सुकून भी मिलता है। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा वक्त निकाल कर योगा को एक मामूल बना लें तो यकीनन आपके जिस्मानी और ज़हनी तौर पर फ़वाद सामने नज़र आएंगे। वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तानी अवाम को सेहत के तई बेदार रखने के लिए योगा को ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक नई शिनाख्त अता कराई है और पूरी दुनिया को योगा की अफादियत से मुतारिफ़ कराया है। 2014 में अक़वामे मुत्तहदा की जनरल असेंबली में इस दिन को आलमी सतह पर मनाने की तजवीज़ पेश की थी। 11 दिसंबर सन 2014 को इस तजवीज़ को मंजूरी मिल गई और पहला आलमी योम योगा 21 जून सन 2015 को मनाया गया।

0: वो स्वस्थ रह सके। और ये स्वस्थ रहने का एक ही उपाय है योग। योग अगर आप अपने दिनचर्या में उतार लेते हैं तो किसी भी तरह की आप बीमारी से ग्रसित होने से बच जाएंगे और हमेशा पूरे जीवन आप स्वस्थ रहेंगे।
1: इस मौके पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की प्रोफेसर अनुभूति दुबे ने हमें बताया कि
2: हमारे विश्वविद्यालय में हर वर्ष लगभग एक महीने का कार्यक्रम किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में। इस वर्ष भी 1 जून से 21 जून तक लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हैं। जैसे कुछ कार्यक्रम हमने एक 4 दिन की योग प्रशिक्षण वर्कशॉप की थी, जो शहर के बच्चे बड़े कोई भी आकर के उस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते थे, वो फ्री था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे विश्वविद्यालय के जो तमाम सारे जगहों से MOUs हैं कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से, जैसे मलेशिया से, फिजी से, तो उनके साथ हम लोगों ने ऑनलाइन कार्यक्रम किए। अभी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से चंपा देवी पार्क तक योग जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो हर वर्ष हम लोग कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से।
1: क्या आलमी योगा डे के मौके पर यूनिवर्सिटी के तालिबे

0: ये हमें बताया कि
1: हमारे विश्वविद्यालय में हर वर्ष लगभग एक महीने का कार्यक्रम किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में। इस वर्ष भी 1 जून से 21 जून तक लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हैं। जैसे कुछ कार्यक्रम हमने एक 4 दिन की योग प्रशिक्षण वर्कशॉप की थी, जो शहर के बच्चे बड़े कोई भी आकर के उस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते थे, वो फ्री था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे विश्वविद्यालय के जो तमाम सारे जगहों से MOUs हैं कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से, जैसे मलेशिया से, फिजी से, तो उनके साथ हम लोगों ने ऑनलाइन कार्यक्रम किए। अभी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से चंपा देवी पार्क तक योग जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो हर वर्ष हम लोग कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से।
0: क्या आलमी योगा डे के मौके पर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म भी हिस्सा ले रहे हैं?
1: हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं, जो भी यहाँ पर शहर में उपलब्ध हैं छात्र छात्राएं, उनको आमंत्रित किया है। अपने अलुमनाई के साथ एक नेटवर्क बना रहे हैं, तो उनके साथ योग का कार्यक्रम है। 21 तारीख को हर वर्ष हमारे वहाँ विश्वविद्यालय परिसर में, जो हमारा स्टेडियम है, उस स्टेडियम में एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें विश्वविद्यालय के शिक्षक, छात्र छात्राएं, कर्मचारी और शहर के जो भी लोग आना चाहें वो वहाँ पर आकर के उस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकते हैं, जहाँ पर योग प्रशिक्षक होते हैं और सामूहिक योग का कार्यक्रम किया जाता है।
0: आलमी यौमे योगा के मौके पर 45 NCC बटालियन गोरखपुर के एसोसिएट NCC ऑफिसर कैप्टन डॉक्टर वाहिद अली ने हमें बताया कि
2: योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका मतलब है जोड़ना। व्यवहारिक स्तर पर यह शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने का साधन है, अर्थात यह निरोगी जीवन जीने की एक अचूक कला है। हम सब जानते हैं कि 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस साल 12वां योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसका थीम है योगा फॉर हेल्थी एजिंग, मतलब योगा बराए सेहतमंद बुढ़ापा। इस साल का योग दिवस कई मायनों में खास माना जा रहा है। बदलती लाइफस्टाइल, बढ़ती उम्र के साथ होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स और मानसिक तनाव जैसी चुनौतियों के बीच इस बार की थीम लोगों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन की दिशा में प्रेरित करने का संदेश देती है। साथियों, योग केवल फिटनेस का जरिया नहीं है, बल्कि बढ़ती उम्र में फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को बनाए रखने का इफेक्टिव मेथड है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन, नींद न आने की दिक्कत और लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। यही कारण है कि योग अब केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के सैकड़ों मुल्कों में अपनाया जा रहा है।
0: डॉक्टर वाही साहब, योगा के आसन के बारे में कुछ और बताइए।
2: ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, वज्रासन, श्वासन जैसे योगासन संतुलन, लचीलापन और ऊर्जा बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा प्राणायाम और ध्यान मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने, स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करने का एक अच्छा जरिया है। योग दिवस 2026 की थीम लोगों को यह संदेश देती है कि उम्र चाहे कोई भी हो, नियमित योग के जरिए इंसान अपने शरीर और मन को लंबे समय तक हेल्दी और एक्टिव रख सकता है। जय हिंद, जय भारत।
0: अभी आप आलमी यौमे योगा पर ये रेडियो समाज फरमा रहे थे। रिकॉर्डिंग और आवाज थी शफकत अली खान की व पेशकश नूर मोहम्मद की।
3: सामईन, अभी आप आलमी योमे योगा के मौके पर ये ओबी रिपोर्ट समाप्त फरमा रहे थे, और एक मरतबा फिर हम आपको लिए चलते हैं अदब की दुनिया में। सामईन, योगा से जहां जिस्म को नई तवानाई और क़ुव्वत मिलती है, वहीं शायरी से हमें ज़हनी आसूदगी मैसर आती है। शायर हमारे ख्वाबीदा जहनों को बेदार करता है और हमारे इर्द गिर्द के माहौल से हमें रोशनास भी करता है। दबिस्तान गोरखपुर की वो बावकार शख्सियतें जो रफ्ता रफ्ता हमसे जुदा होती जा रही हैं, जिनके दम से दबिस्तान गोरखपुर की महफिलें सरसब्ज़ो शादाब थीं, इनमें एक मुअद्दबर नाम जनाब राज आज़मी का था। अब वो हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन उनका कलाम आज भी महफूज है। समात फरमाइए कलाम शायर के तहत जनाबे राज आज़मी से उनका कलाम।
4: गजल का मतला पेश खिदमत है। तुम

रात है बाहर तौर नुमाया होना अपनी फितरत है बाहर तौर नुमाया होना। शेर मुलाजा फरमाइए कि चंद लम्हे ये गानी मत है बचा कर रख लो, चंद लम्हे ये गानी मत है बचा कर रख लो वरना तुम

ना। दूसरी गजल का मतलब आपकी खिदमत है, मेरे खुदा मेरी आंखों की आबरू रखना, मेरे

0: राम हम पे है ऐ राज ऐ सिहू रखना।
1: जनाब राज आजमी के इन अशार के साथ ही सामईन आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए। मुआविन था मैं मोहम्मद फर्रुख जमाल, पेशकश थी जनाब नूर मोहम्मद की। आज का उर्दू प्रोग्राम आपके समातों के लिए आकाशवाणी गोरखपुर मरकज पर तैयार किया गया था।
2: आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज पर तैयार आज का उर्दू कार्यक्रम नश्र किया जा रहा था आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून इन किया है 747 किलो हर्ट्स और सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
2: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज सुनेंगे पूजा द्विवेदी के गाए अवधी लोकगीत। पहले प्रस्तुत है देवी गीत स्वर पूजा द्विवेदी का।

0: पूजा द्विवेदी के गाए लोक भजन के साथ ही लोक रंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। पूजा द्विवेदी के गाए अवधि लोकगीत आप सुन सकेंगे लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं 747 किलो हर्ट्स पर।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रस्तुत है आपकी पसंद के लोक गीत कार्यक्रम। आप सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर रंजना अग्रहरी के स्वर में देवी गीत, और इसे सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, शीतल तरंग श्रीवास्तव, अर्जुन सिंह, शिवबख्श सिंह, ग्राम कैतनपुरवा, पोस्ट सातनपुरवा, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश से। आपकी फरमाइश पर प्रस्तुत है डॉक्टर रंजना अग्रहरी के स्वर में देवी गीत।

डॉक्टर रंजना अग्रहरि के स्वर में अभी आपने देवी गीत सुना और अब आइए सुनते हैं प्रियंका पांडे के स्वर में सोहर। इसे सुनने के लिए पत्र भेजा है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता ने।

0: श्रोताओं, अभी आपने प्रियंका पांडे के स्वर में सोहर सुना। इसी के साथ आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम को हम विराम देते हैं। पुनः सुन सकेंगे आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम सुबह 10:20 से। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता आज स्विट्जरलैंड में। सीखने की क्षमता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए नॉर्वे में प्राथमिक विद्यालयों में जेनरेटिव एआई उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी। और फीफा विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग के कारण यह अब सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि योग हमें संतुलित जीवन जीने और मानसिक स्वास्थ्य के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग खोजने में मदद करता है।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: श्री मोदी ने योग को विश्व को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया।
2: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
1: देश के अलावा दुनिया में भी योग का जश्न देखने को मिला। सऊदी अरब में रियाद में कल 500 से अधिक प्रतिभागियों ने योग दिवस मनाया। कार्यक्रम में राजनयिकों, योगाचार्यों और स्थानीय लोगों ने भागीदारी की। सऊदी योग समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहमद अल सादी ने कहा कि योग लोगों को स्वस्थ और अधिक संतुलित जीवन शैली अपनाने में मदद करता है। कनाडा के टोरंटो में भी सरकारी प्रतिनिधियों, राजनयिकों और योगाचार्यों ने ओंटारियो विधानसभा परिसर में आयोजित योग कार्यक्रम में भागीदारी की। इस अवसर कनाडा में भारत के महावाणिज्य दूत ने कहा कि योग में सांस्कृतिक, भाषाई और राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने की अनूठी शक्ति है। ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया के नेतृत्व में विशेष योग सत्र हुआ। डेनमार्क में राजदूत मनीष प्रभात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फेडरिक्सन के नाम लिखा पत्र पढ़कर सुनाया। इसके अलावा अमरीका में डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों से स्वस्थ जीवन शैली के लिए योगाभ्यास का आग्रह किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और

0: आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कोलकाता में हैं और उन्होंने नौसेना के 3 स्वदेशी पोतो INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का राष्ट्र को समर्पित किया। इस समय वे कार्यक्रम को संबोधित भी कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत, देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
1: इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आज वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच रहे हैं। ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान में इजरायली हमलों के कारण होर्मोज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा कर दी है। उसने चेतावनी दी है कि संघर्ष न रुकने पर कोई उपलब्धि हासिल करना मुश्किल होगा। उधर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी 60 दिन के भीतर ईरान के साथ अंतिम समझौता न होने पर जलमार्ग पर टोल लगाने की बात कही है। वार्ता में के पक्ष का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और ईरान का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगैर खलीगाफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी स्विट्जरलैंड में होंगे। समझौते के तहत ईरान की अरबों डॉलर की फ्रीज की गई संपत्ति जारी की जाएगी। नॉर्वे के प्राथमिक विद्यालयों में जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों के उपयोग को लगभग पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा रहा है। बड़े बच्चों की शिक्षा में भी इनके उपयोग को सीमित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जोनास गेहस्टेरे ने कहा है कि AI के उपयोग से छोटे बच्चों की शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण चरणों के छूट जाने का खतरा बढ़ रहा है। नॉर्वे सरकार ने परीक्षा के प्राप्तांकों में व्यापक गिरावट को देखते हुए 2024 में स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका उद्देश्य सीखने की क्षमता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोकना है। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। समाचार लिखे जाने तक भारत ए ने 3 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 55 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप की अगर बात की जाए तो जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स देश के ऐसे पहले नरेश बन गए हैं जो अपने व्यक्तिगत कर भुगतान का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे। ये विवरण बृहस्पतिवार को साझा किया जाएगा। ब्रिटिश राजशाही के प्रशासनिक कार्यालय बकिंघम पैलेस ने कहा है कि ये पहल पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। 2 वर्ष में एक बार होने वाला ये महोत्सव इस वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। समारोह में वित्र चित्र, लघु कथा, एनिमेशन और AI फिल्में प्रदर्शित की गईं। विश्व ऊंट दिवस के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में श्री शेखावत ने कहा कि ऊंट केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि राजस्थान और गुजरात की संस्कृति और परंपरा का भी प्रतीक हैं। उन्होंने ऊंट को मरुस्थल का जहाज बताते हुए इसके संरक्षण का आह्वान किया। और अंत में मुख्य समाचार।

0: एक बार फिर। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता की रेड रोड पर योगाभ्यास किया। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता आज स्विट्जरलैंड में। सीखने की क्षमता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए नॉर्वे में प्राथमिक विद्यालयों में जेनरेटिव एआई उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी। और फीफा विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह पक्की की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर पत्र संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। श्रोताओं, आपको पुनः लिए चलते हैं आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम की ओर। सुनेंगे मीनू खरे और रश्मि श्रीवास्तव के स्वर में बारामासा, और सुनना चाहा है मनकारा मंदिर करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह, पन्नीलाल, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश, राजेश कुमार, रूबी भारती, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती, रौनक, शगुन, सारांश, अयांश, अदिति, शिवांश और प्रथव सिंह ने।

महादेव घाट अमलेश्वर से पत्र हमें भेजा है डोमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति रियांश और गुड़िया ठाकुर ने। और आप सभी सुनना चाहते हैं अक्रम अंजाना के स्वर में खेमटा।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम, और आज इस कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं शक्ति श्रीवास्तव के स्वर में मुंडन गीत। फरमाइश भेजी है हमें कटरा चांद खां मौर्य मंदिर से अनोखे लाल, सुंदर देवी प्रकाश, कपिल, वेदराम, रिंकी, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य ने।

नीलम पाठक के स्वर में जनेऊ गीत सुनने के लिए फरमाइश की है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलबिंदर जयतेग और इनके बहुत सारे साथियों ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद के लोकगीत कार्यक्रम में नीलम पाठक के स्वर में जनेऊ गीत, और अब प्रस्तुत है स्नेहिल श्रीवास्तव के स्वर में कहरा, और सुनना चाहा है कटारा हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश से योगेश्वर सिंह, शिखावत सिंह, भैरव प्रताप, लोकेंद्र, प्रेमाबाई, कृष्ण, गोपाल और उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। ग्राम व पोस्ट बाया, तहसील रेहटी, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से ही

सुनना चाहा है शहनाज शकील सलीम इस्लामुन निशा वारिस अली आप सभी ने, और ये पत्र भेजा है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से।

निधि निगम के स्वर में अभी आप ये गंगा गीत सुन रहे थे। इसके साथ ही आपकी पसंद के लोकगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का इस कार्यक्रम में जहां गीत और संगीत आपके दिल को छू जाते हैं, यह है आपका अपना फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे आपके पसंदीदा फिल्मी गाने। आज के इस कार्यक्रम में आपका हम सफर हूँ मैं, आपका रेडियो दोस्त पंकज शुक्ला।

बहुत ही खास और ऐतिहासिक है। आज हम सब मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह दिन हर साल 21 जून को पूरे विश्व में उत्साह के साथ मनाया जाता है। योग कोई साधारण व्यायाम नहीं, यह भारत की प्राचीन और अमूल्य धरोहर है जो अब पूरी दुनिया अपना चुकी है। यह शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और आत्मा को शुद्ध करने का एक अद्भुत माध्यम है। आप सभी सुनने वालों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। श्रोताओं, आज एक और खास दिन है। हर साल जून के तीसरे रविवार को हम मनाते हैं फादर्स डे। दोस्तों, वैसे तो पिता के प्यार और उनके योगदान को किसी एक दिन में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि माँ की तरह पिता का भी हर दिन होता है। लेकिन आज का ये खास दिन हमें वो खास मौका देता है जब हम पिता के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकें, जो हमारे जीवन की सबसे मजबूत नींव होते हैं। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को योग दिवस और फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो तैयार हो जाइए इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए। फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। वैसे तो आप सभी को हमारा फोन नंबर याद ही है, लेकिन जो श्रोता हमारे इस कार्यक्रम में हमसे पहली बार जुड़े हैं उन्हें बता दूं, आपको डायल करना है हमारा फोन नंबर 0522-2238-825। तो जल्दी से उठाइए फोन और मिलाइए हमारा नंबर 0522-2238-825 और बताइए आज के कुछ तुम कहो कुछ हम कहें कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे आप आज के इस खास दिन पर, और वो कौन सा गाना है जो इस कार्यक्रम में आप सुनना चाहते हैं। जब तक इस कार्यक्रम में हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ते हैं, तब तक आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम में अब समय हमारे आज के पहले कॉलर से बात करने का, तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, लग रहा है उनसे हमारा संपर्क कट गया है। चलिए कोई बात नहीं, जब तक हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ते हैं तब तक आपको सुनवाते हैं ये गीत।

और अब बात करते हैं हमारे आज के कॉलर से। हेलो हेलो हेलो हेलो, लग रहा है हमारे फ़ोन लाइन उनसे नहीं जुड़ पा रही है। चलिए आपको सुनवाते हैं उनकी पसंद का ये गीत।

और आइए अब देखते हैं हमारे कौन से कॉलर हमसे फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं। हेलो हेलो हेलो, लग रहा है आज कुछ लाइन में दिक्कत आ रही है जिससे हमारे श्रोता हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। चलिए तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

हेलो हेलो हेलो हेलो

और आइए देखते हैं अब हमारे साथ लाइन पे कौन जुड़े हैं। हेलो, लीजिए उनसे हमारा संपर्क कट गया है और जो है चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी उनकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: जी सर जी को नमस्कार
0: नमस्कार, अपना
1: जी।
0: परिचय
1: सर नाम
0: बताएं।
1: नरेला दामोदर, भोपाल मध्य प्रदेश से राम बाबू शर्मा बात कर रहा हूँ।
0: राम बाबू जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप हमारे पहले कॉलर हैं 11:20 पर, क्योंकि लाइन में कुछ थोड़ी सी दिक्कत थी जिसकी वजह से।
1: हाँ जी सर, मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल दिक्कत आ रही है, फोन लग नहीं पा रहे हैं सही से।
0: जी, तो इस वजह से जो है, लेकिन चलिए, आपका फ़ोन लगा और आपसे हमारी बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज 11:20 पे हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में। क्या
1: जी
0: कहना
1: सर,
0: चाहेंगे
1: तो
0: राज?
1: क्या हुआ कि शुरू हो रही है, शुरू प्रोग्राम हो रहा है तो गाना सुनना चाहूंगा, शुरू हो रही है प्रेम कहानी।
0: जी, बहुत ही बेहतरीन, आपने गाना भी सुनना चाहा है। जो
1: जी
0: इस
1: सर जी,
0: प्रोग्राम के पहले कॉलर आप हैं, तो आपने गाना भी उसी हिसाब से सुनना चाहा है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए
1: हाँ जी
0: राम
1: सर, और अब फोन लगेंगे अब दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि शुरू हो गई है, प्रोग्राम भी शुरू हो गया है। तो सर
0: जी,
1: कुछ मित्रों को याद करना चाहूंगा।
0: जल्दी से राम बाबू जी।
1: जी सर, केसरी सिंह राजपूत जी सुन रहे हैं, गजराज सिंह लोधी जी, भगवान सिंह परमार जी, और मिंटू तिवारी जी, और पूनम जी सुन रही हैं, और सर आपके लिए।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। और सुनिए आपकी पसंद का ये गीत दूध का कर्ज फिल्म से।

आकाशवाणी लखनऊ से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और अब समय है हमारे आज के अगले कॉलर से बात करने का। हेलो,

0: राधे राधे, जय सियाराम सर जी।
1: जय सियाराम, अपना परिचय बताएं।
0: मैं त्रिपुरा से आशुतोष दबला बोल रहा हूँ।
1: आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और आज योग दिवस भी है और फादर्स डे भी है, आज इस इन दिनों पे क्या
0: जी,
1: कहना
0: आज
1: चाहेंगे?
0: तो योग दिवस है
1: जी।
0: एक्चुअली हम लोग को योग 365 बनाना चाहिए।
1: जी बिल्कुल सही बात है, हम लोगों को
0: योग
1: योग
0: दिवस
1: जो है
0: एक्सरसाइज करना है। एक दिन एक्सरसाइज करने से कोई फायदा नहीं, पूरे साल करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है, स्वस्थ रहने के लिए हमें रोज योग का सहारा लेना चाहिए ताकि हम लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।
0: और कुछ कुछ लोग हैं सर जी कि
1: जी
0: योग का नाम सुनने से नाराज हो जाता है, लेकिन उन लोगों को समझना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: आप योग करोगी तो फायदा आपका होगा, दूसरों को नहीं होगा।
1: बिल्कुल सही बात है। और आज योग तो पूरा खाली हमारा देश नहीं, पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मनाया जा रहा है और
0: पूरा
1: सबने,
0: विश्व में बना जा रहा है सर।
1: जी पूरे विश्व ने इसकी ताकत को पहचाना है। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि पूरे विश्व ने इसकी ताकत को पहचाना है और हम सबको जो है योग के साथ जुड़ना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आज इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आशुतोष जी?
0: सर जी, आज मुझे याद आया बहुत गोल्डन सॉन्ग मैं बोलूंगा, 1980 में रिलीज हुआ।
1: जी
0: फिल्म का नाम है बंदिश, गाने का बोल है मेरे होश ले लो।
1: जी।
0: आशा जी किशोर दा ने गाया है, आनंद बख्शी जी ने लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी सुर से सजा इस गाने को।
1: क्या बात है, आपने गाना ही केवल नहीं सुनना चाहा है बल्कि पूरी उसकी जानकारी भी हमारे सुनने वालों को दे दी है कि किस फिल्म का गाना है, किन्होंने गाया है, किसने लिखा है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आशुतोष जी, और अब सुनिए आपकी
0: और
1: पसंद का
0: ये
1: ये
0: गाना का उम्र लगभग 50 साल हो गया है, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि
1: जी
0: ये कुछ दिन पहले रिलीज हुआ है।
1: बिल्कुल सही बात है, और उस टाइम के गानों की बात ही अलग है जो आज भी हमारे दिलों में राज करते हैं। आपने आशुतोष जी हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: मैं सिर्फ 2-4 दोस्तों को याद करता हूँ।
1: जी बिल्कुल, जल्दी से
0: पहले आपको सुनाना चाहता हूँ।
1: शुक्रिया
0: बाबा जी, विजय पांडे जी, भगवान सिंह परमार और गणेश दास जी,
1: जी
0: और नेटवर्क का सारे श्रोताओं को लेकर सुनिए।
1: चलिए आशुतोष जी, आपने हमें कॉल किया और अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

अभी आप आशुतोष जी की पसंद का ये गीत सुन रहे थे बंदिश फिल्म से। आकाशवाणी लखनऊ से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। जो श्रोता इस कार्यक्रम में हमसे अभी अभी जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि इस कार्यक्रम में हमसे बातें करने और अपनी पसंद का फिल्मी गाना सुनने के लिए आपको मिलाना है हमारा फ़ोन नंबर 0522-223-8825। तो जल्दी से मिलाइए हमें फ़ोन इस नंबर पर, हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार है। और अब देखते हैं हमारे आज के अगले कॉलर जिन्होंने हमें फ़ोन किया है कहाँ से जुड़े हैं और कौन हमें फ़ोन कर रहा है। हेलो हेलो हेलो, लग रहा है उनसे हमारा संपर्क कट गया है। चलिए जब तक हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ते हैं हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: और देखते हैं अब अपने दिल की बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर कौन हमारे श्रोता जुड़े हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग अनूप कुमार भट्टाचार्य जी।
1: पंकज शुक्ला से बात हो रहा है
0: जी। जी बिल्कुल, और हम भी आपकी आवाज को पहचान गए हैं अनूप कुमार जी।
1: तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो इस योग दिवस के सिलसिले में सब भाई बहन
0: जी,
1: सब भाई बहन निरोग रहे
0: और बिल्कुल सही बात है,
1: ठीक ठाक योग करे, है ना
0: जी, योग के साथ जुड़े रहें। और जो है
1: तो एक बात कहूँ पंकज जी,
0: जी
1: तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है
0: जी,
1: तेरी हर मुस्कान से मिली मुझे खुशी है,
0: वाह,
1: मुस्कुराते रहना इसी तरह हमेशा, क्योंकि तेरी इस मुस्कान में मेरी जान बसती है, है ना?
0: क्या बात है अनूप कुमार जी, आपने शो का माहौल ही बड़ा अच्छा कर दिया है अपनी इस चंद लाइनों के जरिए।
1: जी जी, तो चलिए आज इस प्लेटफॉर्म में गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है कर्तव्य और गाने का बोले से, धड़कता था पहले भी दिल मेरा यूं ही, मगर इस आदा से मचलता ना था, इसे करके गाने हैं।
0: क्या बात है,
1: को फटाफट में नाम ले रहा हूँ। पहले है हमारे बहुत बहुत अच्छे शिक्षक है जिसका नाम है बबीता शर्मा जी, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त है छोटे भाई अविनाश जी, और है प्रेमजी चक्रवर्ती जी, है बसंतीलाल सूर्यवंशी जी, है अमर सिंह साहू जी, कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी, श्रीकांत जोशी जी, और है विजय सिंह लखेरा जी, और है हमारे बहुत बहुत अच्छे दोस्त है अनवर बिहारी भाई के लिए, और ढेर सारे श्रोता भी सुन रहे हैं। ओहो, एकदम भूल गया, मतलब हमारे बहुत अच्छे दोस्त जिससे मेरा बातचीत हो रहा है अभी
0: जी।
1: उनका नाम है पंकज शुक्ला जी के।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुमार जी, आपने हमें कॉल किया और इस खास दिन पे अपनी बात को हम तक पहुंचाया। अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत कर्तव्य फिल्म से।

0: अब समय हमारे आज के अगले कॉलर से बात करने का जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेलो,
1: हेलो
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। अपना परिचय बताएं।
1: नमस्कार जी, जालिम सिंह बोल रहा हूँ जी, पीलीभीत से।
0: जालिम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आज के इस खास दिन पर क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम में?
1: बस बस सब लोगों को बधाइयां देना चाहता हूँ, योगा करें वगैरह सब।
0: चलिए,
1: पिता दिवस भी है ना आज हिंदी में।
0: हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज फादर्स डे भी है, अपने पिता के प्रति सम्मान व्यक्त करने और उनके
1: सब उन्हीं की बदौलत होता है, होते तो माँ भी, लेकिन पिता भी जो करता है अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए वो पिता ही होता है।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जालिम सिंह जी। आज इस कार्यक्रम में कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं?
1: गाना सुनूंगा बफा नाराज आई तुझे वो हर जाई।
0: चलिए, आपकी पसंद का गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं
1: जी। धन्यवाद आपका बहुत।
0: चलिए, आपने हमें कॉल किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी।

0: कुछ तुम कहो कुछ हम कहें कार्यक्रम में अब बात करते हैं हमारे आज के अगले कॉलर से। हेलो
1: सर, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, किससे बात
1: और
0: हो रही है
1: बताइए, आप
0: हमारी?
1: कैसे हैं?
0: मैं बहुत बेहतरीन हूँ और आपसे बात करके और अच्छा हो गया, लेकिन हमारे सुनने वालों
1: सर
0: को
1: आपसे
0: अपना
1: पहली
0: नाम
1: बार
0: तो
1: बात
0: बताएं।
1: हो रही है आपसे बात करके, सर बहुत अच्छा लग रहा है, आपने फोन मेरा रिसीव किया, इसके लिए थैंक यू।
0: हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा श्रोता इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ें और हमसे बात कर सकें, लेकिन अभी तक
1: आपकी
0: आपने
1: आवाज़
0: अपना,
1: बहुत कम आ रही है सर। जी
0: अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
1: आ रही है।
0: चलिए अब आप अपना परिचय तो बताएं कि आप कहाँ से बोल रही हैं।
1: जिला सीतापुर पचैनापुर मस्जिद के पास है, शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं। और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार शमा जी, आपने हमें कॉल किया, बहुत
1: जी
0: अच्छा लग रहा है। और आज इस कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगी? आज तो योग दिवस भी है और फादर्स डे भी है।
1: सर, हम गाना सुनना चाहेंगे। आवाज बहुत कम आ रही है,
0: चलिए
1: शायद हमारे ही फोन में नेटवर्क दिक्कत हो।
0: चलिए, हो सकता है कि कुछ नेटवर्क की दिक्कत हो रही है।
1: हाँ,
0: अच्छा
1: कुछ नेटवर्क दिक्कत है, आवाज सही नहीं आ
0: चलिए,
1: रही है
0: अच्छा
1: आपकी, साफ
0: बताइए
1: नहीं
0: आज
1: आ
0: इस
1: रही है।
0: कार्यक्रम में कौन सा
1: तो
0: गाना सुनना चाह रही हैं?
1: गाना सुनना चाहते हैं, चांद तारे फूल सबनम तुमसे अच्छा कौन है, और हम अपने भाई बहन का नाम भी लेना चाहते हैं सर।
0: चलिए जल्दी से नाम ले लीजिए।
1: सबसे पहले आपको सुनवाना चाहते हैं, फिर
0: शुक्रिया।
1: बाबू अंसारी भाई हैं, रिंकी पिंकी आरजे पूनम सबनम अब्बासी और हसीना मंसूरी,
0: जी
1: और जितने सुन रहे हैं उन सभी सुनने वालों के लिए।
0: चलिए ठीक है, आपकी पसंद का गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पे, आपने हमें कॉल किया और इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ी और अपनी बात हमसे शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: अभी आप शमा परवीन की पसंद का ये गीत सुन रहे थे, तुमसे अच्छा कौन है फिल्म से। और अब देखते हैं हमारे आज के अगले कॉलर कौन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। हेलो।
1: हेलो मिश्रा जी, राधे राधे।
0: राधे राधे
1: राधे राधे
0: राधे राधे, अपना परिचय बताएं।
1: शुक्ला जी, मैं बीरों की भूमि बुंदेलखंड की धरती से मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ, छतरपुर जिले के मनकारी गाँव।
0: फूलचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं और लगातार आप कॉल भी करते रहते हैं, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ते रहते हैं और बात भी आपसे होती रहती है।
1: बिल्कुल शुक्ला जी, बहुत अच्छी आपकी प्रस्तुति, बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: शुक्रिया, आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज इस खास दिन पे क्या कहना चाहेंगे
1: जी? आप थोड़ा तेज बोलिए। आप,
0: मैं कह रहा हूँ कि आज इस खास दिन पर, क्योंकि आज योग दिवस भी है और फादर्स डे भी है, तो आज इस दोनों खास दिन पर क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम में?
1: बिल्कुल बिल्कुल शुक्ला जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही है। योगा के बारे में कहूंगा तो मैं एक किसान हूं, तो मैं तो योगा दिन रात करता हूं।
0: जी बिल्कुल सही बात है।
1: किसान के पास तो पूरा दिन और शायद रात में थोड़ा होता है, वो सोता है, बाकी तो योगा करता ही रहता है, इतनी मेहनत करता है किसान।
0: बिल्कुल सही बात है, तभी तो इतना स्वस्थ रहता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा है आपने, तो उसको तो जो है उसके शरीर से पसीना रात दिन बहता है, तो वो तो योगा से बढ़ के भी योगा करता है।
0: चलिए
1: आज... और रही बात जो है फादर्स डे मादे की, तो बहुत बढ़िया आपका जो वो है बढ़िया है, लेकिन मैं एक बुंदेली गीत आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: जल्दी से आप गुनगुना दीजिए।
1: तो मैं बता रहा हूँ कि ना, ना, ना, ना

0: कुछ माता पिता ऐसे भी है शुक्ला जी कि वो पेट में भी अपने जो है संतान को खत्म कर देते हैं, तो ऐसे माता पिता
1: बिल्कुल
0: भी कुछ
1: सही बात है कि हम उनसे यही आग्रह कर सकते हैं कि जो है ऐसा पाप ना करें और सभी को इस दुनिया में आने का मौका दें। और आज इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?

0: जल्दी से बताइए
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्दी बताऊंगा, समय बहुत कम है और मैं
0: जी।
1: रेल की बिल्कुल आखिरी डिब्बे में बैठा हूँ।
0: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: हाँ तो फिल्म का नाम है दामिनी और गीत के बोले कि बिन साजन झूला झूलू मैं बाधा कैसे भूलूं। इस गीत को जो है मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ प्रेमदास बाबा जी हो गए, बेटा सिंह यादव जी हो गए, जितेंद्र पाल मणिराम पाल जी हो गए, और हमारे बांगीलाल चंदेल जी हो गए, दिनकर सिंह जी हो गए, और कानपुर से हमारी पूनम बहन है उनको भी डेडिकेट रहेगा, राहुल कुमार सभी जितने श्रोता सुन रहे हैं, जयपाल यादव जी हैं, सारी श्रोताओं को डेडिकेट रहेगा।
0: चलिए फूलचंद जी आपने हमें कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अब एंजॉय करिए आपकी पसंद का ये गीत जो आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

तो दोस्तों, जब हम और आप मिलते हैं तो बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चलता। देखिए ना, वक्त कह रहा है अब लेनी होगी आपसे आज के कुछ तुम कहो कुछ हम कहें कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति। लेकिन जाने से पहले आज के इस खास दिन पर यही कहना चाहूँगा, करो योग रहो रिनोग। इसी ऊर्जावान और सकारात्मक विचार के साथ अपने रेडियो साथी पंकज शुक्ला को दीजिए आज के कार्यक्रम से विदा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। ये आकाशवाणी लखनऊ है, मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर। अब बच्चे सुने अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बाल मंच।

0: मेरी दुनिया।
1: सारी इच्छाएं पूरी करते, उपहारों से झोली भरते, डांट भी देते गलती होने पर, सबसे ज्यादा प्यार भी करते।
0: खुश नसीबी है मेरी, आपके जैसे पापा को पाया, हर मुश्किल में थामे हाथ, वही मेरी दुनिया। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू।
1: शुरू हो चुका है आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम बाल मंच। आज आपके साथ है
0: मैं दर्श दीक्षित
1: और मैं आपकी राजलक्ष्मी दीदी। स्वीकार कीजिए हमारा जय हिंद। दर्श, आज पूरी दुनिया में एक नहीं तीन तीन दिवस मनाए जा रहे हैं, जिनकी चर्चा हम एक एक कर करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात प्यारे प्यारे पापा की।
0: जी दीदी, आज है फादर्स डे। ये जून माह के तीसरे रविवार को मनाया जाता है और आज जून का तीसरा रविवार है।
1: बिल्कुल, ये दिवस पापा को ये एहसास दिलाने के लिए मनाया जाता है कि हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। वैसे तो हमारे देश में बड़ों का आदर सम्मान करने की अच्छी परंपरा है, लेकिन कई कारणों के चलते माता पिता से दूर रहना पड़ता है, तो ऐसे दिवसों को मनाकर हम उन्हें अपना धन्यवाद देते हैं।
0: जी दीदी, मेरे पापा तो मेरे हीरो हैं।
1: हाँ, हर बेटे के लिए उसके पापा हीरो ही होते हैं।

0: आदर्श फादर डे के साथ साथ आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस भी मना रहे हैं।
1: अच्छा दीदी।
0: हाँ आदर्श, योग तन से मन को जोड़ता है।
1: जी दीदी, इसलिए मैं सुबह योग का अभ्यास करता हूँ जिससे मैं स्वस्थ रह सकूँ।
0: बहुत बढ़िया करते हो, क्योंकि अच्छी आदतें बचपन से ही होनी चाहिए। अगर आप बचपन से रोज योग करोगे तो पूरी उम्र निरोग रहोगे। और आज हमारे साथ ऐसे कुछ बाल साथी हैं जो योग का अभी से नियमित अभ्यास कर रहे हैं। इनसे बात कर रही है ममता उपाध्याय दीदी, तो सुनिए ये बातचीत। बचपन से सीखे योग, पूरी उम्र रहे निरोग।
2: बच्चों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आप जैसे दो नन्हे बच्चों से जो योग में पारंगत हो रही हैं और अनुशासन के साथ जीवन जी रही हैं, और योग के क्षेत्र में इन्होंने काफी नाम भी किया हुआ है। तो आपसे मिलवाते हैं हमारी दो नन्ही साथियों से। एक है आरना ओम सिंह और हमारी दूसरी साथी है श्रेया चंद। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बाल मंच के कार्यक्रम में।
3: थैंक यू सो मच।
2: तो हम बात की शुरुआत करें श्रेया से। श्रेया, ये बताइए अपने दोस्तों को जो आपको रेडियो पर सुन रहे हैं कि आपकी योग यात्रा जो है वो कैसे शुरू हुई, कैसे इंटरेस्ट जागा, और अभी तक की जर्नी के बारे में बताइए दोस्तों को।
3: नमस्ते, मेरा नाम श्रेया चंद है और मेरी योग की जर्नी 2017 में स्टार्ट हुई थी जब मैं फोर्थ क्लास में थी और मेरे स्कूल में योगा क्लासेस हुआ करती थी। तो वहीं से मेरी योगा की जर्नी स्टार्ट हुई है, मुझे योगा वहीं से पसंद आने लगा था और मैं तब से ही कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करती आ रही हूँ। और लॉकडाउन में जब कोविड का टाइम था, उस टाइम को मैंने बहुत ही प्रोडक्टिव वे में लिया और बहुत ही यूजफुल था वो। एंड देन जैसे ही कोविड खत्म हुआ उसके बाद से मैं कॉम्पिटिशन्स में जाना स्टार्ट की हूँ। एंड देन अभी तक मैं 6 times नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ और मैं CBSE स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। मैंने ओपन इंटरनेशनल भी खेला है जो कि नेपाल में काठमांडू में हुआ था और वहाँ पे मेरी 6th पोजीशन थी।
2: अरे वाह। तो अभी श्रेया आपसे और बातचीत करेंगे, अभी आरना की तरफ चलते हैं। आरना, आपका नाम बड़ा यूनिक है और आपने योग को चुना, भाई क्या कॉम्बिनेशन है दोनों के बीच में?
4: मुझे लगता है कि योग हम लोग को शांति से और कंसंट्रेशन के साथ करना चाहिए, और लक्ष्मी माता मेरे नाम का मतलब है और वो भी बहुत ज़्यादा शांति से और धन की माता है, तो दैट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन कंसंट्रेशन एंड मनी।

0: तो कंसंट्रेशन और मनी के बीच का भी एक बड़ा अच्छा रिश्ता बताया अभी आरना ने। आरना, अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने सोचा कि मैं योग की तरफ जाऊं, योगा सीखूं।
1: मैं जब 3 साल की थी तो कोविड चल रहा था और तब मैंने स्टार्ट किया था अपने नाना जी के साथ। वो ऑनलाइन क्लासेस लेते थे तो सारे कजिन्स हम लोग साथ में क्लासेस करते थे और तब से नाना जी हम लोग को एक एक टास्क देते थे और वो सारे टास्क योगा से रिलेटेड होते थे। तो मैंने सोचा कि इसको अगर कंटिन्यू करूंगी तो और भी अचीवमेंट्स कर सकती हूँ। तो फिर मैंने इसके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू किया और धीरे धीरे करते करते अभी मैं इस एज में बहुत सारे अचीवमेंट्स की होल्डर रह चुकी हूँ, इवन अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। सो दैट इज।
0: तो कुछ बताइए तो वो जो आप अचीवमेंट है, आपकी उपलब्धियां
1: हैं। मेरे बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। तो स्टार्टिंग से मैंने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं और अभी मैंने नेशनल रिसेंटली ओलंपियाड का खेला था, उसमें मैं 3rd पोजीशन होल्डर रही हूँ। और मैंने 2024 में जमशेदपुर में नेशनल खेला था, तब मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी और SGFI भी गई थी हैदराबाद में। और अभी मैंने मलेशिया रिसेंटली खेला है इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ पे मेरा एक सिल्वर मेडल और एक गोल्ड मेडल था और चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस भी ट्रॉफी।
0: अरे वाह, तो भाई चैंपियंस ऑफ द चैंपियन भी बन चुकी हैं हमारी आरना, और श्रेया भी बिल्कुल लगातार रफ्तार से आगे बढ़ी। अच्छा, आप दोनों से जानना चाहेंगे कि योग जो होता है ना, बड़ा नीरस सा सब्जेक्ट होता है। कहते हैं ना कि भाई ये आसन बनाओ, उस पर इतनी देर होल्ड रखो, और आप लोग जब इतने छोटे से बच्चे होते हैं तो अनुशासन के साथ से करना क्या आसान है या कठिन? श्रेया बताओ।
2: आसान तो नहीं है, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए होता है। एंड जो ब्रीदिंग कंट्रोल है, जैसे प्राणायाम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इफ ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं होगी तो हम आसन में देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो उसको कंट्रोल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो अगर हम ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा आसन भी अच्छे से लगेंगे, और इसके लिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की नीड है। जैसे एक ही दिन में तो कुछ नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हमें कंटिन्यू प्रैक्टिस करना चाहिए।
0: तो बच्चों देखिए, जो श्रेया और आरना बता रही है कि भाई कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए, चाहे वो योग हो या आपकी पढ़ाई हो, है ना। अच्छा आरना, ये बताओ कि जो अभी श्रेया ने कहा कि भाई हमें साधना की तरह योग को लेना चाहिए, आपके दादाजी ने भी आपको सिखाया कि किस तरह से आप एक एक आसन करते हुए सीखते जाइए और आप आज इतने सारे आपके अचीवमेंट्स हैं। आजकल योगा के बहुत सारे तरीके बदलते जा रहे हैं, तो किस तरह के ये इवेंट्स होते हैं योग के?
1: योग के इवेंट्स में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, एज कैटेगरी वाइज, और इवेंट्स में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि बच्चे अपने हिसाब से उसमें एनरोल करें और फिर फोकस के साथ साथ आसनों की होल्डिंग और सब कुछ होता है। उस टाइम पे बच्चों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस और फोकस। अगर बच्चों का फोकस ना बने तो चाहे आप लोगों ने जितनी भी प्रैक्टिस करी होगी, होल्डिंग आसनों की तब नहीं होगी जब आपने ब्रीदिंग ना प्रॉपर प्रैक्टिस करी हो और फोकस के साथ आसन ना लगाए।
0: अच्छा, जो आप लोग चैंपियन बनते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बनते हैं, तो क्या देखा जाता है, जो अवार्ड मिलता है आपको इसमें श्रेया?
2: इसमें हमें जो आसन गिवन होता है, हमें उसको परफॉर्म करना होता है, उसके बेसिस पे हमें जो पर्टिकुलर टाइम गिवन होता है उतने देर तक होल्ड करना होता है सारे आसन को विदाउट एनी बॉडी शिवरिंग। और इसमें जो बच्चा सबसे अच्छे से परफॉर्म करता है उसी के हिसाब से मार्क्स उनको मिलते हैं। जैसे इफ एक कोई बच्चा आसन में गिर जाए तो उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो जो भी कॉम्पिटिटर है वो अपने सारे आसन विद होल्डिंग अच्छे से परफॉर्म करता है, उसके बेसिस पे उनको
0: टाइम दिया होता है कितनी देर टाइम रखना होगा, है ना,
2: एक मिनट
0: का करना हो। अच्छा, इसकी वैरायटीज भी अब चेंज होती जा रही है कि सिंपल आसन करना है या उसमें कुछ म्यूजिक के साथ या कुछ इस तरह का भी, वो किस तरह हो रहा है?
2: हाँ, जैसे मेजरली जो इवेंट्स होते हैं वो डिवाइडेड होता है ट्रेडिशनल योगासना एंड आर्टिस्टिक योगासना। ट्रेडिशनल में हमें सिर्फ आसन करने होते हैं विद टाइम होल्डिंग, और जो आर्टिस्टिक होता है उसमें हमें विद म्यूजिक के साथ विद डांस योगा करने होते हैं, एंड उसमें भी हमें बहुत ही हार्ड आसन करने होते हैं। तो इसका टाइम पीरियड होता है 3 मिनट्स के अंदर अंदर हमें आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस देनी होती है, और इसमें डांस के भी हिसाब से मार्किंग दिया जाता है, और ट्रेडिशनल में सिर्फ आसन और उसके होल्डिंग को देख।
0: आपने दोनों किए हैं?
2: हाँ जी, मैंने दोनों किए हैं, दोनों में मेरे मेडल्स भी आ चुके हैं।
0: और आरना, आपने?
1: मैंने भी दोनों किया है, मेरा आर्टिस्टिक सोलम में ज्यादा मेडल्स है अकॉर्डिंग टू दोनों को।
0: अच्छा,
1: कंपेयर किया जाए
0: तो उसमें बहुत मजा आता होगा ना, म्यूजिक है या डांस भी करना है ना,
1: इन्वॉल्व रहते हैं।
0: जी जी जी। अच्छा, ये बताओ कि ये कहा जाता है कि जब आप योगासन करते हैं तो वो किस तरह से आपको आपकी ग्रोथ में, आपकी पढ़ाई में, वो किस तरह से हेल्प करता है?
1: वो आपके फोकस को इंक्रीज करता है, और जब भी आप पोस्चर लगाते हो आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आते हैं उनको आप होल्ड करना सीख जाते हो, और फिर उसके बाद आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाते हो। जब भी स्टडी करते हो तो उसमें आपके थॉट्स भी इधर उधर जाते हैं कि यहाँ पे इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करूँगा, तो आप उस टाइम पे जो कर रहे होते हो उसको होल्ड करके कंट्रोल करने का आपके अंदर एबिलिटी आ जाती है योगा करने से।
0: और श्रेया, आप क्या कहेंगी?
2: मेरे लिए योगा जो है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट किया है स्टडीज पे, बिकॉज मेरा स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन नहीं होता था उतना, मैं एक बार में बहुत देर तक नहीं पढ़ पाती थी, बट योगा

0: करने के बाद मेरे को बहुत ही कम स्ट्रेस होने लगा और मेरा कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होने लगा। तो अगर कंपेयर किया जाए तो योगा करने के बाद जब मैं स्टडीज करती हूँ तो मेरा फोकस बहुत अच्छा बनता
1: अच्छा,
0: है।
1: हेल्थ पे कितना असर करता है योग?
0: हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा हम बोलेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, जब योगा कोई करता है तो बीमारियों से वो लोग बहुत दूर रहते हैं, बिकॉज प्राणायाम वगैरह चीजें जो होती हैं, वो जो बीमारियां होती हैं उसको दूर रखती हैं। तो आई थिंक योगा करने से लोग हेल्दी भी बहुत रहते हैं।
1: क्या कहोगी अर्ना, आपको क्या खाने पीने पे भी कंट्रोल रखना पड़ता है? क्योंकि सिर्फ योगासन कर लिया और फिर हम जाकर वो सब चीजें खा ली जो मना है, तो फिर कितना फर्क पड़ेगा योगासन का?
2: योगा के साथ साथ डाइट का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है एक प्लेयर के लिए तो खासकर, क्योंकि अगर आप जो भी डाइट ले रहे हो वो आपकी बॉडी को भी इफेक्ट करेगी और धीरे धीरे आपकी बॉडी स्टिफ होती रहेगी, और फिर उसके बाद जब आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तब आपका कभी कभार लगेगा, कभी बार नहीं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप प्रॉपर डाइट लो और प्रॉपर रेस्ट लो, दोनों साथ साथ योगा के लेके चलना है, कोई भी स्पोर्ट हो उसमें दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे तो फिर आपको उस पर रिजल्ट दिखेगा।
1: जी अच्छा अर्ना, ये बताओ कि इस बार जो थीम है योगा की वो क्या है हमारे दोस्तों को?
2: इस बार की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, और ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि लोग अपने हेल्थ के साथ साथ स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, फोकस सब कुछ करेंगे तो आपकी हेल्थ और आपकी एजिंग ग्रोथ सिंपल रहेगी और आपको कोई परेशानी जल्दी नहीं आएंगी, मतलब 60 के ऊपर भी आप लोग को कम परेशानी रहेगी अगर आप योगा को प्रैक्टिस करेंगे।
1: जी तो अभी बच्चों आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपको एजिंग की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अभी से ही योग को अपने जीवन में अपनाएंगे तो जब आप आज से 20, 30, 40, 50, 60 साल बाद ना आपको बेनिफिट पता चलेगा कि आप भले योगा के कंपटीशन में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे लेकिन जो आपका दैनिक जीवन है ना उसमें बहुत आपको ये फायदा करेगा, पढ़ाई में। और आपकी जैसे भी आर्ना और श्रेया ने कहा कि आपकी बॉडी फिट रहेगी, आप हेल्दी रहेंगे, तो एक एज के बाद भी आपको पता चलेगा कि योग ने कितना आपको लाभ दिया है। और बातें तो यूं बहुत सारी श्रेया और आर्ना से करनी है लेकिन समय भी हमें कह रहा है कि हम उसका ध्यान रखें। तो आर्ना और श्रेया, आप हमारे स्टूडियोज में आई और योग ने कितना आपके जीवन को लाभान्वित किया है और आप लोग इस क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल करना चाहती हैं, तो हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ में है और बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए।
3: दीदी, आर्ना और श्रेया से मिलकर बहुत अच्छा लगा, इनसे मिलवाने के लिए ममता दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अनुशासनम। दर्श, ये बात हुई योग की। अब बात करते हैं संगीत की। संगीत हमारे दिलो दिमाग को सुकून देता है। ये कई तरह की बीमारियों को भी ठीक करता है। आज विश्व संगीत दिवस के अवसर पर हम लेकर आए हैं एक प्रायोजित कार्यक्रम, सुरों की सरगम नौनिहालों के संग।
1: इस विशेष संगीत कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सुर ताल संगम म्यूजिक इंस्टीट्यूट लखनऊ।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का विशेष कार्यक्रम बाल मंच। श्रोताओं, आज का दिन है बेहद खास, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विश्व संगीत दिवस। और इस अवसर पर हमारे साथ हैं लखनऊ में संचालित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सांस्कृतिक संस्था सुर ताल संगम के म्यूजिक इंस्टीट्यूट के नन्हे नन्हे प्रतिभाशाली कलाकार, उनके प्रशिक्षक श्री अभिजीत श्रीवास्तव जी और संस्था की डायरेक्टर डॉक्टर जया श्रीवास्तव जी।

0: तो आइए संस्था के बारे में कुछ और जानकारी डॉक्टर जया से प्राप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जया। आप सुरताल संगम के बारे में हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगी?
1: बहुत बहुत धन्यवाद आद्या। मैं बाल मंच के सभी श्रोताओं और संगीत प्रेमियों को आज विश्व संगीत दिवस की हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं देती हूँ। सुरताल संगम पूरी तरह से संगीत को समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था है, जिसमें संगीत से संबद्ध विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, संगीत कक्षाएं, चैरिटी प्रोग्राम, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण शिविर जैसे अन्य आयोजन किए जाते हैं, जिनमें नवोदित कलाकारों को ट्रेनिंग देकर अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर प्रतिभा प्रदर्शन के द्वारा समाज में एक उत्कृष्ट कलाकार के रूप में स्थापित करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। सुरताल संगम इंस्टीट्यूट में 5 वर्ष से 70 साल तक के स्टूडेंट्स अपनी गायन, वादन और नृत्य प्रतिभा को तराशने और संवारने के लिए सिर्फ लखनऊ शहर से ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों से भी हमारे म्यूजिक इंस्टीट्यूट में आते हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से, अलग अलग स्थानों से भी बहुत से लोग ऑनलाइन क्लासेस के जरिए अपनी गायन और इंस्ट्रूमेंटल ट्रेनिंग विधिवत लेते हैं और हर तरह से सुरताल संगम की ट्रेनिंग से संतुष्ट होते हैं। तो आज सुरताल संगम इंस्टीट्यूट के कुछ खास वोकल स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से आपको मिलवाती हूँ। उनके विचार और उनकी गायकी का जादू निश्चित ही आपका मन मोह लेगा। तो आइए बातचीत करते हैं हमारे कुछ खास स्टूडेंट से।
2: मेरा नाम अन्नू पांडे है और मेरी बेटी का नाम है वैष्णवी पांडे। हम लोग जब से सुरताल संगम से जुड़े हैं तब से मेरी बेटी के गायन में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और सर का सिखाने का जो तरीका है बहुत अच्छा है। बहुत ही आसान तरीके से बच्चों को सिखाते हैं और यहाँ पर सिंगिंग के साथ साथ योगा मेडिटेशन का भी क्लास जय मैम करवाती हैं।
3: जब से मैं सुरताल संगम इंस्टीट्यूट में आई हूँ मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत सारी कमियाँ थी मेरे अंदर और बहुत सी चीज़ें मुझे नहीं पता थी जो यहाँ पता चली। और यहाँ के टीचर्स जया मैम और अजीत सर हम सब स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, इसलिए जो भी म्यूज़िक लवर है मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर वो उसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं म्यूज़िक में या हॉबी के तौर पे, तो एक बार सुरताल संगम इंस्टीट्यूट में विज़िट ज़रूर करें, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर।

0: मैं अतुल श्रीवास्तव, मेरी बेटी अद्विका श्रीवास्तव सुरताल संगम में एक स्टूडेंट है और संगीत की शिक्षा प्राप्त कर रही है। वास्तव में सुरताल संगम हमारे लिए एक परिवार जैसा है। अद्विका को अक्षर ज्ञान से पहले सरगम का ज्ञान इस संस्था की डायरेक्टर डॉक्टर जय श्रीवास्तव और अभिजीत सर ने कराया। इन्हीं की वजह से आज हमें संगम कला ग्रुप जैसे राष्ट्रीय मंच और दूरदर्शन पर परफॉर्म करने का मौका मिला। सुरताल संगम से जुड़कर निश्चित रूप से हर कोई किसी भी उम्र में अपने भीतर के कलाकार को प्रतिष्ठा के साथ समाज में स्थापित कर सकता है।
1: ये मेरा फेवरेट इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर सिंगिंग, डांसिंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ योगा और परफॉर्मिंग आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है।

0: मेरा नाम नीरजा पांडे है और मैं युविका पांडे की मदर हूँ। मैं सुरताल संगम में अपनी बेटी को लेकर आई थी यहाँ शिक्षा देने के लिए म्यूजिक की, और उसकी ग्रोथ देखते हुए मेरा खुद का मन हुआ कि मैं भी सीखूँ, और मुझे जया मैम ने प्रेरित किया। जब से मैंने यहाँ शुरुआत की तब से मेरा मन बहुत शांत रहने लगा है, और साथ ही साथ जो है मेरा एक स्ट्रेस लेवल जो था वो काफ़ी कम हो गया है।
1: हमें यहाँ सिर्फ संगीत ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ स्टेज परफॉर्मेंस देना भी सिखाया जाता है, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है।

0: मेरा नाम रत्ना वर्मा है और मेरी बेटी का नाम आद्या सिंह है। मैं डालीगंज से आती हूँ। क्योंकि दूरी कोई मायने नहीं रखती है, तो सुरताल संगम का मुझे एटमॉस्फेयर और यहाँ के आदरणीय गुरुजी अभिजीत श्रीवास्तव का सिखाने का मेथड मुझे बहुत पसंद है। और एक बात मैं अपनी प्यारी सी जया मैम के लिए कहना चाहूँगी कि वो बच्चों के साथ बच्चे बनकर और बड़ों के साथ बड़े बनकर और थोड़ा सा हंसकर, थोड़ा सा मजाक कर, थोड़ा सा अनुशासन में रहकर संगीत की शिक्षा देती हैं।
1: मुझे तो सुरताल संगम के ग्रुप परफॉर्मेंस और स्टेज शो बहुत पसंद है।

0: में।
1: मैं ईश नंदिनी फिरोजाबाद से लखनऊ आकर सुरताल संगम इंस्टीट्यूट में म्यूजिक सीखती हूँ। यहाँ पर हर दिन कुछ नया और स्पेशल म्यूजिक सीखने को मिलता है।

0: सुरताल संगम इंस्टीट्यूट के लोकप्रिय प्रशिक्षक अविजित श्रीवास्तव जी, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: आज के इस विशेष अवसर पर मैं सभी सुनने वालों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि संगीत केवल सुरों का मेल नहीं, बल्कि भावनाओं की वो मधुर धारा है जो हर दिल को छू जाती है। साथ ही संगीत सीखने वालों में एकाग्रता बढ़ती है और याददाश्त भी मजबूत होती है। हमारे मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य को भी संतुलन मिलता है। ये हमारे हर सुख दुख का साथी बन जाता है और हमें ईश्वर से भी जुड़ने का एक अद्भुत साधन है।
0: अगर कोई किसी भी उम्र में सुरताल संगम संस्थान में सीखना चाहे तो उसका क्या तरीका है?
1: जी बिल्कुल, प्रतिभा को तराशने और प्रदर्शन की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा एड्रेस नोट कर सकते हैं। D766 ओमेक सिटी, बिजनौर रोड, नियर शहीद पथ, लखनऊ। जो लोग इंस्टीट्यूट तक आ पाने में असमर्थ होते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी सुचारू रूप से चलती हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें और हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8957433886। हमारा नंबर है 8957433886। इसी के साथ आप अगर हमारी गतिविधियों को देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.surtalsangamofficial.com पर विजिट कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल सुरताल संगम क्रिएशंस को देख सकते हैं।
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया अविजित जी, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। डॉक्टर जया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुरताल संगम के बारे में हमको इतनी जानकारी दी। आपकी बातें और आपका संगीत दोनों ही दिल को छू गए। श्रोताओं, विश्व संगीत दिवस के इस खास मौके पर हम सब मिलकर यही संकल्प लें, संगीत को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और खुशियों को फैलाएं। इसी के साथ मैं आद्या श्रीवास्तव आपसे विदा लेती हूँ।
2: इस विशेष संगीत कार्यक्रम के प्रायोजक थे सुरताल संगम म्यूजिक इंस्टीट्यूट लखनऊ।
3: बच्चों, अभी आपने सुना ये प्रायोजित कार्यक्रम सुरों की सरगम नौनिहालों के संग। और दर्श, इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है।
2: दीदी, काश हमारे कार्यक्रम का समय और लंबा हो जाता।
3: बिल्कुल दर्श, कार्यक्रम का समय जब लंबा होगा तब होगा, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में आज का दिन सबसे लंबा होता है।
2: जी दीदी, 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है।
3: हाँ, लेकिन अब हमें अपने कार्यक्रम को वाइंड अप करना पड़ेगा और अपने बाल साथियों से लेते हैं विदा। अगले बाल मंच कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति
2: दर्श दीक्षित को
3: और राजलक्ष्मी दीदी को। जय हिंद।
4: आकाशवाणी लखनऊ से अभी बच्चे सुन रहे थे अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बाल मंच। आकाशवाणी लखनऊ से अब आनंद लीजिए सदाबहार नगमों का। नमस्कार श्रोताओं, सदाबहार नगमे एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम सुनते हैं वो नगमे जो आज भी आपके दिल के

करीब हैं। सदाबहार गीत जहां हर धुन में बसती है यादें, हर गीत में छिपी होती है एक कहानी और हर सुर छू जाता है दिल की गहराइयों को। तो तैयार हो जाइए कुछ सुहानी यादों में खो जाने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले मधुर नगमे के साथ, जो हमने लिया है दिल तेरा दीवाना फिल्म से। सन 1962 में आई इस फिल्म का ये गीत लिखा है शैलेंद्र ने और इस गीत की धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। इस गीत में जो आवाज़ें आप सुनेंगे वो हैं मोहम्मद रफ़ी के साथ लता मंगेशकर की।

आगे बढ़ता है, आंखों में ख्वाब सजाकर जो आगे बढ़ता है, हर ठोकर को भी सीढ़ी समझकर चढ़ता है, वही समझ पाता है इस गीत का मतलब, जिसका दिल मोहब्बत में हर पल धड़कता है।

दोस्तों, जिंदगी कभी खुशियों का मेला होती है तो कभी यादों का साया। हर मोड़ पर कुछ कहानियां बनती हैं, कुछ बिखर जाती हैं। ऐसे ही जीवन के हर रंग को बहुत ही खूबसूरती से बयां करता है फिल्म शोर का अमर गीत, एक प्यार का नगमा है। ये गाना हमें याद दिलाता है कि जीवन एक बहती धारा है जिसमें कभी हंसी है, कभी आंसू, लेकिन हर पल में एक कहानी है। तो आइए जिंदगी की इस मधुर धुन को महसूस करते हैं।

संगीत एक प्यार का नगमा है। ये गाना हमें याद दिलाता है कि जीवन एक बहती धारा है, जिसमें कभी हंसी है, कभी आंसू, लेकिन हर पल में एक कहानी है। तो आइए जिंदगी की इस मधुर धुन को महसूस करते हैं।

इस समय आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की दिलकश आवाज में शोर फिल्म का ये सदाबहार गीत, जिसे लिखा है संतोष आनंद ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आकाशवाणी लखनऊ से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे, वो गीत जो आज भी आपके दिलों में बसे हैं। कार्यक्रम में अब मूड को थोड़ा सा बदलते हैं और चलते हैं हल्की फुल्की मस्ती की ओर। और अब आपको सुनवाते हैं संगम फिल्म का मस्ती से भरा ये गीत, लता मंगेशकर की दिलकश आवाज में। हसरत जयपुरी की कलम से निकले इस गीत की धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, कभी कभी कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। ऐसा ही एक खूबसूरत गीत है, तेरे बिना जिया जाए ना, जो फिल्म घर का हिस्सा है। ये गाना उस एहसास को बयां करता है जब किसी अपने के बिना हर पल अधूरा लगने लगता है, हर धड़कन में बस उसी की कमी महसूस होती है। तो आइए दिल को छू लेने वाले इस मधुर गीत को सुनते हैं।

लता मंगेशकर को इस समय आप सुन रहे हैं घर फिल्म में। गीत लिखा है गुलजार साहब ने और इसे संगीत से संवारा है आर डी बर्मन ने।

किशोर कुमार को आप सुन रहे हैं चलते चलते फिल्म में। अमित खन्ना ने इसे लिखा है, जिसकी धुन बनाई है बप्पी लहरी ने। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के सदाबहार नगमे का सफ़र यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है इन प्यारे गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और कुछ मीठी यादों को फिर से जगा दिया होगा। मैं आपका रेडियो दोस्त पंकज शुक्ला आपसे आज के इस कार्यक्रम से अनुमति चाहता हूँ। फिर मिलेंगे इन्हीं सदाबहार नगमों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ।

आकाशवाणी लखनऊ से अभी आप आनंद ले रहे थे सदाबहार नगमों का। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा

0: सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने अपनी पत्नी के साथ बीच रोड पर एक कार्यक्रम में योग किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ करेंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 41 ओवर में 5 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। देवी पत्नी राम सुरेश निवासी साहिल नगर थाना देवा बाराबंकी से हमें सूचित करती हैं कि उनका पुत्र विवेक यादव, जिनकी उम्र है 14 वर्ष, कद 4 फीट 6 इंच, रंग गोरा और पतला चेहरा है, ये 29 अप्रैल 2026 से कहीं लापता है। इनके बारे में कोई भी जानकारी आप इस पते पर दे सकते हैं। थाना प्रभारी, थाना देवा बाराबंकी। प्राप्त सूचना के अनुसार शबनम पुत्री स्वर्गीय मोहम्मद उमर, जिनकी उम्र है 18 वर्ष, कद 4 फीट 5 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा और इकहरा मजबूत जिस्म है। शबनम के बाल लंबे और काले हैं, ये 2 फरवरी 2026 से कहीं लापता हैं। जिस समय ये लापता हुई, इन्होंने नीली जीन्स, काला टॉप और हवाई चप्पल पहनी हुई थी। इनके बारे में कोई भी जानकारी आप इन मोबाइल नंबरों पर दे सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9555895586 और दूसरा मोबाइल नंबर 8808539659। मोबाइल नंबर एक बार फिर मिला लें, 9555895586 और दूसरा मोबाइल नंबर 8808539659। कमलेश कुमार पुत्र रामचंद्र निवासी

0: राम बढ़ैया खेड़ा थाना मोहम्मदी खीरी से हमें सूचित करते हैं कि प्रिया देवी, जिनकी उम्र है 20 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गेहुआ, चेहरा अंडाकार है, ये 11 अप्रैल 2026 दो बजे से कहीं लापता है। जिस समय लापता हुई, इन्होंने मेहरून रंग का सूट और हवाई चप्पल पहनी हुई थी। इनके बारे में कोई भी जानकारी आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं, 7800620502। मोबाइल नंबर एक बार फिर मिला लें, 7800620502। नंद किशोर पुत्र विशंभर, निवासी रायपुर जाटन जमेल अचलगंज उन्नाव से हमें सूचित करते हैं कि अंजलि, जिनकी उम्र है 18 वर्ष, कद 5 फीट 1 इंच, रंग गेहुआ, दोहरा जिस्म है, ये 31 जुलाई 2025 से कहीं लापता हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी आप इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं, 9838619560। मोबाइल नंबर एक बार फिर मिला लें, 9838619560। एक और प्राप्त सूचना के अनुसार अंकित कुमार पुत्र अशोक कुमार, निवासी फिरोजपुर पोस्ट शाहपुर जागीर थाना व तहसील मोहम्मदी लखीमपुर खीरी, जिनकी उम्र है 16 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला, इनके बाल लंबे और चेहरा गोल है। अंकित कुमार 8 मई 2025 से कहीं लापता है। जिस समय लापता हुए, इन्होंने गुलाबी रंग की शर्ट और नीले रंग की पैंट और हवाई चप्पल पहनी हुई थी। अंकित के बारे में कोई भी जानकारी आप इस पते पर दे सकते हैं, थाना प्रभारी थाना मोहम्मदी लखीमपुर खीरी। खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं समाप्त हुईं। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए।
2: फिल्मी दुनिया का एक बेहद चमकीला स्टार
1: विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 3:10 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
3: ये आकाशवाणी लखनऊ है, इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। योगा का 12वां आलमी दिन आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। इस साल का थीम है उम्र बढ़ने के असरात का मुकाबला करने के लिए योगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योगा डे की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मरकजी तकरीब आज मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता के रेड रोड पर हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस तकरीब में योगा प्रैक्टिस की क्यादत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि योगा पूरी दुनिया को जोड़ने का एक अहम जरिया है।
4: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में, बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
3: वजीर आजम

0: नरेंद्र मोदी ने योगा को जिस्मानी और जहनी सुकून हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया बताया। वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बैन अल-अक़वामी योगा दिन पर लोगों को मुबारकबाद दी है। पूरे उत्तर प्रदेश में आज खसूसी योगा प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। गवर्नर, वजीर आला, नायब वजीर आला, कानून साज असम्बली के स्पीकर, कानून साज काउंसिल के चेयरमैन और तमाम रियासती वज़रा और इंतजामी अहदेदारों ने मुख्तलिफ़ अज़ला में मुनक़िद योगा सेशन में हिस्सा लिया। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में योगा किया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने झांसी के फोर्ट ग्राउंड में योगा सेशन की क़यादत की। योगा की मश्क करके सेहतमंद रहने का पैगाम देते हुए वजीर आला ने रियासत के लोगों को बैन अल-अक़वामी योगा दिन पर मुबारकबाद दी।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। हम सब आभारी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सब के लिए एक विजन प्रस्तुत किया है।
0: नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के त्रिवेणी में संगम नोज में शिरकत की, जबकि बृजेश पाठक ने लखनऊ के दी रेजिडेंसी पार्क में शिरकत की। इसी तरह फर्रुखाबाद, मेरठ, श्रावस्ती, अयोध्या, कानपुर नगर, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, वाराणसी, कुशीनगर, चंदौली, मऊ समेत मुख्तलिफ अजला में रियासती हुकूमत के वज़रा और अवामी नुमाइंदों ने योगा डे के प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। योगा डे के मौके पर स्कूलों में ग्रुप योगा मशकें और आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किए गए, जहाँ तलबा को योगा के जिस्मानी और रूहानी फवायद से आगाह किया गया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ दो रोजा दौरे पर महोबा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने महोबा को 697 करोड़ रुपए के 88 तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात दी। कबल अज़ वजीर आला गोरखपुर गिरी पहाड़ के दामन में वाक़ सिद्ध बाबा धाम पहुंचे, जो गुरु गोरखनाथ की तपस्या की जगह है और वहां पूजा की। वजीर आला शहर के मोदी मैदान में मुनक़िद जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। इसके बाद श्री योगी महोबा से हमीरपुर जिले के राठ कस्बे के लिए रवाना होंगे, जहां वजीर आला 636 करोड़ रुपए से ज्यादा के 75 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल 221 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा, जिसमें ललितपुर में 1,766 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला एक सरकारी मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। इस मौके पर एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि बुंदेलखंड तरक्की का नमूना बन रहा है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में हर घर तक नल स्कीम को नाफिज किया जा रहा है, पीने का साफ पानी लोगों के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने आज नीट UG के दोबारा इम्तिहान के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। मुल्क भर और बैरून मुल्क मुख्तलिफ शहरों में 22,79,000 से ज्यादा उम्मीदवार इम्तिहान में शिरकत करेंगे। इम्तिहानी मराकज में दाखिला सुबह 11 बजे शुरू हुआ और दोपहर 1:30 बजे बंद होगा। तुलबा को एक नया एडमिट कार्ड और एक दुरुस्त तस्वीरी शिनाख्ती कार्ड लाना होगा। 3 मई के इम्तिहान के एडमिट कार्ड आज दुरुस्त नहीं होंगे। मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट UG के लिए दोबारा इम्तिहान आज मुल्क भर के 551 शहरों और बैरून ममालिक के 14 शहरों में मुनक़िद हो रहा है। मेडिकल दाखिला इम्तिहान दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक मुनक़िद होगा। इस बार उम्मीदवारों को मजीद 15 मिनट का वक्त दिया गया है। रियासत भर के 59 अज़ला में नीट का दोबारा इम्तिहान लिया जा रहा है। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए शुमाली रेलवे लखनऊ डिवीज़न खसूसी गैर महफूज ट्रेनें चला रहा है। एडमिट कार्ड पर उम्मीदवारों को स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की बसों में किराए में 50% की छूट भी दी जा रही है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। अब सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आज इतवार है। आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं झलकी, खोज स्वयं की, राह योग की। आलेख है अनुभव खरे का, संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग है कीर्ति श्रीवास्तव का और निर्देशन है अतीश श्रीवास्तव का।
3: वान्याम एक फोटो और खींच देना मेरी बेटा, बस एक इस पोज में।
4: क्या पापा, आप सीरियसली तो योग करते नहीं, बस योगा आसनों के पोज बना बना कर फोटो खिंचवाते रहते हैं। अब मैं और क्लिक नहीं करूंगी आपकी फोटो।
3: बेटा प्लीज, शाम को ऑफिस से आते समय तेरे लिए चॉकलेट।

0: का एक पूरा डब्बा लेकर आऊंगा।
1: वाओ,
2: बच्चे को लालच देकर फोटो खिंचवा रहे हो, वो भी सोशल मीडिया पर झूठ परोसने के लिए।
0: अरे डियर, समझा करो ना, टाइम की डिमांड है।
2: हाँ, टाइम की डिमांड है।
0: हाँ श्वेता, कुछ दिनों बाद इंटरनेशनल योगा डे है ना।
2: हाँ
0: तो मेरे पूरे ऑफिस में बड़ा योगमय माहौल चल रहा है, इसलिए रोज सुबह सुबह 2-4 फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता हूँ।
2: अच्छा, तो ये झूठ मूठ की फोटो डालने से अच्छा है कि सचमुच का योग ही कर लेते। रोज रोज ये सुबह तुम्हारी जो हड्डियाँ आकड़ी रहती हैं, बिना 2 कप चाय पिए तुमसे बिस्तर से हिला नहीं जाता।
0: अरे यार, तुम मेरी बीवी हो या दुश्मन?
3: ठीक ही तो कह रही है बहू, कितनी बार कहा कि रोज सुबह 5 बजे उठकर पार्क में आ जाकर ऐसे ऐसे योगासन सिखाऊंगा कि तेरी सारी दिक्कतें छू मंदर हो जाएंगी। लेकिन नहीं,
0: क्या है ना बाबूजी, इस बार ऑफिस में 21 जून को बहुत बड़े योग सत्र का आयोजन हो रहा है। उड़ती उड़ती ये खबर सुनने में आ रही है कि उस दिन कुछ लोगों का प्रमोशन किया जाएगा।
3: अच्छा,
0: और प्रमोशन में उन्हीं लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी जो फिजिकली फिट होंगे, रूटीन लाइफ फॉलो करते होंगे। ये सारी कवायद मैं इसीलिए तो कर रहा हूँ ना बाबूजी।
3: वाह बेटा वाह, अगर असली कवायद कर लेता तो वास्तव में योग दिवस के दिन तू ही प्रमोशन डिजर्व करता। लेकिन नहीं, नालायक कहीं का।
0: मैं तो हूँ ही नालायक, मैं जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस की देर हो रही है।
4: हेलो मिस्टर विराट, कैसे हैं आप?
5: सर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन सर।
4: हाँ भाई, फिट और फाइन तो हो गए ही, रोज सुबह योग जो करते हो।
5: अरे सर, वो तो बस यूं ही सर।
4: मैं तो रोज सुबह सोशल मीडिया पर आपकी योगा आसन वाली पोस्ट देखकर बहुत इंस्पायर होता हूँ।
6: मे आई कम इन सर?
5: यस कम इन।
6: हेलो सर। हेलो मिस्टर विराट।
5: हेलो नैंसी, कैसी हो?
6: आई एम गुड मिस्टर विराट। आज सुबह मैंने आपकी पोस्ट देखी, पीले कुर्ते में योग करते हुए आप काफी हैंडसम लग रहे थे।
5: ओह रियली?
6: वैसे आपका ये डे वाइज ड्रेसिंग करना इज अमेजिंग।
5: थैंक्स नैंसी।
4: हाँ तो मिस नैंसी, थोड़ा काम की बात भी कर लें।
6: जी जी सर।
4: योगा डे पर आपकी प्रिपरेशन की लेटेस्ट अपडेट क्या है?
6: योग सत्र के लिए वेन्यू डिसाइड हो गया है, सोशल मीडिया टीम को इवेंट के प्रमोशन के लिए रेडी कर दिया है, पोस्टर एंड बैनर्स के भी ऑर्डर दे दिए हैं, योग डे का ड्रेस कोड भी फाइनलाइज हो गया है। सर, आफ्टर योग सत्र हेल्दी स्नैक्स का मेन्यू चार्ट भी रेडी है।
4: ओके, योग एक्सपर्ट कौन है?
6: सॉरी सर, मैं तो योग एक्सपर्ट बुक करना ही भूल गई।
4: व्हाट, इतनी बड़ी मिस्टेक! सबसे पहले योग एक्सपर्ट ही फाइनलाइज करना चाहिए था तुम्हें। उस दिन पूरे शहर में हर जगह योग इवेंट होते हैं, अब इतने शॉर्ट नोटिस पर कहाँ मिलेगा अच्छा योग एक्सपर्ट?
6: प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं करती हूँ।
4: टाइम ही तो नहीं है मिस नैंसी, दैट्स माय मिस्टेक। मुझे तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी देनी ही नहीं चाहिए थी।
6: अरे सर, मिल गया एक्सपर्ट, मिल गया।
4: व्हाट?
6: हाँ सर, योग एक्सपर्ट मिल गए, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत हाईलाइट भी है।
4: कौन है?
6: अरे सर, हमारे सामने ही तो है, हमारे योग एक्सपर्ट मिस्टर विराट।
0: मैं कोई योग एक्सपर्ट नहीं हूँ।
4: नॉट ए बैड आइडिया मिस्टर विराट, आई नो आप इस योग के इवेंट को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आपका नाम आगे बढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया पर आपकी योग की पोस्ट हायर मैनेजमेंट के सभी लोग देखते हैं, आपने तो किसी बड़े अच्छे गुरु से सीखा है योग, मुझे याद है आपने मुझे बताया था एक बार।
0: हे भगवान, मेरा यह झूठ मुझ पर ही भारी पड़ गया।
4: क्या बात है मिस्टर विराट, किस सोच में पड़ गए?
0: कुछ नहीं सर, कुछ नहीं।
4: ठीक है, मैं आपका नाम आगे भेज देता हूँ। ओके
0: जी सर।
2: अरे आ गए आप? क्या बात है, आज बड़े परेशान लग रहे हैं।
0: सब गड़बड़ हो गई श्वेता।
2: क्या हुआ?
0: अरे होना क्या है, मैंने खुद ओखली में सर दे दिया।
2: मुहावरे मत सुनो, साफ साफ बताओ हुआ क्या।
0: वो इतने दिनों से वो योग वाली पोस्ट डालना ना, मेरे लिए मुसीबत बन गई है। अब जबकि योग दिवस के लिए कोई दूसरा योग एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने मुझे ही योग एक्सपर्ट बना दिया है।
3: इसे कहते हैं अबेल, मुझे मार।
0: सॉरी बाबूजी, मैं तो बस।
3: चुप कर, नालायक कहीं का।
0: बाबूजी, मुझे तो बिल्कुल भी योग करना नहीं आता है।
1: अरे पापा, आप रोते क्यों हैं? दादाजी तो कितना अच्छा योग सिखाते हैं, पूरी कॉलोनी के लोगों को तो दादाजी ने ही योग सिखाया है, मुझे भी दादाजी योग सिखा रहे हैं।
3: बेटा बस इस नालायक को ही तो नहीं सिखा पाया मैं।
2: बाबूजी, अब इन सब बातों का क्या ही फायदा, पर अभी भी एक हफ्ता बाकी है, अगर आप विराट को थोड़ा कुछ सिखा दें तब शायद ये कुछ कर पाए।
0: जी बाबूजी, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ना आप।

0: ठीक है चलो, अगर मुझसे योग सीखना है तो सुबह 5 बजे पार्क में पहुंच जाना।
1: ओके बाबूजी।
2: गुड मॉर्निंग बाबूजी।
1: ठीक 5 बजे हैं और मैं आ गया।
0: जब गले पर तलवार लटक रही है तब जनाब सही टाइम पर उठें। देखो तुमने अभी तक कोई आसन तो कभी किया नहीं है, इसलिए मैं पहले तुम्हें सबसे सरल आसन का ही अभ्यास कराऊंगा। सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को आगे करो। हाँ ऐसे। अब दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा कर दोनों हाथों को आसमान की तरफ ऊपर करो। और अब धीरे धीरे एड़ियों को उठाते हुए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचो। ये आसन शरीर का संतुलन सही करता है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखता है। इसे ताड़ासन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को 2 से 3 बार रिपीट करो। चलो
1: 1 2 बाबूजी।
0: एक आसन में ही हालत खराब हो गई तुम्हारी।
1: मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं थका हूँ। मुझे 1 हफ्ते में सब कुछ सीखना है बाबूजी। इनफैक्ट आप रोज शाम को भी मुझे सिखाइए।
0: ओके चलो अब मैं तुम्हें दूसरा आसन बताता हूँ। अब पैरों में थोड़ा गैप रखकर खड़े हो और अपने हाथों को सामने की ओर फैलाओ। अब कमर को धीरे धीरे दाईं ओर फिर बाईं ओर घुमाओ। इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहो। ये आसन रीढ़ की हड्डी के कड़ेपन को खत्म करता है। इस आसन का नाम है कटी चक्रासन। ठीक
1: बाबूजी, बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर ब्रेक ले लूँ।
0: चलो ठीक है, अभी के लिए 2 आसन ही काफी हैं।
1: मतलब क्लास ओवर?
0: जी नहीं, क्लास इज नॉट ओवर। योग में सबसे पहले आसन किया जाता है, उसके बाद प्राणायाम और अंत में ध्यान। आसन हमारे शरीर को साधता है और प्राणायाम हमारी सांसों को साधता है और ध्यान हमारे मन को। इन तीनों को साधने से ही मनुष्य स्वयं से जुड़ जाता है। योग का अर्थ ही है जुड़ना, स्वयं से साक्षात्कार करना। जब व्यक्ति स्वयं से जुड़ता है तब उसके सारे तन मन के रोग दोष दूर हो जाते हैं, समझे?
1: जी। वैसे बाबूजी मैं थक तो जरूर रहा हूँ लेकिन फिर भी अच्छा महसूस हो रहा है, शरीर में बड़ा हल्कापन लग रहा है बाबूजी।
0: वेरी गुड, थोड़ी देर प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कर लो, देखना तुम्हें कितना हल्का महसूस होगा। सबसे पहले मैं तुम्हें अनुलोम विलोम प्राणायाम सिखाऊंगा। अब तुम पालथी मारकर बैठो आराम से। दाएं अंगूठे से दाहिनी नाक को बंद करो और फिर बाईं नाक से गहरी सांस लो। शाबाश। अब बाईं नाक बंद करके दाहिनी नाक से सांस छोड़ो। अब दाईं नाक से सांस लो और पुनः बाईं नाक से छोड़ो। ये प्रक्रिया बार बार दोहराओ। सांस को आराम से लेना और छोड़ना है। शुरुआत में इसे बस 3 मिनट करना ही सही रहता है और अभ्यास हो जाने पर 15 मिनट तक किया जा सकता है। ये प्राणायाम शरीर में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाकर नाड़ियों को शुद्ध करता है, जिससे कि हमारा मन और शरीर के बहुत से रोग ठीक हो जाते हैं।
1: बाबूजी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे शरीर में तमाम सारी दिक्कतें रहती थीं, पर आज बहुत हल्का और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बाबूजी जब इतना करने से ही इतना फायदा होता है तब ध्यान करने की आवश्यकता क्यों होती?
0: देखो बेटा, दुनिया का हर एक जीवित प्राणी सांस लेता है। अच्छा मान लो कुछ पल के लिए वातावरण से ऑक्सीजन गायब हो जाए, तब क्या कोई जीवित रह पाएगा?
1: बिल्कुल नहीं।
0: मतलब ये कि हम सबके लिए सबसे जरूरी चीज है सांस लेना, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को कभी महसूस ही नहीं करते, जो कि वास्तव में जीवन का स्पंदन है। हम हमेशा विचारों की दुनिया में ही खोए रहते हैं। बेटा अब कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने अंदर प्रवेश करती इस प्राणवायु को महसूस करो, फिर प्राणवायु को बाहर निकलते हुए भी महसूस करो। अपना सारा ध्यान कुछ देर के लिए अपनी सांसों पर ही केंद्रित कर दो।
1: बाबूजी आज मुझे ध्यान का मतलब समझ में आ गया। कुछ पल के लिए विचारों और भावनाओं से परे जाकर स्वयं को बस एक जीवन के रूप में महसूस करना ही ध्यान है। अब मेरा सारा तनाव सारी थकान कोसों दूर जा चुकी हैं। बाबूजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज मैं आपकी दी हुई योग की शिक्षा को स्वयं एक शिक्षक बनकर सिखाने जा रहा हूँ।
0: अरे बेटा मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम आज के इस योग सत्र को बहुत अच्छे से संपन्न करोगे।
1: जी बाबूजी।
3: अच्छा चलिए,

0: जल्दी से दही शक्कर खा लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा।
1: नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि पूरी दुनिया ने योग के महत्व को समझा और उसे अपनाया। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर विराट मल्होत्रा जी को, जो कि हमारे आज के सत्र के योग गुरु भी हैं और इस संस्थान के एक कर्मठ कर्मचारी भी। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए।
2: थैंक यू। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज मैं इस पवित्र मंच पर जो कुछ कहूँगा सच ही कहूँगा। मैंने अपने जीवन में बहुत झूठ बोले, लेकिन योग के मार्ग पर चलने के लिए झूठ या अन्य किसी भी बुराई के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सिर्फ कुछ आसनों को कर लेना ही योग नहीं है। सनातन संस्कृति में योग के 8 नियम बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हमारे योग के सबसे पहले नियम यम में ही सही जीवन जीने के सभी निर्देश दिए गए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अगर हम इन सभी का पालन करते हैं तब भी हमारा संपूर्ण जीवन योगमय हो जाता है। अनुशासन पूर्वक जीवन जीते हुए कुशलता पूर्वक अपना कर्म करना ही योग है। अगर हम योग के पहले नियम यम का पालन करते हैं तभी हम योग के आगे के नियमों के आयामों को छू सकते हैं और अपने जीवन को उच्चतम स्तर तक ले जा सकते हैं। अब मैं आपसे अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं कोई योग का एक्सपर्ट ना पहले था ना आज हूँ। वो सारी तस्वीरें जो आपने सोशल मीडिया पर देखी एक झूठ था, लेकिन मेरे बाबूजी ने मुझे न सिर्फ योग करना सिखाया बल्कि योग का सही मर्म समझाया, योगमय होकर जीना सिखाया उन्होंने। विश्वास के साथ ये जरूर कहूंगा, इतने दिनों में जितना मुझे मेरे बाबूजी ने सिखाया है उतना मैं आप सबको सिखा सकता हूं, अगर आप सब मुझ पर विश्वास करें तो।
3: विराट, आज तुमने इतने बड़े मंच पर जितनी बेबाकी के साथ सच बोला और योग के मर्म को जितनी सहजता से तुमने बताया, इन बातों से ही ये साबित हो जाता है कि आज इस मंच पर जो विराट खड़ा है वो वास्तव में एक विराट योगाचार्य है। अब आप में से कुछ लोग मंच पर आ सकते हैं जिनके माध्यम से विराट जी आप सभी को योग की क्रियाएं सिखाएंगे।
1: आज का योग सत्र बहुत ही कुशलता पूर्वक संपन्न हुआ। विराट मल्होत्रा जी ने योग के सभी आयामों को बहुत अच्छी तरह से समझाया भी और सिखाया भी। अब मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड चीफ मिस्टर बत्रा जी को। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए।
3: साथियों, आज का हमारा योग सत्र कुशलता पूर्वक संपन्न हो चुका है और मैं इस शुभ दिन पर एक प्रमोशन अनाउंस करना चाहता हूं। आप सब तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। उनका नाम है विराट मल्होत्रा।
2: मैं इस प्रमोशन का हकदार नहीं हूं। मेरी सारी सच्चाई जानने के बाद भी आप मुझ पर?
3: हाँ विराट, सच्चाई जानने के बाद ही मैंने तुम्हें प्रमोशन देने का फैसला किया है। दुनिया में झूठ बोलने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन इतनी ईमानदारी के साथ सच बोलने वाला नहीं। और सोशल मीडिया पर सिर्फ तुमने ही झूठ नहीं दिखाया, सारी दुनिया सोशल मीडिया पर झूठ और दिखावा ही तो करती है। हम सबको तुम पर गर्व है विराट।
4: खोज स्वयं की राह योग की। अभी आप अनुभव खरे की लिखी ये झलकी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे डॉक्टर अनिल रस्तोगी, वीरेंद्र तिवारी, वरुण टमटा, कनिका अशोक, निधि त्रिवेदी, विदुषी भारद्वाज और वान्या। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग था कीर्ति श्रीवास्तव का और निर्देशक थे अतीश श्रीवास्तव। अब आज इतवार है, कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज के साथ साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। अब सुनिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम अक्षय वट। आज इस कार्यक्रम

0: कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम आपको सुनवा रहे हैं योग सिपाएं दर्द रहित एवं उत्तम वृद्धावस्था विषय पर आचार्य प्रशांत शुक्ला योग प्रशिक्षक से डॉक्टर अलका चौधरी की भेंट वार्ता।
1: अक्षयवट परंपराओं, संस्कृति, यादों, अनुभवों और संवेदनाओं का संगम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी लखनऊ से मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अलका चौधरी और आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा और आत्मीय कार्यक्रम अक्षयवट। अक्षयवट एक ऐसा वट वृक्ष जिसकी छांव में अनुभवों का खजाना है, संस्कृति की महक है और जीवन का अनमोल ज्ञान है। हमारे तमाम सम्मानित बुजुर्गों और प्रबुद्ध श्रोताओं का आज के इस विशेष अंक में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज का दिन बहुत ही अनूठा और पावन है। आज कैलेंडर के पन्नों पर एक अद्भुत संयोग आकार ले रहा है। एक तरफ जहां पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाकर स्वास्थ्य, संयम और मानसिक शांति का उत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज का दिन उस शख्सियत को समर्पित है जो हमारे जीवन का सबसे पहला और सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है, यानी फादर्स डे। आज सोचते सोचते मन इस विचार से भर गया कि योग और पिता में कितनी समानता है। योग हमें विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहना सिखाता है और पिता वो वट वृक्ष हैं जो जीवन के हर झंझावात में पूरे परिवार को स्थिरता और सुरक्षा देते हैं। आज योग दिवस और फादर्स डे के इस दोहरे मौके पर दुनिया के सभी पिताओं को हमारा सादर नमन। बुजुर्गीय जीवन का वो खूबसूरत पड़ाव है जहां अनुभव की समृद्ध छाया होती है, लेकिन अक्सर इस उम्र में जोड़ों का दर्द, कमर दर्द या उठने बैठने की तकलीफें हमारे इन पिताओं की, हमारे बुजुर्गों की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर देती हैं। इसलिए आज विशेष अवसर पर हम बात करेंगे कि कैसे योग के छोटे छोटे सहज अभ्यासों से हमारे पिता और हमारे सभी वरिष्ठ जन एक दर्द रहित, ऊर्जावान और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इस बेहद महत्वपूर्ण विषय योग से पाए दर्द रहित और स्वस्थ वृद्धावस्था पर मार्गदर्शन के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने योगाचार्य प्रशांत शुक्ला जी। आचार्य जी, अक्षयवट कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद मैम।
2: आचार्य जी, अक्सर देखा जाता है कि उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों में दर्द, घुटनों में तकलीफ या शरीर में जकड़न एक आम समस्या बन जाती है। ऐसे में हमारे कई बुजुर्ग सोचते हैं कि अब इस उम्र में योग करना उनके लिए कठिन होगा। आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरा मानना है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए योग की महत्ता अधिक है, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार के जो एक्सरसाइज है, जो व्यायाम है, वो नहीं कर सकते हैं। जोड़ों में दर्द हो, कमर में दर्द हो या भूलने की बीमारी हो, नींद की बीमारी हो, योग उनको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य देता है। उसके लिए उनको बहुत ही सरल तरीके से योग करना चाहिए, जैसे लेटकर, बैठकर और श्वास क्रियाओं का अभ्यास। यदि हमारे शरीर में प्राण का प्रवाह सही तरीके से होता है तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में कहीं पर भी दर्द नहीं होता है।
2: बहुत अच्छी बात बताई आचार्य जी आपने। आचार्य जी, कमर दर्द और घुटनों के दर्द से हमारे बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, उनके लिए कोई विशेष आसन या क्रिया जो वो आसानी से घर पर कर सकें?
3: देखिए, कमर दर्द या घुटनों में दर्द है तो अधिकतर हम देखते हैं कि लोग वॉक करते हैं जी। पर मेरा मानना है कि जब एक अवस्था बढ़ जाती है, 40 साल 50 साल के बाद आयु हो जाती है जी। तो हमें अधिक वॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत देश जो है वायु प्रधान देश है। यहाँ पर चारों तरफ समुद्र है और पहाड़ियां हैं, तो वायु की प्रधानता जैसे ही शरीर में बढ़ती है तो शीत वायु रोग यानी कि जोड़ों में दर्द वायु के प्रकोप से और बढ़ने लगता है। इसीलिए भारतवर्ष में, हमारे देश में लोग योग साधना करते थे। तो लेट के जो अभ्यास किए जाते हैं, विशेष रूप से मैं कुछ आसनों के नाम बता रहा हूँ जिसको यदि बुजुर्ग लोग करें, जो किसी भी आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं आराम से, जैसे अर्धहलासन, उत्तानपाद आसन और दोनों पैर से पवनमुक्तासन, सेतुबंधासन, ये आसनों का अभ्यास यदि किसी भी आयु वर्ग के लोग करते हैं तो वो बेड पर भी लेट कर सकते हैं या मैट पर, अगर वो जमीन पर लेट सकते हैं तो जमीन पर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ वायु के प्रकोप को कम

0: करने के लिए हमारे योग शास्त्र में मुद्राओं का वर्णन है। इंडेक्स फिंगर को थंब के रूट पर यानी बेस पर लगाने से हमारे शरीर में वायु का प्रकोप कम होता है और इससे जोड़ों का दर्द पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। जो भी लोग इसको समझना चाहते हैं, इस बात को समझे कि हमारे इंडेक्स फिंगर में वायु होता है और हमारे अंगूठे में अग्नि होता है। अग्नि का भोजन है वायु। जहाँ पर वायु अधिकता होती है वहाँ पे अगर आग जला दीजिए तो वहाँ पे वायु को वो खा जाती है। जहाँ पे ऑक्सीजन होती है वहीं पे आग लगता ही है। तो अगर हम इंडेक्स फिंगर को रूट ऑफ थंब पर टच करके रखते हैं, ये मुद्रा है, इसको वायु मुद्रा कहते हैं। वायु मुद्रा का अभ्यास करने से शरीर में जोड़ों का दर्द पूरी तरीके से धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति ओवर थिंकिंग से भी पीड़ित है, अधिक सोचता है तो नींद भी नहीं आएगी, तो नींद के लिए भी वायु मुद्रा अगर करते हैं तो नींद भी बहुत अच्छी आती है, जोड़ों में दर्द भी कम हो जाता है। तो ये सभी बुजुर्गों को वायु मुद्रा का अभ्यास अवश्य रूप से करना चाहिए।
1: मतलब अंगूठे के बगल वाली फिंगर और
0: अंगूठे का बेस,
1: हाँ,
0: ये वायु मुद्रा कहा जाता है। इसको अगर समझना है तो आजकल तो नेट पे आप आराम से देख सकते हैं, मैंने बता दिया है आपको, नेट पे सर्च करना है वायु मुद्रा और उसके लाभ। तो वायु मुद्रा से सबसे ज्यादा लाभ होता है कि आप ओवर थिंकिंग से बचते हैं, जोड़ों का दर्द कम होता है, आपके ज्वाइंट्स मजबूत होते हैं।
1: मतलब वो बुजुर्ग हमारे जो बैठ भी नहीं पा रहे हैं ठीक से या लेटे लेटे वो कैसे भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया।
0: मुद्राओं का अभ्यास हमारे शास्त्रों में अगर आप देखिए, महावीर जैन या फिर महात्मा बुद्ध या पुराने ऋषि मुनियों की आप फोटोज देखेंगे तो उनको देखिए हाथ की अलग अलग मुद्राएं बनी होती हैं।
1: जी जी।
0: क्योंकि अगर कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है और उसको बार बार वॉशरूम आ रहा है या बार बार जोड़ों में दर्द हो रहा है या बैठने में दिक्कत हो रही है, वो कैसे साधना करेगा। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने शरीर के विज्ञान को मुद्राओं में बांधकर उसको विस्तारित किया, जिससे वो साधना करें या जप कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं तो एक स्थान पर लंबे समय तक बैठ सके।
1: बहुत बढ़िया बात बताई।
0: इसके बारे में हम सभी को जानना चाहिए और समझना चाहिए कि बैठे बैठे भी हम, लेटे लेटे भी हम मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं।
1: शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ इस उम्र में मानसिक शांति और अच्छी नींद आना भी बहुत जरूरी है। कई बार अकेलेपन या स्वास्थ्य की चिंता से नींद नहीं आती, तो इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे?
0: देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा है हमारे हठ योग प्रतिपिका ग्रंथ है, उसमें एक सूत्र है, कहा गया है चले वाते चले चितम निश्चले निश्चलम भवेत। यानी जितना तेजी से आपके शरीर में वायु चलता है उतनी तेजी से आपके विचार चलते हैं।
1: अच्छा।
0: और वृत्ति सारूप्य मितरत्र, यानी जैसी आपकी वृत्ति होती है वैसा आपका रूप बनता चला जाता है। यानी विचारों पर नियंत्रण ही योग है। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना यानी विचारों को नियंत्रित करना, मन में जो उठ रही है तरंगे विभिन्न प्रकार की, अकेलेपन से एकांत की ओर जाना, यही योग का अभ्यास है। तो उसके लिए सिंपल तरीका है, किसी भी आयु वर्ग का जिसका ब्लड प्रेशर हाई है लो है, सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, भगवान शिव जी के द्वारा बताया गया केवली कुंभक प्राणायाम। यानी आपको कुछ नहीं करना है, स्टॉपवॉच लगा लेना है, वायु मुद्रा लगा लेना है या ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं। इससे भी आपके शरीर में वायु का नियंत्रण होता है, ज्ञान भी बढ़ता है। जहां पर ज्ञान बढ़ता है वहां पर अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश सारे डर सारा भय समाप्त हो जाता है, सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। तो अविद्या ही सारे दुखों का कारण है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ नॉलेज, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशा, जितने भी प्रकार के ब्रह्मांड में कष्ट के कारण है वो यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अविद्या को दूर करने के लिए ज्ञान मुद्रा करें और अपने श्वासों को कंट्रोल करें, स्टॉपवॉच लगाएं 20 से 30 सेकंड के 5 बार। श्वासों को रोक लेंगे तो विचार रुक जाएंगे, और श्वास को रोकने से महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि मृत्यु का एहसास जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आप उस दिन खाना मत खाइए, आपको दूसरे दिन अच्छी भूख लगेगी, आपके शरीर की अग्नि बढ़ जाती है। ठीक उसी तरीके से अगर आप 30 सेकंड सांस रोकते हैं तो उसके बाद जब आप श्वसन क्रिया करते हैं तो आपकी प्रत्येक कोशिका तक सांस पहुंचती है, इससे आपकी जीवनी शक्ति बढ़ती है, विचार नियंत्रित होते हैं, नींद अच्छी आती है, ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो होता है, सरदर्द समाप्त हो जाता है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त हो जाता है।
1: बहुत बढ़िया आचार्य जी। आजकल एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है जिसे चेयर योगा या कुर्सी पर बैठकर किया जाने वाला योग कहते हैं। हमारे बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो घुटनों की गंभीर समस्या या कमजोरी के कारण जमीन पर नहीं बैठ सकते, क्या उनके लिए कुर्सी पर बैठकर योग करना फायदेमंद हो सकता है?
0: मेरे यहाँ करीब 70 सीनियर सिटीजन एक ही इंस्टीट्यूट पर आते हैं और प्रतिदिन उनको मैं योगाभ्यास करवाता हूँ। उसमें से कम 5 से 7 लोग ऐसे हैं जो

0: अकेले चल नहीं सकते, उनको पार्किंसन है, किसी को पैरालिसिस है, भूलने की बीमारी है, घुटनों में जोड़ों में दर्द है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 80 साल से ऊपर हैं,
1: जी
0: तो उनको चलने फिरने उठने बैठने में ही दिक्कत होती, तो उनके लिए हम कुर्सी पर या सोफे पर बैठाकर ही योगाभ्यास करवाते। तो कुर्सी पर जो बैठकर योगाभ्यास करने वाले होते हैं उसमें जैसे ग्रीवा संचालन, गर्दन की शक्ति का विकास, श्वसन क्रियाओं का अभ्यास, वक्ष स्थल यानी फेफड़े की शक्ति के विकास का अभ्यास, ओम चैंटिंग जिसको उद्गीद प्राणायाम कहते हैं, या
1: जी
0: विभिन्न प्रकार के कुहनी शक्ति विकासक, कंधा शक्ति विकासक, नेत्र शक्ति विकासक, कर्ण शक्ति विकासक,

0: चेयर योगा या कुर्सी पर बैठकर किया जाने वाला योग कहते हैं। हमारे बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो घुटनों की गंभीर समस्या या कमजोरी के कारण जमीन पर नहीं बैठ सकते, क्या उनके लिए कुर्सी पर बैठकर योग करना फायदेमंद हो सकता है?
1: मेरे यहाँ करीब 70 सीनियर सिटीजन एक ही इंस्टीट्यूट पर आते हैं और प्रतिदिन उनको मैं योगाभ्यास करवाता हूँ। उसमें से कम 5 से 7 लोग ऐसे हैं जो अकेले चल नहीं सकते, उनको पार्किंसन है, किसी को पैरालिसिस है, भूलने की बीमारी है, घुटनों में जोड़ों में दर्द है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 80 साल से ऊपर हैं
0: जी।
1: तो उनको चलने फिरने उठने बैठने में ही दिक्कत होती, तो उनके लिए हम कुर्सी पर या सोफे पर बैठाकर ही योगाभ्यास करवाते। तो कुर्सी पर जो बैठकर योगाभ्यास करने वाले होते हैं उसमें जैसे ग्रीवा संचालन, गर्दन की शक्ति का विकास, श्वसन क्रियाओं का अभ्यास, वक्ष स्थल यानी फेफड़े की शक्ति के विकास का अभ्यास, ओम चैंटिंग जिसको उद्गीद प्राणायाम कहते हैं, या विभिन्न प्रकार के कुहनी शक्ति विकासक, कंधा शक्ति विकासक, नेत्र शक्ति विकासक, कर्ण शक्ति विकासक, ऐसी विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म क्रियाएं हैं, पैरों की घुटना शक्ति विकासक, जंघा शक्ति विकासक, ये सब जो योग की क्रियाएं हैं ये आप कुर्सी पे बैठकर कर सकते हैं। और मुझे लगता है इन क्रियाओं का जो निर्माण हुआ है बुजुर्ग

0: और इसको सिर्फ आप 5 दिन करके देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी अच्छी नींद आएगी और आपके बीमारियों का सारी समस्या जो है समाप्त हो जाएंगी। किसी भी आयु वर्ग के लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। आप जाइए अंधेरे कमरे में और एक कैंडल को जला लीजिए, या दिया को जला सकते हैं, घी का दिया हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कैंडल आसानी से मिल जाता है, उसको आप जलाइए। कम से कम 3 से 4 फीट दूरी हो और आपकी रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी होती है उतना आपकी स्पाइन आपकी आंखों के सामने वो आपका दिया जलना चाहिए। उसको आप डेली 5 मिनट से पहले स्टार्ट कीजिए, डेली आप सोने से पहले या सोने से 1-2 घंटे पहले आप उस दिए को देखिए। इससे होता क्या है, जिस तरीके से एक राजा को नियंत्रित करने से उसका राज्य और उसकी सारी प्रजाएं बस में हो जाती हैं, ठीक उसी तरीके से मास्टर ग्लैंड्स जो आपका आज्ञा चक्र है, आपके मस्तिष्क का जो एक राजा है, उसको नियंत्रित करने से आपके शरीर के सारे हार्मोन्स सारे ग्लैंड्स नियंत्रित हो जाते हैं। तो त्राटक का अभ्यास इसे कहते हैं, यह अच्छा। सत्कर्म की एक क्रिया है। 3,50,000 नाड़ियां होती हैं, 72,000 जिसमें से प्रचलित हैं, और त्राटक का अभ्यास एक इकलौता अभ्यास है जो सर्व रोग नाशक दिव्य शक्ति प्रदायक दिव्य दृष्टि प्रदायक है। यानी अगर आपको बुढ़ापे में दिखाई नहीं देता है अच्छा। तो उसके लिए एक तरह से लेजर ऑपरेशन की तरह कार्य करता है और आपकी रेटिना के थ्रू लाइट आपकी आंखों पर जाएगा, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगा। जो विज्ञान को समझते हैं वो इस बात को आसानी से समझ सकते हैं, हाइपोथैलेमस जैसे ही एक्टिवेट होगा पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होगा और जितने भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी जिनके हार्मोनल इश्यूज हैं और एड्रिनल ग्लैंड के जितने भी हार्मोन हैं, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के जितने भी हार्मोन हैं, जितने भी बॉडी के लीवर के हार्मोन हैं, सारी स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को कंट्रोल कर लेता है। और त्राटक का अभ्यास एक इकलौता अभ्यास है जो आपकी सारी नाड़ियों का शोधन करता है, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा के माध्यम से, ताप ऊर्जा के माध्यम से, एकाग्रता के माध्यम से आपकी सारी नस नाड़ियां एक्टिवेट होने लगती हैं और आपके शरीर के सारे अंग सक्रिय हो जाते हैं। आपके ब्रेन पर ये सीधा अटैक करता है और आपके न्यूरॉन्स को एक्टिव करता है। यानी अगर आपको भूलने की बीमारी है या सो नहीं पा रहे हैं, बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो त्राटक का अभ्यास आप सिर्फ 5 से 10 दिन करके देखिए। यदि जोड़ों में दर्द बहुत अधिक है तो उनके लिए भी मैं एक समाधान बता रहा हूँ, हार्ट फुट बाथ थेरेपी। यानी जब आप त्राटक का अभ्यास करें तो 1 बाल्टी पानी गर्म कर लें और उसमें आप फिटकरी डाल लें, फिटकरी डालने के बाद उसमें अपने पैर को घुटने तक डुबो के रखें। इससे एक तो आपका पूरा पैर साफ हो जाएगा और उसके बाद आपके शरीर में जितना भी गंदा ब्लड है उसका फ्लो होने लगेगा, साफ हो जाएगा। माइग्रेन की समस्या है, उच्च रक्तचाप है, शुगर है, कोई भी बीमारी है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होने लगेगा। विशेष रूप से पैरों का दर्द, पिंडलियों का दर्द बुढ़ापे में बहुत ज्यादा होता है, रात को बहुत लोग बहुत परेशान होते हैं, नसों में अकड़न होने लगती है, नींद नहीं आती है, तो इससे आपका जितना भी गंदा ब्लड होता है माइग्रेन वगैरह के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। आंखों में लालीपन आ गया है, आंखों में ब्लड प्रेशर का प्रभाव पड़ रहा है, तो आप हार्ट फुट बाथ थेरेपी करते हुए आप दिया जला लीजिए, उसको ध्यान से देखिए। ये थेरेपी अगर आप करते हैं, आप 15 दिन करिए, आप विश्वास मानिए बुजुर्गों के लिए वरदान है, विद्यार्थियों के लिए वरदान है, डॉक्टर और वकील के लिए वरदान है, चिकित्सकों के लिए वरदान है। इस अभ्यास को करिए, आपके जीवन में निश्चित रूप से क्रांति आ जाएगी।
1: बहुत बढ़िया बात बताई आचार्य जी आपने। सही आहार और सही योग का संतुलन ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। चलते चलते एक आखिरी सवाल, हमारे यहाँ मौसम बहुत तेजी से बदलता है, कभी अत्यधिक गर्मी, कभी कड़ाके की ठंड, तो कभी बरसात। क्या बदलते मौसम के हिसाब से बुजुर्गों को अपने योग के रूटीन में कुछ बदलाव करना चाहिए?
0: ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए मैं बार बार कहीं पर भी जब वार्ता होती है तो मैं इस बात को कहता हूँ, योग की परंपरा जो है गुरु शिष्य परंपरा है जी। और बिना एक कुशल योग्य गुरु के, शिक्षक के, आपको योग की शुरुआत तो नहीं करनी चाहिए। कम से कम 5 दिन, 1 हफ्ते या 15 दिन आप एक अच्छे योगाचार्य से योग का मार्गदर्शन लीजिए। प्रत्येक मौसम में, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक उम्र में, प्रत्येक स्थान पर योग का रूटीन बदल जाता है। जैसे बरसात के मौसम में हमारी अग्नि सबसे मंद होती है और उस समय देखिए जितने भी उपवास होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं जी। गर्मी के दिनों में हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होता है और आपको ब्लोटिंग वगैरह ज्यादा होती है, तो उसमें आपको उस समय उसके हिसाब से योगाभ्यास करना चाहिए। आयुर्वेद ग्रंथों में कहा गया है कि आपकी जितनी ऊर्जा है शरीर की उसके 1/4 ऊर्जा का ही योगाभ्यास या व्यायाम करना चाहिए। बहुत लोग YouTube TV देख के और जो अप्रशिक्षित योग शिक्षक हैं उनके मार्गदर्शन में बहुत अधिक एक्सरसाइज या व्यायाम कर लेते हैं। आजकल जिम का प्रचलन है, दौड़ने का प्रचलन है, दौड़ने लगते हैं या जिमिंग करने लगते हैं, कार्डियो करने लगते हैं, तो हार्ट फेल हो जाता है।

0: इस समस्या से बचने के लिए हमें आयुर्वेद ग्रंथों को समझना चाहिए। अपने शरीर के आधे या 1/4 बल से अधिक कभी भी व्यायाम नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे हृदय पर अधिक दबाव पड़ता है और हृदय को कष्ट होता है, उससे हार्ट फेल होने का भी खतरा रहता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ठंडी का मौसम में हम अधिक व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन उस समय ठंडी के मौसम में ब्लड प्रेशर सबसे अधिक होता है क्योंकि मांसपेशियां सिकुड़ी हुई होती हैं और रक्त का प्रवाह थोड़ा स्लो हो जाता है। लेकिन उस समय आहार में कुछ भी आप खाइए, अग्नि आपकी बहुत अधिक होती है, कुछ भी खाना पच जाता है। इसलिए ठंडी के दिनों में आप देखेंगे कोई भी उपवास हमारे ऋषि मुनियों ने नहीं बनाया है। आप देखेंगे दीपावली के बाद से आप मीठा खाना शुरू करते हैं और मकर संक्रांति तक पूरा खाने का मौसम है, लेकिन आप देखेंगे बरसात के मौसम में सबसे ज्यादा उपवास होता है, क्योंकि बरसात के मौसम में सबसे कम भोजन करना चाहिए।
1: जी, तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और फादर्स डे के इस पावन अवसर पर हमने जाना कि सेहत से बढ़कर कोई उपहार नहीं है। आज जितने भी बच्चे अपने पिता के साथ बैठकर यह कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, इस फादर्स डे पर आप अपने पापा को कोई महंगे तोहफे देने की बजाय उन्हें अच्छी सेहत का उपहार दीजिए। आज ही उनके साथ बैठिए, आचार्य जी द्वारा बताई हुई छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं और अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिए, त्राटक उनके साथ बैठकर कीजिए, ताकि उनकी उम्र का यह पड़ाव बिल्कुल दर्द रहित और खुशहाल रहे। और हाँ, आज के इस विशेष अंक पर आपकी क्या राय है, हमें पत्र लिखकर जरूर बताइएगा। हमारा पता है कार्यक्रम अक्षयवट, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ 226001। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमारे ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है pkldlko@gmail.com। आचार्य जी, आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के अंक को यहीं विराम देने के लिए अपनी दोस्त डॉक्टर अलका चौधरी को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। एक बार फिर योग दिवस और फादर्स डे की शुभकामनाएं। नमस्कार।
2: अक्षयवट, परंपराओं, संस्कृति, यादों, अनुभवों और संवेदनाओं का संगम।
3: अक्षयवट कार्यक्रम में अभी आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सुन रहे थे योग से पाएं दर्द रहित एवं उत्तम वृद्धावस्था विषय पर आचार्य प्रशांत शुक्ला योग प्रशिक्षक से डॉक्टर अलका चौधरी की भेंट वार्ता। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। अब फौजी भाई सुने अपना कार्यक्रम जवानों के लिए।

सरहदों पर जो खड़े हैं वही हमारी शान है। सरहदों पर जो खड़े हैं वही हमारी शान है। उनकी हिम्मत से ही महफूज हमारे अरमान है। नमन है उन वीर जवानों को जिनके दम पर सुरक्षित अपना हिंदुस्तान है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को जय हिंद। फौजी भाइयों, अब आप अपने इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश के फिल्मी गाने भी सुन सकते हैं, जिसकी फरमाइश आप हमें ईमेल आईडी आपके पत्र आपके मेल @gmail.com पर भेज सकते हैं। आप हमें अपनी फरमाइश खत के द्वारा भी भेज सकते हैं, जिसका पता हम कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफर आपकी फरमाइश के गीतों के साथ। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं शंकर महादेवन की आवाज़ में लक्ष्य फिल्म का गीत। इस गाने की तर्ज बनाई है शंकर एहसान लॉय ने। इस गाने की पसंद की है मालियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन। ग्राम व पोस्ट ललहुआ लखीमपुर खीरी से विजय पाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव।

फौजी भाइयों, जवानों के लिए कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए अरजीत सिंह, अरहान हुसैन, रोहन वैद्य, हर्षवर्धन गोरे, राशि सनाना और अहाना गोयल की आवाज़ों में गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल फिल्म का गाना। इस गीत को लिखा है कौसर मुनीर ने और संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने। पसंद आप सबकी। ग्राम पहाड़ीपुर रायबरेली से रामराज, राजू, भानु, रामशंकर, पत्रकार बहाई वाले, रक्षा मौर्या, राम सागर साहू, रसूलपुर वाले रामचरण प्रजापति, जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। तो सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल फिल्म से।

फौजी भाइयों, अरिजीत सिंह को अभी आप सुन रहे थे फिल्म 83 में। पसंद आप सबकी थी सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी, आराध्या साहू। फौजी भाइयों, कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्रेया घोषाल और सुखविंदर सिंह की मिलीजुली आवाजों में संजू फिल्म का गीत। गीतकार हैं शेखर अस्तित्व, संगीतकार विक्रम मोन्ट्रोस। पसंद आप सबकी मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ और बीकानेर राजस्थान से रानी और बिट्टू झाओ। तो आप सबको ये गीत सुनवाऊं उससे पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश का पत्र भेजने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम जवानों के लिए, आकाशवाणी लखनऊ, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ, पिन कोड 226001। फौजी भाइयों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारा पता नोट कर लिया होगा। तो लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं संजू फिल्म का ये गीत।

फौजी भाइयों, अभी आप श्रेया घोषाल और सुखविंदर सिंह की मिलीजुली आवाज़ों में ये गीत सुन रहे थे संजू फिल्म से। फौजी भाइयों, आज के इस छोटे से सफ़र में इतना ही। फिर मिलेंगे नई उम्मीदों और नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हौसला बनाए रखिए, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। अब आज का जवानों के लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम सुन रहे सभी फौजी भाइयों को जय हिंद।

अभी फौजी भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम जवानों के लिए। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलीबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के

0: मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
3: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
4: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा राम

देव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर

0: कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
0: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपये से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
1: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17,00,000 बच्चों से लगभग 15,50,000 बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित तो उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10,00,000 रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ

0: हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामबुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष MB कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, विज्ञान और किसान। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: विज्ञान और किसान, आज इस कार्यक्रम में फलदार पौधों की उन्नत प्रजातियां, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर कंचन कुमार श्रीवास्तव और आपसे बातचीत की है डॉक्टर सुशील कुमार राय ने।
5: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां नए फलदार पौध लगाने की योजना है इस बार, तो इसकी उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं और रोपण तैयारी में क्या कुछ खास है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रामानखेड़ा लखनऊ से प्रधान वैज्ञानिक फसल उत्पादन डॉक्टर कंचन कुमार श्रीवास्तव साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहाँ नए फलदार पौध लगाने हैं तो प्रजातियों का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं जिसका चुनाव करें किसान भाई बहन।
6: किसान भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। फलदार वृक्षों की जो बागवानी ही करना चाहते हैं उसका बड़ा उचित समय चल रहा है। तो जैसा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में सभी फलों की बागवानी होती है, जिसमें आम है, अमरूद है, नींबू है, जामुन है, कटहल है, करौंदा है, बेर है, बेल है, लीची है, आंवला है, इनकी बागवानी यहाँ होती है और इस समय पौध लगाने और तैयारी करने का बड़ा उचित समय चल रहा है।
5: डॉक्टर साहब, केला की उन्नत बागवानी भी काफी लोकप्रिय हो रही है और कहीं कहीं पपीता भी।
6: जी हाँ, इस समय जैसे आप जानते हैं कि केला की बागवानी या अमरूद की बागवानी या किसी भी फल की बागवानी के लिए तो सबसे बड़ी चीज ये है कि पहले हमें तैयारी करना और इन पौधों का, इन उच्च किस्मों का चयन है।
5: पहले प्रजातियों की बात शुरू करें तो आम की कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं जिनकी

0: बागवानी हो रही है, इन किस्मों को लगा के हम ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। जी
1: डॉक्टर साहब, आपने नींबू वर्गीय बागवानी का भी जिक्र किया, तो इसमें
0: नींबू में ज़्यादातर इस समय हम लोग जो है कागजी नींबू की, हमारे ज़्यादा पैसा मिलता है किसानों को, इसलिए कागजी नींबू की प्रजातियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, उनकी हम बागवानी कहते हैं, जिसमें कागजी नींबू एक वैरायटी है और गंगानगर की एक किस्म है, श्री गंगानगर नींबू वन के नाम से
1: और
0: जानी
1: पंत
0: जाती है।
1: लेमन भी है।
0: पंत लेमन की भी अच्छी किस्म है, लेकिन पंत लेमन थोड़ा सा उसके फल बड़े होते हैं इसलिए बाज़ार में उसकी डिमांड कम रहती है, हालांकि वो घर के उपयोग के लिए बड़ी अच्छी किस्म मानी जाती है।
1: और इसके अलावा जैसे आंवला है और कटहल है, जामुन की बात आपने की, इनकी
0: जी
1: कौन कौन सी खास प्रजातियां?
0: तो जामुन में जो है J37 और J42, ये दो किस्में हमारे संस्थान ने विकसित की हैं। इसमें एक तो फल का साइज बड़ा होता है, और एक प्रजाति J37 इसमें जो है बीज बहुत छोटा होता है।
1: यानी जामवंत की बात कर रहे
0: हाँ,
1: हैं?
0: जामुन की बात करते हैं, जी हाँ, तो CSS जामुन के नाम से जिसको जाना जाता है, और एक दूसरी गोमा प्रियंका नाम से ये प्रजाति है, इसकी भी जो है अच्छी बागवानी की संभावना यहाँ हमारे यहाँ है।
1: डॉक्टर साहब, क्या कटहल की भी व्यावसायिक बागवानी की संभावना है?
0: जी हाँ, कटहल तो जैसा आप जानते हैं साल भर कटहल आजकल सब्जी के रूप में लोग उपयोग करते हैं, तो इसकी कई प्रजातियां हमारे यहाँ हैं और बाजार में उपलब्ध हैं। जैसे एक सिद्धू प्रजाति है जिसको कोए के लिए ही उगाई जाती है, बंगलोर की वैरायटी है और पिंक कलर का इसका फल होता है, इसको खाने में अच्छा मानते हैं। और दूसरी अन्य जो लोकल किस्में हैं जिसके फल करीब आधा किलो से लेकर 1 किलो तक होते हैं, उसकी अच्छी बाजार में डिमांड रहती है, उसको ज़्यादा किसान उगा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, पपीता की बात करें तो?
0: पपीता में बहुत सी किस्में पहले थीं, लेकिन जैसे पूसा नन्हा, पूसा ड्वार्फ है, लेकिन अब ये सब किस्में, इनके पौधे कम मिलते हैं। जैसे पिंक लेडी जो पपीता है जिसको रेड लेडी के नाम से जाना जाता है, इसकी अच्छी संभावना है, इसके फल पौध हमारे यहाँ उपलब्ध रहते हैं।
1: और सारे पौधों में फलत भी होती है?
0: सारे पौधों में फलत रहती है। बेल की कुछ किस्में हैं जिसको हम बात कर लें, तो जैसे CSS बेल 1 बेल 2 के नाम से जिसको हम जानते हैं, अब फल इसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता है, फल करीब 1 किलो से लेकर के 1.5 किलो तक होता है, और इसमें अच्छी जो है फलत होती है, इसकी भी जो अच्छी संभावना है।
1: और बेर में?
0: बेर में जैसे आप जानते हैं एप्पल बेर आजकल बाजार में आई हुई है, इसके फल बड़े होते हैं और काफ़ी इसकी मांग रहती है। और दूसरी जो पुरानी किस्में थी जैसे गोला है, नरेंद्र बेर के नाम से भी, नरेंद्र बेर 1 और 2 के नाम से ये भी अच्छी किस्म है। कैथली और पेउंदी आप जानते हैं पहले किस्में अच्छी थी, इनकी आज भी डिमांड अच्छी है। तो एप्पल बेर जिस समय ऐसा चल रहा है इसकी ज़्यादा डिमांड इसमें है।
1: डॉक्टर साहब, केला के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे?
0: जी हाँ, केला तो आप जानते हैं कि ज़्यादातर केले की जो प्रजातियां हैं उसमें G9 जिसको हम कहते हैं वो ज़्यादा फेमस
1: टिशू
0: प्रजाति
1: कल्चर
0: है।
1: की?
0: जी, टिशू कल्चर से विकसित की जाती है ये, और इसमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है, फल का साइज़ बड़ा होता है, और इसके अलावा जो है रसथली है, रोबस्टा है, ये दो अन्य किस्में हैं, ये भी हमारे यहाँ बड़ी फेमस हैं। इसकी भी बागवानी हमारे उत्तर प्रदेश में की जा रही है, और फल बड़े होते हैं, फर्मनेस होता है और मीठा होता है, इसलिए इसकी ज़्यादा संभावना रहती है।
1: डॉक्टर साहब, मानसून करीब है, तो जहां पहले से योजना और रेखांकन हो चुका है तो ठीक है, लेकिन जहां हुआ नहीं और पौधरोपण भी करना है, तो रोपण तैयारी में क्या कुछ करें बागवान भाई बहन?
0: जी हाँ, जैसा हम बताते हैं कि अगर हमें इस साल बागवानी करनी है तो अप्रैल से ही लेके हमें बागवानी की शुरुआत करनी है। अगर किसान भाई लेट हो गए हैं तो इस समय भी जो है तत्काल गड्ढा खोद दें, और गड्ढा खोदने के बाद आप देखें कि ऊपर वाली मिट्टी अलग रखें, नीचे वाली मिट्टी अलग रखें। ऊपर वाली मिट्टी में कम से कम 10 से 15 किलो या 2 से 3 टोकरी गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट और उसमें नीम की खली और जो है हड्डी का चूरा, ये मिला करके उसको 1 महीने बाद या 15 दिन बाद अभी भर दें, समय कम है। और उसके बाद जैसे बरसात प्रारंभ होती है आप जो है पौधे लेकर के उसको लगाने का कार्य कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जिन प्रजातियों का आपने जिक्र किया, तो उनकी पौध अच्छी कहाँ से मिलेगी?
0: किसानों को इन पौधों के लिए ऐसे विश्वसनीय नर्सरी या गवर्नमेंट की जो नर्सरी हैं उनसे ले सकते हैं, या CISS केंद्रीय उपोष बागवानी संस्थान जो है जहां अभी इस समय पौधों की बुकिंग चल रही है वो
1: पोर्टल
0: CISS,
1: पर?
0: हाँ CISS बुकिंग करके अब आप जो है उस पर अपने डिमांड को आप अपलोड कर सकते हैं, और आपको आपके मेल पे या मोबाइल के द्वारा आपको सूचना दी जाएगी और एक समय दिया जाएगा 15 दिन का, जिस समय आप जाके वहाँ पौधे ले सकते हैं, क्योंकि विश्वसनीय नर्सरी से पौधे लेना ही जो है श्रेयस्कर होता है।
1: और जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से प्रमाणित नर्सरियां हैं, वहां से भी?
0: हाँ जी हाँ, कुछ राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो है कुछ नर्सरियों को इन्होंने अधिकृत किया हुआ है इन पौधों को बनाने के लिए, तो वहाँ से हम पौधे ले सकते हैं,
1: उद्यान
0: लेकिन
1: विभाग से ले सकते?
0: उद्यान विभाग से ले सकते हैं। और ध्यान दें कि पौधे में किसी तरह की कीट या बीमारी का प्रकोप पहले से ना हो। आजकल अमरूद के पौधे में देखा जा रहा है कि निमेटोड की बड़ी संभावना रहती है, तो एक पौधे लेकर उसको भिगो लें, अगर देखें उसमें गांठ है तो इस तरह के पौधे को किसान को नहीं लेना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आजकल बागवानी में निमेटोड की समस्या, सूत्र कृमि की समस्या काफी हो रही है, तो इसके प्रबंधन के लिए अभी से कोई उपाय?
0: सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जिस नर्सरी से हम पौधे खरीद रहे हैं उस नर्सरी से पौधे खरीदते समय देख लें किस तरह कोई इन्फेक्शन ना हो, और एक पौधे को भिगो लें, अगर उसमें गांठ है तो इस तरह की नर्सरी से पौधे हमें नहीं लेना चाहिए, और नहीं तो अगर हम ले लेते हैं तो उसके बाद हम जो है उसमें रासायनिक का

0: इस्तेमाल करके दूर कर सकते हैं बीमारी को।
1: डॉक्टर साहब, रोपण तैयारी में और क्या क्या बारीकी है?
0: रोपण तैयारी में एक तो पौधे को हमें खरीदने का होता है कि अच्छी विश्वसनीय नर्सरी से पौधे लें, और मई के महीने

0: हम गड्ढे खुदाई कर लें, और उसके बाद भराई का होता है कि भाई कम से कम 2 से 3 टोकरी गोबर की खाद, उसमें 250 से 300 ग्राम जैसे हमने बताया कि वो सब डालें, और उसके बाद जो है ट्राइकोडर्मा का भी हम जो है 5 से 10 ग्राम ले करके और एक उसी गोबर की खाद में मिला कर उसको हम भर देते हैं, तो इससे किस तरह के अन्य फंगस के कवक जनित बीमारियों के आने की संभावना कम हो जाती है, और इस तरह से हम जो है अगर लगाएंगे तो हमारा पौधरोपण और हमारी बागवानी सफल रहेगी।
1: डॉक्टर साहब, रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय क्या होगा?
0: वैसे तो हम लोग ज़्यादातर जुलाई अगस्त में हम कहते हैं कि जैसे मानसून प्रारंभ हो जाए उसके बाद हमें रोपण करनी चाहिए, लेकिन अगर किसान भाई कई बार देर हो जाता है तो उसमें फरवरी में भी वो जो है रोपण कर सकते हैं।
1: लेकिन पौध किसी नर्सरी से ले आएंगे और रोपाई तक कौन कौन सी खास बातें हैं जिसको ध्यान में रखें?
0: नर्सरी से एक तो पौधे खरीदना, दूसरा चीज़ यह है कि जब हम पौधे लें उसको ला के लगाएं तो देखें जितनी गहराई में पौधा नर्सरी के अंदर था उतनी गहराई में ही पौधे को हमें लगाना चाहिए। ज़्यादा गहरा लगाने से उसमें इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, उसमें बीमारियां बढ़ जाती हैं। लगाने के बाद आप पौधे को तत्काल करीब 50 से 60 सेंटीमीटर उसको हेडबैक कर दें या काट दें, जिससे कि चारों तरफ से उसमें शाखाएँ बढ़ने लगें।
1: डॉक्टर साहब, बागवान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे, फलदार

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज के साथ साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत का हमारा कार्यक्रम लोक माधुरी। आज इस कार्यक्रम में आनंद लीजिए पूजा द्विवेदी के गाए अवधि लोक गीतों का। कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं पूजा द्विवेदी के स्वर में दादरा।

अभी आप पूजा द्विवेदी के स्वर में दादरा सुन रहे थे। लोक माधुरी कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे हैं पूजा द्विवेदी के गाए अवधी लोकगीतों का। लीजिए अब सुनिए नकटा।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी लखनऊ है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। आज के इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं धड़कन फिल्म के गीत से, जिसे लिखा है समीर ने, तर्ज बनाई है नदीम श्रवण ने, और ये गीत आप सुनेंगे अलका याग्निक की आवाज़ में।

अभी आपने आनंद राज आनंद और श्वेता पंडित की आवाज़ों में वेलकम फिल्म का गीत सुना, जिसे अनजान सागरी ने लिखा था और धुन बनाई थी आनंद राज आनंद ने। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए दाग द फायर फिल्म का ये गीत कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। समीर के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत।

कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल के गाए दाग द फायर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है।

संस्कृत कार्यक्रम में आज आपने सुना डॉक्टर वंदना गुप्ता की वार्ता अष्टांग योगा स्वास्थ्यम च। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज इस कार्यक्रम का हमारा विषय है योग और प्राणायाम की हमारे जीवन में भूमिका। आज के हमारे विशेषज्ञ हैं श्री निकेत सिंह, सहायक प्राध्यापक योग राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय रीजनल सेंटर लखनऊ। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुभाष खन्ना।

0: अब सुनिए हमारा आज का ये कार्यक्रम। हेलो डॉक्टर।
1: दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। और दोस्तों जैसा आपको पता ही है कि हम इस कार्यक्रम में किसी ऐसे विशेषज्ञ को बुलाते हैं, किसी ऐसे विधा विशेषज्ञ को बुलाते हैं जो अपनी विधा से संबंधित वो ढेर सारी बातें हमें बताते हैं, हम उनसे विमर्श करते हैं, हमारी जो ढेरों भ्रांतियां होती हैं उनका भी हम निराकरण करते हैं और आपके जो ढेरों सवाल हैं, आपके जो संदेश हैं वो भी उनके सम्मुख रखते हैं और उनसे उस पर समाधान लेते हैं, उस पर उनके विचार जानते हैं और आप तक वो बातें हम पहुंचाते भी हैं। तो आज का जो विषय है वो है योग और प्राणायाम की हमारे जीवन में भूमिका। हम बहुत बार योग और प्राणायाम के संदर्भ में सुनते रहते हैं कि भाई योग और प्राणायाम की हमारे जीवन में भूमिका है, पर वो क्या है, किस हद तक हमें प्रभावित करती है, ये ढेर सारी बातें आज हम करेंगे। और दोस्तों आपको बता दूं, आज विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं निकेश सिंह जी। आप सहायक प्राध्यापक हैं राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में। निकेश जी आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद।
1: हम बहुत बार आजकल सुनते हैं, बहुत सारी चर्चाएं भी होती हैं कि योग और प्राणायाम से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। वास्तव में क्या है योग, कैसे ये हमें प्रभावित करता है?
2: देखिए योग जो है वो संपूर्ण जीवन साधना का एक मार्ग है। अब जीवन साधना है तो जीवन से जुड़ा हुआ जो भी पक्ष आता है वो सारा कुछ उसमें आता है। वैसे तो हम सामान्य रूप से जब समझते हैं योग के विषय में बात करते हैं तो योग को हम एक छोटे स्वरूप में हम सिर्फ स्वास्थ्य से उसको जोड़ते हैं, जबकि योग संपूर्ण जीवन के लिए जीवन साधना है। अब जीवन साधना है तो जीवन से जुड़ा हुआ हर एक पक्ष, कोई भी चीज है वो सब उसी से जुड़ा हुआ है। इसमें हमारा शारीरिक पक्ष है, मानसिक पक्ष है, भावनात्मक पक्ष है, आध्यात्मिक पक्ष है, ये सारे पक्ष योग से जुड़े हुए हैं। तो योग संपूर्णता का नाम है, योग मतलब संपूर्णता। और इसके अर्थ की बात करें तो शास्त्रीय बात करें तो योग युज धातु से बना हुआ है। युज का अर्थ है जोड़ना, जोड़ना आपस में मिलाना। सामान्य रूप से जैसे हम कहते हैं ना कि जोड़ना या ऐड करना, वन प्लस वन, तो वो ऐड करना ही योग के रूप में है। तो ये तो हम सामान्य भाषा में योग को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन जोड़ना किसे, ये प्रश्न आता है ना कि किसे जोड़ना है।
1: जी,
2: तो जोड़ना यही है कि अब आज हमारा जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, ये क्या है, बिखरा हुआ है। हमारा शरीर, शरीर का स्वास्थ्य, हमारे भावनाएं, हमारे विचार, ये सब अलग थलग पड़े हुए हैं। हमें क्या करना है, इन्हीं को सबको एकजुट करना है, मिलाना है। और जब यही मिलाना है तो इसी को ही योग कहते हैं। और महर्षि पतंजलि कहते हैं योगा चित्त वृत्तिश्च निरोधा।
1: जी,
2: चित्त की वृत्तियों का निरोध नियमन ही क्या है, वो योग है। तो शास्त्रीय भाषा में

0: का स्वास्थ्य, हमारे भावनाएं, हमारे विचार, ये सब अलग थलग पड़े हुए हैं। हमें क्या करना है, इन्हीं को सबको एकजुट करना है, मिलाना है, और जब यही मिलाना है तो इसी को ही योग कहते हैं। और महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगा चित्त वृत्तिश्च निरोधा,
1: जी जी,
0: चित्त की वृत्तियों का निरोध नियमन ही क्या है, वो योग है। तो शास्त्रीय भाषा में हम जाएंगे, क्योंकि हम हमारे साथ में बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं जो सामान्य रूप से योग के भाव को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं।
1: जी जी,
0: तो योग का जो हम दो पक्ष होते हैं, योग के दो स्वरूप हैं, एक हमारा है अंतरंग योग, एक होता है बहिरंग योग। आज आप जो योग का स्वरूप देख रहे हैं समाज में,
1: जी जी,
0: वो बहिरंग योग अधिक देख रहे हैं, जिसमें लोग आसन, प्राणायाम या बंध मुद्राएं आदि ये सब करते हैं अभ्यास, ये बहिरंग योग में आते हैं। जैसे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की बात कही, अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये आठ अंग हैं। अब इनमें क्या है, चार अंतरंग योग है, चार बहिरंग में आते हैं। तो हम क्रम से बात करें, यम नियम की और आसन प्राणायाम की बात करें, तो ये हमारे सब आ जाते हैं बहिरंग में।
1: जी जी जी,
0: प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब अंतरंग योग में आते हैं।
1: अंतरंग योग में अगर हम बात करें, हमारे श्रोताओं को अगर सामान्य शब्दों में आप बताना चाहें क्या है
0: अंतरंग योग में, देखिए ये हम जो योग अभ्यास में, चूंकि हम अधिकतर अपने जीवन में स्थूल रूप से ज्यादा सोचते हैं, भौतिक जीवन के बारे में ज्यादा विचार करते हैं, भौतिक जीवन में हमारा शरीर आता है, हमारे विचार आते हैं। हम अंतरंग की बात करें तो इसमें हमारी भावनाएं आती हैं, हमारी आध्यात्मिक जीवन जो है वो अंतरंग जीवन का एक हिस्सा है।
1: जी जी,
0: जिसमें हम भावनाएं हैं बहुत सारी, तो वो सब अंतरंग जीवन से संबंधित या जुड़ाव से उसमें आता है। अब इसमें क्या है, प्रत्याहार,
1: जी,
0: तो जब हम आसन प्राणायाम करते हैं तो आसन से हमारा शरीर स्थिर होता है। कहा गया आसन के विषय में बोला गया है, स्थिरम सुखम आसनम, कि वह स्थिति जिसमें हम स्थिर हों और हमें सुख प्रतीत हो रहा हो, तो वो आसन कहलाता है। आसनों से हमने क्या किया, अपने एक एक मांसपेशियों को व्यवस्थित किया उसमें। अब क्या हुआ, जैसे एक पात्र होता ना, तो पात्र को साफ करते हैं, उसकी धुलाई करते हैं, उसके बाद ही कुछ उसमें डाल सकते हैं। तो ऐसे ही प्राणायाम, जो प्राण जो ले रहे हैं
1: जी जी,
0: उसके लिए वो तैयारी थी आसन की, आसन के रूप में, व्यायाम के रूप में। अब बात आती है प्राणायाम की, तो उसमें हम प्राणों को हम अंदर ले जा रहे हैं, प्राण हमारे शरीर के भीतर जा रहे हैं।
1: जी जी,
0: अब प्राणों के लिए हमें प्राणायाम, तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योगर गति विच्छेदा, सामान्य रूप से हम प्राण तो लेते हैं लेकिन योगिक व्यवस्था के हिसाब से हमें श्वास और प्रश्वास, श्वास लेने और छोड़ने का क्रम जो है योगानुकूल हो, व्यवस्थित हो, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, ये हमारे प्राणायाम की स्थिति है। ये तो हम बहिरंग की योग की बात कर रहे थे। अब इसके बाद हमारी ये तैयारी थी, अब हम जाते हैं प्रत्याहार की तरफ। तो प्रत्याहार क्या करना, प्रत्याहार जो इंद्रियों के जो विषय हमारे हैं, अलग अलग विषय, पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया, ये सब क्या है, अपने विषय की ओर बहिरंग मुख में है, बाहर की तरफ है। हमें क्या करना है, इनको अंदर की तरफ उन्मुख करना है, ये हमारा है प्रत्याहार। अब प्रत्याहार करते हैं, इसके बाद धारणा का पक्ष बनता है।
1: जी जी,
0: धारणा की तरफ बढ़ते हैं। जब धारणा एक हमारी निश्चित हो जाती है, तब हम उस ध्यान की अवस्था पे पहुंचते हैं, धीयान। ध्यान को हम शब्दों में, अपने शब्दों में बात करें, धीयान, जैसे वायु पे चलने वाले यान को वायुयान कहते हैं, जल पर जलयान, अच्छा धी अर्थात बुद्धि, और बुद्धि के माध्यम से उस यान पे चल रहे हैं, वह क्या है, ध्यान, धारणा, ध्यान, उसके बाद समाधि। समाधि हमारे जीवन का, हमारे संपूर्ण जीवन का या मनुष्य जीवन का अंतिम पड़ाव है, अंतिम लक्ष्य, जिसे हम कैवल्य के लिए मार्ग बताते, कैवल्य की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे अंतरंग योग की हमने बात बताई आपको।
1: आपने अंतरंग योग की बात बताई, बहिरंग योग की बात बताई, कैसे निर्धारण हो कि किसके लिए क्या आवश्यक है और कितना आवश्यक है?
0: क्योंकि हम एकांगी जीवन, हम आज जो भी जीवन जी रहे हैं,
1: जी,
0: तो हमने बताया कि हमारे जीवन के दो पक्ष हैं, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक।
1: भौतिक जी, जी,
0: आध्यात्मिक और भौतिक, जिसको आध्यात्मिक जीवन को हम गायत्री से जोड़ सकते हैं और जो भौतिक जीवन है उसको सावित्री से जोड़ सकते हैं। सावित्री गायत्री दो शक्तियां हैं, हम इसी से जुड़े हुए हैं। आज हम लोगों ने क्या, एकांगी भाव से हम ऐसे जुड़े हैं कि हमको सिर्फ भौतिक जीवन के विषय में ही हम देख पा रहे हैं, अपने आपको भौतिक रूप से ही समझ पा रहे हैं।
1: जी, जी।
0: तो हम लोग क्या करते हैं, हम इस शरीर को ही संपूर्ण मानते हैं, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष दिखता है, जो कि हमारी विचारधारा, हमारा जो सोचना है उसमें बहुत सारा क्या है, हमारे मन के अंदर ये अंतरंग वाली बातें ना करके केवल स्थूल जगत से जुड़ी हुई जो सामने दिखती है, प्रत्यक्ष रूप से दिखती हैं, उस पर हम कर सोचते हैं। तो इसलिए हम लोगों को लगता है कि हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है या हम मन से स्वस्थ हैं,

0: बस हम यहीं तक हमारा कार्य हो गया, जबकि हमारा क्या है पक्ष, हमको संपूर्ण पक्षों को लेकर चलना है। जैसे कि पहले के समय में WHO ने स्वास्थ्य की भी बात की, तो पहले शारीरिक और मानसिक स्थिति तक की बात करते थे कि जो व्यक्ति शरीर से और मन से स्वस्थ है तो वो स्वस्थ है। फिर इसके बाद में कई डायमेंशंस उसमें आए, उसमें आया उन्होंने जोड़ा शारीरिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक रूप से जो व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है उसको संपूर्ण स्वास्थ्य की संज्ञा दी उन्होंने। तो इसीलिए हमारे लिए दोनों पक्ष जरूरी है, अंतरंग भी और बहिरंग भी, हम दोनों पर काम करें। हमको योग करना है तो हमारा लक्ष्य बड़ा होना चाहिए
1: जी।
0: हमारा लक्ष्य केवल इस शरीर भर के लिए या इस मन भर के लिए विचारों भर के लिए नहीं होना चाहिए।
1: मान लीजिए कि हम शरीर के लिए योग कर रहे हैं जी, तो वो कौन कौन से आसन हैं जो एक सामान्य व्यक्ति को करने चाहिए या वो करके वो स्वस्थ रह सकता है
0: जी? वैसे योग के लिए हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके का अभ्यास होता है
1: जी।
0: किसी एक व्यक्ति को ये नहीं कह सकते हैं कि हम ये अभ्यास करें या ये अभ्यास करें। ये तो देखिए योग का अच्छे से अध्ययन करने के बाद में ही हम समझ पाएंगे कि हमारे लिए उपयोगी कौन
1: कौन अभ्यास है
0: जी। अब इसमें कई सारे टर्म्स आते हैं, आयुर्वेद के अनुसार भी बहुत सारी चीजें हैं कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग आसन प्राणायाम आदि की व्यवस्था है
1: जी।
0: इसको हम सामान्य रूप से अगर जो देखना चाहते समझना चाहते हैं तो उसे हमें अपने स्वभाव को अपने गुणों को अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सब चीजों को देखना पड़ेगा। अगर जो किसी को बैक पेन है ऐसे में उसको सामने झुकने वाले अभ्यास नहीं करने हैं। हमें कोई जोर जबरदस्ती का अभ्यास नहीं करना है। कुछ लोग अभ्यास करते हैं कि हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग करना है, बहुत ज्यादा मुड़ना है। इस तरह से स्ट्रेचिंग वाले अभ्यास अधिक तब करें जब आप निरंतर अभ्यास करते हैं। तो आसनों की जब हम बात कर रहे हैं कि हमें कौन सा अभ्यास करना चाहिए तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अभ्यास की बात कही गई है। तो तीन अवस्थाएं अवस्थाओं के रूप में करें, बच्चों के लिए
1: जी.
0: बच्चों के लिए जितने भी एनर्जेटिक अभ्यास हैं उन सबको अभ्यास करना चाहिए
1: जी,
0: जितने
1: जी.
0: भी एनर्जी वाले अभ्यास हैं उनको करना चाहिए। और आसनों के बारे में बताया ही गया है कि इनको व्यायाम की तरह नहीं करना, व्यायाम
1: जी,
0: और जी, आसन जी. दोनों में बहुत फर्क है
1: जी, जी, जी.
0: व्यायाम जो होता है वो गति के साथ किया जाता है, आसन जो है वो हमें स्थिरता के साथ में और जिसमें सुख प्रतीत हो उस करते हैं, श्वास प्रश्वास की क्रम के साथ में करते हैं, किस क्रम में श्वास लेना है किस क्रम में श्वास छोड़ना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अभ्यास करना है और विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमारे शरीर की रोग आदि जो हैं उनकी अनुसार करना है। अगर जो हमें सामान्य रूप से बैक पेन की समस्या है तो हमें फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है, ठीक है। अगर जो बीपी की समस्या है तो हमें बहुत अधिक गति वाले अभ्यास नहीं करने हैं, ताकत वाले अभ्यास नहीं करने हैं जिससे कि हमारे श्वास प्रश्वास की गति बढ़े या हृदय की गति बढ़े, ऐसे अभ्यास नहीं करना है। अक्सर आजकल लोग कब्ज की शिकायत से परेशान रहते हैं
1: जी, जी,
0: तो कब्ज के लिए भी ऐसे अभ्यास नहीं करने हैं जिससे कब्ज बढ़े। जैसे सामान्य रूप से हम लोग कुछ कुछ योग अभ्यास जो बहुत ज्यादा प्रचलित हैं और लोग उसको बिना सोचे समझे बिना किसी के राय के और करने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो अभ्यास नुकसानदेह हो जाता है। कब्ज के समय में कपालभाति करते हैं तो कब्ज बढ़ जाता है। अब चिंता तनाव की स्थिति में कपालभाति करते हैं लोगों को, वो स्थिति में वो चीज बढ़ जाती है, उस वो रोग और बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें सावधानी के साथ अभ्यास करने चाहिए। सारे आसनों के लिए किसी एक्सपर्ट्स की जो होते हैं उनसे मदद के माध्यम से, किसी योग प्रशिक्षक की मदद से, और हमारे यहाँ ग्रंथों में इसके बारे में बहुत सहजता से बहुत अच्छे से लिखा गया है
1: जी, जी,
0: उसको
1: जी,
0: पढ़ करके भी सीख सकते हैं।
1: मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी प्रशिक्षक से सलाह लेकर ही और अपने शारीरिक जो आपकी क्षमता है जो आपकी शारीरिक स्थिति है उसके अनुरूप ही आपको योग करना है, तभी वो आपके लिए फायदेमंद होगा।
0: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
1: जी, क्या विशेष किसी स्थान की भी आवश्यकता है या अपने घर पर ही वो योग किया जा सकता है अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार?
0: देखिए सामूहिकता के साथ में जब कोई अभ्यास होता है तो उसमें बड़ा मन लगता है, तो प्रयास होना चाहिए कि हम सामूहिक रूप से अभ्यास करें
1: जी।
0: कई बार क्या होता है कि हम जब अभ्यास के लिए जाते हैं तो सामूहिक वाले स्थान के लिए कि हमारा थोड़ा सा आलस्य आ रहा, मन भी नहीं कर रहा है, चलो आज यार नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है कि भाई जाना पड़ेगा, सब लोग जा रहे हैं तो हमें करना है साथ में। और विशेष रूप से खुले स्थानों में करना बहुत अच्छा है। योग के लिए जो स्थान का महत्व बहुत बताया गया है, स्थान का महत्व ऐसा स्थान हो जहाँ पर खुला हो और थोड़ा सा हवादार हो, प्रकृति के बीच में, जैसे किसी प्रांगण में ऐसी जगह पर खुले स्थान पे, छत वगैरह पे, आपके घर के आसपास में कोई बालकनी वगैरह है वहां पर ही अभ्यास आप आराम से कर सकते हैं।
1: प्राणायाम का भी जिक्र होता है, क्या ये इसी का भाग है या इससे कुछ अलग है?
0: अष्टांग योग में एक क्रम बताया गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये आसन, आसन के बाद में प्राणायाम, ये क्रम इसलिए बताया गया आसन के बाद में प्राणायाम क्योंकि हमारा

0: शरीर एक पात्र के रूप में हमने उसकी बताई संज्ञा,
1: जी
0: और
1: जी
0: जब हम
1: जी
0: श्वास ले रहे हैं हमारे शरीर में अभी मांसपेशियों में रक्त का संचार पूरी तरह व्यवस्थित नहीं है, रात भर की अकड़न जकड़न हमारी बॉडी में है
1: जी।
0: और ऐसी स्थिति में हम प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राणायाम सिर्फ हमारे लंग्स तक जा रहा है, उसके बाद में आगे जाने के लिए जो खुला स्थान चाहिए उसके लिए एक पथ चाहिए वो पूरा अवरुद्ध है। तो सबसे पहले इसीलिए व्यायाम करते हैं, वार्म अप करते हैं, व्यायाम करते हैं, उसके बाद आसन करते हैं, उसके बाद में हम प्राणायाम के लिए आगे बढ़ते हैं। तो प्राणायाम जो योग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये आगे की अंतरंग योग की तैयारी के लिए बात हो रही है कि

लोक झंकार कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आज कलाकार हैं राजेश कुमार गौतम और साथी। अब इस विकास गीत के बाद सुनिए ये निर्गुण।

अभी आपने सुना राजेश कुमार गौतम और साथियों के स्वर में ये देशभक्ति गीत। इसके साथ ही आज का लोक संगीत का कार्यक्रम लोक झनकार अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के 3 पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
2: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक

0: तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
0: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। श्री वैष्णव आज जयपुर से खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 2,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने स्टोरिया फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड और बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड पर खाद्य उत्पादों के संबंध में 100% शब्द के इस्तेमाल से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने दोनों कंपनियों को अपने उत्पाद पैकेजिंग, वेबसाइटों और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस तरह के दावों को तुरंत हटाने का निर्देश भी दिया है। भारत 25 और 26 जून को हरियाणा में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ए ने 32 ओवर में 6 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। उधर मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। प्रतियोगिता में भारत ने अब तक अपने दोनों मुकाबले जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 पर। नए उड़ान कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 5:45 पर। इसमें डॉक्टर शशि कुमार अवस्थी शशि से जानकारी लीजिएगा योग से जीवन संतुलन इस विषय पर। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे

आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य खेले जाने वाले टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम आपको सुनवाएंगे खेल की समाप्ति तक। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। दिल्ली केंद्र से ही रात्रि 11:10 पर सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला का प्रसारण होगा। विषय रहेगा वन्य जीव। इस कार्यक्रम को हम रिले करेंगे। ये थे हमारी सभा के शेष कार्यक्रम। और अब लीजिए सुनिए कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। जिले की हलचल का प्रसारण होगा कल सवेरे 9:15 पर। कल आप सुनेंगे कुशीनगर और मिर्जापुर जिले की हलचल। मिर्जा हादी रुसवा नॉवेल उमराव जान अदा के आईने में, डॉक्टर जूही बेग से इस मौजू पर मकाला फरमाइएगा कल सवेरे 9:30 पर उर्दू प्रोग्राम में। और कलाम शायर में आफ्ताब अहमद अंसारी से चंद कलाम सुनेगा। पेशकश आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज की होगी। किसानों के लिए वरदान ड्रोन तकनीक, इस विषय पर रुचि तिवारी से भेंट वार्ता करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय कृषि चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 6:05 पर। स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक खिचड़ी, इस विषय पर चर्चा करेंगी नीना सोनकर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 7:00। घर आंगन कार्यक्रम होगा कल दिन में 1:15 पर। अरहर उत्पादन की उन्नत तकनीक, डॉक्टर राम भरोसे से इस विषय पर भेंट वार्ता करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय विज्ञान और किसान कार्यक्रम में कल दिन में 2:30 पर। कार्यक्रम युवा तरंग का प्रसारण होगा कल शाम 5:10 पर। नई उड़ान कार्यक्रम आप सुनेंगे कल शाम 5:45 पर। लोकायतन कार्यक्रम होगा कल शाम 6:30 पर। इसमें बदलते मौसम में सांस की बीमारियां, कारण और निवारण, इस विषय पर डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा से भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी। जल कृषि और समन्वित मत्स्य पालन, इस विषय पर डॉक्टर नूर सबूर रहमानी से भेंट वार्ता करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय खेती किसानी कार्यक्रम में कल शाम 6:50 पर। स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम में कल शाम 7:31 पर आप सुनेंगे डॉक्टर लोकेश शर्मा से भेंट वार्ता। विषय रहेगा बच्चों में थायराइड की समस्या और समाधान। आपसे भेंट करेंगे आशीष चतुर्वेदी। इसी कार्यक्रम में एक अन्य वार्ता सुनेगा डॉक्टर दीपेश्वर सिंह से। विषय रहेगा तनाव मुक्त जीवन और योग। हिंदी कार्यक्रम में कल रात्रि 8:00 गुणवत्ता परक शिक्षा और शिक्षकों के दायित्व, इस विषय पर अरुण कुमार निषाद से वार्ता सुनेगा। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी युवा तरंग।

दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, पर जड़ें योग की हमारे संग चल रही हैं। ये तन और मन को संतुलित कर रहा है। भले ही पुराना तरीका है, लेकिन आज भी पूरी दुनिया के लोगों पर असर करता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवा तरंग में, मेरे यानी आपके अपने रेडियो दोस्त अभिषेक के साथ।

0: साथियों, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाली एक प्राचीन भारतीय पद्धति है। आज पूरी दुनिया योग के महत्व को समझ रही है और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना रही है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और अनेक स्वास्थ्य समस्याएं आम हो गई हैं। ऐसे में योग हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की राह दिखाता है। नियमित योग अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और मन को शांति प्रदान करता है। आज 21 जून को विश्व योग दिवस का उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। योग हमें सिखाता है कि सच्चा स्वास्थ्य केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि तन, मन और विचारों का संतुलन है। चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग या जो भी लोग हों, योग हर आयु वर्ग के लिए लाभदायक है। तो इस योग विश्व योग दिवस पर हम संकल्प लें कि प्रतिदिन कुछ समय योग के लिए अवश्य निकालेंगे और अपने परिवार तथा समाज को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। और साथियों, आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान आए थे जिनका नाम है सुशील कुमार जी। उन्होंने काव्य पाठ तैयार किया है, तो आइए आपको सुनवाते हैं वो काव्य पाठ।
1: नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार आकाशवाणी के केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके समक्ष मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाह रहा हूं, सुनिएगा। कसमें खाकर कसम धरा कर, कसम धरा कर

गढ़ा है सपना, वर्षों का यह रिश्ता अपना, चुन चुन करके गढ़ा।

जग दुखों को छांट देता, जग दुखों को छांट देता, पर सुखों को बांट लेता। बस यही है रीत जग की, साथ स्वार्थ बस निभाए, फिर कहो कैसे तुम्हारे।

जीत करके जग ये सारा अंत खुद से हार बैठे, अश्रुओं का पान करके जिंदगी यह दान करके, अश्रुओं का पान करके जिंदगी यह दान करके, पी गए जग का हलाहल।

0: किनारे दर से खाली हाथ जाएं, फिर कहो कैसे तुम्हारे दर से खाली हाथ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो साथियों, आपने अभी सुना सुशील कुमार जी से एक काव्य पाठ, और अब चलते हैं आज के विषय पर। साथियों, आज का विषय है पोषण। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। पोषण केवल पेट भरने का नाम नहीं, बल्कि शरीर को आवश्यक ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्व उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है। सही पोषण हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करता है, तथा जीवन शैली की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। भारत जैसे विशाल देश में कुपोषण आज भी एक चुनौती बना हुआ है, विशेषकर बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पर्याप्त और संतुलित पोषण अत्यंत आवश्यक है। कुपोषण केवल कारण बच्चों का विकास प्रभावित होता है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और शिक्षा पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। श्रोताओं, संतुलित आहार में सभी खाद्य समूहों का उचित समावेश होना जरूरी है। हमारे भोजन में अनाज, दालें, हरे पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दूध और दुग्ध जिससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो, और अंडा यानी अन्य जितने प्रोडक्ट जो प्रोटीन वाले हैं वो हमारे खाने में बहुत जरूरी शामिल होने चाहिए। इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी भी पीना भी स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में फास्ट फूड की बढ़ती लोकप्रियता के कारण लोग पारंपरिक पौष्टिक भोजन से दूर होते जा रहे हैं। तली भुनी और अधिक चीनी व नमक वाली चीज़ों का अत्यंत सेवन, जैसे मोटापा, मधुमेह और रक्तचाप जैसी बीमारियां हो रही हैं। इसलिए हम अपने दैनिक भोजन में घर के बने ताजे और पौष्टिक खाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। बच्चों के जीवन के पहले 1000 दिन अर्थात गर्भधारण से लेकर 2 वर्ष की आयु तक का समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान उचित पोषण मिलने से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू करना और 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बेहतर लाभकारी है। इसके बाद 6 महीने की आयु पूरी होने पर बच्चों को माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार देना आवश्यक होता है। घर में उपलब्ध दालें, चावल, खिचड़ी, दलिया, फल और सब्जियाँ बच्चों के लिए पौष्टिक पूरक आहार का अच्छा स्रोत हो सकती हैं। तो दोस्तों, पोषण बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, हम बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए, हर उम्र के इंसान के लिए पोषण बहुत ज़रूरी है। तो इस विषय पर और भी बहुत सारी बातें आपसे शेयर करेंगे, पर उससे पहले सुनते हैं एक अच्छा सा गीत।

दोस्तों, जो एडल्ट्रेशन पीरियड होता है वो भी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस समय शरीर में तेज़ी से विकास होता है, इसलिए जो एडल्ट्रेशन पीरियड में लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम की आवश्यकता होती है, और ख़ासकर फीमेल्स में, क्योंकि फीमेल्स में इसकी वजह से एनीमिया की समस्या आम हो जाती है, जिसे आयरन युक्त भोजन और नियमित स्वास्थ्य जाँच के माध्यम से कम किया जा सकता है। और साथियों, गर्भवती महिलाओं को भी विशेष पोषण की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार ना केवल माँ के बल्कि गर्भवत शिशु के लिए स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम और प्रोटीन युक्त भोजन स्वस्थ मातृत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत सरकार द्वारा पोषण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जैसे आंगनबाड़ी सेवाएँ, मध्याह्न भोजन योजना और पोषण अभियान जैसी पहलें बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से कार्य कर रही हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाकर हम कुपोषण के खिलाफ लड़ाई और मजबूत बना सकते हैं। श्रोताओं, पोषण केवल सरकार या स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि परिवार में भोजन की सही आदतें विकसित करना, बच्चों को पौष्टिक आहार के महत्व के बारे में बताना और स्थानीय स्तर पर पोषण संबंधी जागरूकता फैलाना बेहद आवश्यक है। यह हमें यह भी समझाना होगा कि पौष्टिक भोजन हमें

महंगा नहीं होता। हमारे आसपास उपलब्ध दालें, मोटा अनाज, हरी सब्जियां, मौसमी फल, गुड़, चना और मूंगफली जैसे खाद्य पदार्थ कम लागत में भी भरपूर पोषण प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए जागरूकता और सही जानकारी के माध्यम से बेहतर पोषण प्राप्त किया जा सकता है। एक स्वस्थ समाज का निर्माण तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्वक पोषण उपलब्ध हो। स्वस्थ नागरिक ही राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होती है। इसीलिए हम सब मिलकर संतुलित आहार को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं और कुपोषण मुक्त भारत के निर्माण में योगदान दें। और साथियों, इस विषय के साथ अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। आइए सुनते हैं एक अगला गीत।

इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने दिमाग को सही तरीके से सही जगह पे यूज़ करें, क्योंकि चीज़ें आसानी से मिल रही हैं आपके हाथों में, पर इस चीज़ का सही इस्तेमाल करके ही आप अपने जीवन को इजी और सही बना सकते हैं। और साथियों चलते हैं अगले गीत की ओर, आइए सुनते हैं एक और गीत।

जिसमें सुरक्षा, त्याग, अनुशासन और अथाह स्नेह समाया होता है। वे अक्सर अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं बल्कि अपने कामों में व्यक्त करते हैं। पिता दिवस हमें उस व्यक्तित्व के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है जो हमारे सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। एक पिता केवल परिवार का आधार नहीं बल्कि जीवन का पहला मार्गदर्शक, प्रेरक और संरक्षक भी होता है। उनके संघर्ष, उनके त्याग और उनकी निस्वार्थ प्रेम को शब्दों में बांध पाना आसान नहीं है। वे स्वयं धूप में चलकर भी अपने बच्चों के जीवन में छांव बनकर खड़े रहते हैं। तो इस पिता दिवस पर हम अपने पिता के प्रति प्रेम, सम्मान और आभार व्यक्त करें तथा उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें। तो आइए दोस्तों, इस विषय के साथ आगे बढ़ते अगले गीत की ओर और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, भारत जैसे डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गांवों तक इंटरनेट डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ रही है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। डिजिटल तकनीक केवल सुविधा का साधन नहीं, बल्कि विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है। बस ये डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, और ख़ासकर इसको पॉजिटिव और अच्छे वे में यूज़ करें। चाहे वो क्रिएटिव फील्ड हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड में आप पॉजिटिव तरीके से इस चीज़ का यूज़ करें। और साथियों, आज है फादर्स डे, पिता दिवस। एक ऐसा

तो साथियों ऐसे ही समय पर आप हमारे कार्यक्रम को एंजॉय कर सकते हैं और ये कार्यक्रम हर दिन प्रस्तुत होता रहेगा। अगले दिन आप इस कार्यक्रम को सेम समय पर सुन सकते हैं। और आज के लिए मुझे यानी अभिषेक को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे आईसीसी वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य खेले जा रहे टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। इस मैच का आंखों देखा हाल हम आपको पुनः सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचारों के बाद। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
2: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: PLI है ना?
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
5: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
6: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
7: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
8: बिल हो रहा है।
7: चल अपना

0: सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग करता है प्रशस्त।

0: प्रदेश में भी उत्साह के साथ मनाया गया योग दिवस। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनभवन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास कर निरोगी रहने का दिया संदेश। मुख्यमंत्री ने महोबा और हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, जल्द ही मिसाइल हब के तौर पर जाना जाएगा बुंदेलखंड। और प्रदेश के 59 जिलों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न। करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। परीक्षा केंद्रों पर रहे सुरक्षा के खास इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश ही नहीं दुनिया भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह से देश की अगुवाई की। श्री मोदी ने योगाभ्यास कर योग को दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाने का संदेश दिया और कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: प्रदेश में भी योग दिवस के अवसर पर सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के झांसी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और योग अभ्यास कर निरोगी रहने का संदेश दिया। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की समृद्ध विरासत योग को वैश्विक मान्यता दिलाकर हमें गर्व की अनुभूति कराई है।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सबके लिए एक विजन प्रस्तुत किया है।
0: इस अवसर पर लखनऊ के जनभवन में महिला योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाओं ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पर हुए कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, मेरठ, अमरोहा, चित्रकूट, अयोध्या, सीतापुर, जौनपुर, गोरखपुर, बाराबंकी, रामपुर, मैनपुरी और अमेठी सहित सभी जिलों में प्रदेश सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों, कॉलेजों और स्वैच्छिक संस्थाओं में सामूहिक योगाभ्यास और योग जागरूकता कार्यक्रम भी हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुंदेलखंड के महोबा में 697 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 88 विकास परियोजनाओं और हमीरपुर जिले में 636 से अधिक लागत की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी अपनी विशेष पहचान बनाई है। डबल इंजन सरकार की नीतियों से बुंदेलखंड विकास की राह पर लगातार अग्रसर है। महोबा जिले की आध्यात्मिकता, ऐतिहासिकता और वीरता की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि महोबा गुरु गोरखनाथ की साधना स्थली है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से गोरखगिरी पर्यटन स्थल के नए केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। श्री योगी ने कहा कि गोरखगिरी में रोपवे लगाया जाएगा और इसे एडवेंचर टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस क्रम में विभिन्न विकास योजनाओं से बुंदेलखंड को आच्छादित किया गया है। श्री योगी ने कहा कि जल्द ही बुंदेलखंड मिसाइल हब के तौर पर भी जाना जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया और ये तो उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया और उसका हब हम चाहते हैं आने वाले समय में हमारा महोबा बने, हमीरपुर बने, चित्रकूट बने, झांसी बने।

0: ऊर्जा के केंद्र के रूप में विकसित हो।
1: और इसलिए विकास की योजनाओं को लेकर के
0: औद्योगिक निवेश के लिए भी हम लोगों ने एक औद्योगिक क्लस्टर यहाँ विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। करबई बांध के जिन किसानों ने जमीन दी थी, वर्षों से इनकी भूमि का पैसा नहीं मिला था, उसको निस्तारित करके उसका भुगतान की कार्रवाई को संपन्न किया गया।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में जल समाधान, संरक्षण, पर्यटन की संभावनाओं और कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए डबल इंजन सरकार काम कर रही है। इस अवसर पर महोबा के विकास को समर्पित लघु फिल्म भी दिखाई गई। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के 59 जिलों में आयोजित नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज शाम शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। पेश है एक रिपोर्ट।
3: देश के विभिन्न जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर आज करीब 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ये मेडिकल प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश सहित देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई। इस परीक्षा में 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद की वजह से रद्द कर दी गई थी। NTA ने परीक्षा को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और नकलविहीन तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए थे। सभी केंद्रों पर CCTV कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। केंद्रों पर मैजिस्ट्रेट और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात थे। अभ्यर्थियों को आवागमन में दिक्कत न हो, इसके लिए उत्तर रेलवे विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। वहीं प्रवेश पत्र दिखाने पर अभ्यर्थियों को राज्य परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट भी दी जा रही है। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
2: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इन सभी से संवाद करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई योजनाएं जारी हैं। उन्होंने खिलाड़ियों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि वो खिलाड़ियों के सहयोग के लिए तैयार हैं, ताकि प्रयागराज सहित सभी जिलों के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकें। राज्य सरकार ने आदिवासी बाहुल्य सोनभद्र जिले में 257 करोड़ रुपए लागत से 86 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाने का फैसला किया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने आज ये जानकारी देते हुए बताया कि सड़क निर्माण के संबंध में जल्द ही सर्वे और टेंडर प्रक्रिया संपन्न कराकर सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन सड़कों के बन जाने से सीमावर्ती 4 राज्यों से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इस कनेक्टिविटी से उद्योगों के लिए कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई में लोगों को आसानी होगी। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज शाहजहांपुर के ग्राम हथौरिया में खनौत नदी पर बनने वाले सेतु निर्माण परियोजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री खन्ना ने कहा कि खनौत नदी पर बनने वाला ये पुल क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने कहा कि शाहजहांपुर को नगर निगम और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा है कि मौसम की अनिश्चितता और मानसून की संभावित अनियमितता को देखते हुए प्रत्येक प्रदेशवासी को जल संचयन और जल संरक्षण के प्रयासों से जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि पानी की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कैच द रेन अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए और वर्षा जल संचयन को व्यापक जन भागीदारी से जोड़ा जाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग करता है प्रशस्त। प्रदेश में भी उत्साह के साथ मनाया गया योग दिवस। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनभवन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास कर निरोगी रहने का दिया संदेश। मुख्यमंत्री ने महोबा और हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, जल्द ही मिसाइल हब के तौर पर जाना जाएगा बुंदेलखंड। और प्रदेश के 59 जिलों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न। करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। परीक्षा केंद्रों पर रहे सुरक्षा के खास इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। बस अब से थोड़ी ही देर बाद।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे आईसीसी वेमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य खेले जा रहे T20 मैच का आंखों देखा हाल। इस मैच का आंखों देखा हाल हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 9:30 से समाचारों के बाद। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी।

0: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है।

0: की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रेय शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: यह तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या 0 सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने के 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई $6 अरब की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तर्क

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दोस्त

कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की

0: संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर मालिक गलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of maritime strength in the modern world, stressing that strong maritime capabilities are a deciding factor for countries' economic and strategic influence. He stated that India fully understands this reality and is preparing itself accordingly.
2: 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है।
1: The Prime Minister commissioned 3 indigenously designed and built naval ships, an advanced stealth frigate INS Dunagiri, a large survey vessel INS Sanshodhak, and an anti-submarine warfare shallow watercraft INS Agre at the Shyama Prasad Mukherjee port in Kolkata today. Mr. Modi noted that more than 200 MSMEs contributed to their construction, generating substantial employment and economic activity across the country. Highlighting recent achievements, the Prime Minister said more than 40 indigenously built warships and submarines have been inducted into the Indian Navy over the past few years. The National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026 re-examination for admission to undergraduate medical courses was conducted today amid tight security arrangements. The National Testing Agency, NTA, said more than 20 lakh candidates appeared for the re-examination at 5,440 centres in the country and 14 centres abroad. The examination was conducted in 13 languages, including Hindi and English. The NTA said that extensive arrangements were made for all candidates, including more than 10,000 persons with disabilities. In Tamil Nadu, 7 people have been killed and more than 70 workers affected after an ammonia gas leak at a seafood export company in Periyapalayam today. According to preliminary reports, the death toll may rise as rescue and medical operations continue. The NDRF, along with specialized chemical, biological and nuclear response teams, launched an immediate rescue operation and worked

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए व्यापार में सुगमता, सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसपी शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: In the last 12 years of the NDA government, Prime Minister Narendra Modi has always emphasized that ease of doing business is one of the major priorities of the government. And the government has relentlessly been working towards this goal so that business opportunities can be democratized, more and more people can become a part of the nation building exercise. And of course, the concept which has been reiterated time and again, that instead of job seekers, more and more people become job creators. So to discuss this very important topic of ease of doing business, how it has strengthened India's business framework in the last 12 years, we have two economic experts with us, Mr. Dilip Chinoy and Dr. S.P. Sharma, economic experts. A warm welcome to you on Akashvani.
2: Thank you.
1: So, Dr. Sharma, पहले आपके पास आते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से व्यापार जगत बढ़ा है, जिस तरह से ज्यादा नए व्यापारों को एक तरह से प्रोत्साहन मिला है सरकार की ओर से, जो रिफ्लेक्ट होता है स्टार्टअप्स, अगर हम देखें 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब 220,000 स्टार्टअप्स है हमारे देश में। सो एक स्टेटिस्टिक जस्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव कि किस तरह से ग्रोथ हुआ है। सो आप कैसे देखते हैं 12 वर्षों को, बिजनेस एनवायरनमेंट जो इंप्रूव हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या लगता है आपको सरकार के कौन से एफर्ट्स, अगर आप टॉप 2 हमें बताएं इस दिशा में जो रिफॉर्म्स परिवर्तनकारी रही हैं?
2: जी बिल्कुल, सोनू जी आपने सही बताया कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं जो पिछले 12 वर्षों में, जिन्होंने एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू दी है हमारे इकोनॉमी को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग को और हमारे ओवरऑल जो देश का जो जीडीपी है उसको आगे बूस्टअप किया है। तो सरकार का जो पहल था, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, मेक इन इंडिया से, क्योंकि मेक इन इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बिना कुछ भी नहीं था। तो सरकार ने मेक इन इंडिया को अनाउंस करते ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, बहुत बल दिया, जिससे कि हम बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। अगर हम देखें कि 2014 में जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक था वो 143 था, वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आता था उस टाइम पे, तो जिसमें हम 143 थे, बहुत नीचे थे, मतलब लगभग जो जितनी भी इकोनॉमीज हैं, जो भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं या फिर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं,

0: इवन के डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हमारे से काफी ऊपर थी. तो उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर पूरा जोर दिया, इज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया. तो हम धीरे धीरे करके 2020 तक जो थे 63 तक आ गए थे. हम अपना रैंकिंग जो था सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करते हुए 63 पे आए. उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना इंडेक्स बंद कर दिया, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस. उसके बाद जो स्टेट्स ने उन्होंने अपना ब्रैप रिफॉर्म्स चालू किए, बिजनेस रिफॉर्म्स असेसमेंट प्लान जो था. उसके बाद उसमें बहुत तेज गति से काम हुआ, स्टेट्स में एक बहुत हेल्दी कंपटीशन हुआ, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक पैशन बन गया, जो लोगों में, बिजनेसेस में, सरकार में, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स हों, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो होनी शुरू हो गई. जो उसके पिलर्स हैं खास करके, जो एक हम बात करते हैं कि एक फेसलेस, पेपरलेस और फिर लेसर प्रोसीजर्स एंड लेसर कंप्लाइंसेस, ये चार जो पिलर्स हैं, इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू दी है, जिससे हम आज अगर हम देखते हैं हमारे स्टार्टअप्स, जो आपने बात की कि लगभग कोई 360 स्टार्टअप्स थे, उसके बाद अभी 220,000 हैं. अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अभी हमारा लास्ट ईयर का अगर हम उसका ग्रोथ रेट देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रू मोर देन 10%. सो डबल डिजिट ग्रोथ इज कमिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो ये सब चीजें जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से ही हो पाई, जैसे कि हमारा जो इन्वेस्टर है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ. और जो FDI आना शुरू हुआ, जो 2019-20 के बाद एक FDI को ब्रेक थ्रू मिली, और अभी हम 1 trillion से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव FDI अट्रैक्ट कर चुके हैं. हमारे देश में 1 trillion से ज्यादा का FDI का एक क्यूमुलेटिव जो भंडार है वो हो चुका है. और अभी लास्ट ईयर ही हमारा FDI $95 billion था. तो लगभग हम, मेरे ख्याल से इसी वर्ष में हम $100 billion का एक FDI डेस्टिनेशन बनने जा रहे हैं. सो दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ अवर इज ऑफ डूइंग बिजनेस विच हैज सपोर्टेड द मैन्युफैक्चरिंग, अवर FDI एंड अवर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू मूव फॉरवर्ड एंड टू बिकम मोर एंड मोर रेजिलिएंट इन द ग्लोबल इकोनॉमी.
1: एब्सोल्युटली. सो मिस्टर चनॉय, Dr. Sharma has extensively explained that the ease of doing business has become the mantra for the push that has come to the manufacturing sector, to the Make in India initiative of the government and the GDP growth. Would you say that the government's focus has gradually shifted from a compliance-heavy system to a facilitation-driven ecosystem? How do you see this basic mindset change, or you can say paradigm shift, in how the government is taking a collaborative and inclusive approach?
2: If you look at the whole ecosystem, right, earlier business was always viewed with suspicion.
1: Yes.
2: You were always seen as being a tax evader, not filing returns, you know, always evading and finding ways to circumvent the law, whatever it is.
1: Mm-hmm.
2: A very significant change has happened in this last 12 years, that business has been recognized. I think for the first time, the Prime Minister actually talked about businesses being responsible and contributors to the economic growth in his Independence Day speech. It's never happened before. The second thing, which is very important to actually understand in this whole context, was that there were a whole set of small things, like if you didn't file certain data under certain law, or if you did not submit a return by a certain time, it was imprisonment. So all that has gone away. A lot of that has gone away. Some things still remain. You've had two versions of the Jan Vishwas Bill, 1.0 and 2.0. So you've actually looked at this. The third thing which is there is that they've allowed self-certification.
1: Yes.
2: Right? For the common man, what does self-certification mean? It means if you're doing something, if you're applying anywhere, you can take a copy of your Aadhaar card and self-attest it.
1: Mm-hmm.
2: This was not possible in earlier regimes. You could take a lot of documents and self-certify them. If you were to file certain returns, initially you had to get it verified or something by someone. Now you can actually do it on yourself. The third thing is, I remember very clearly for manufacturing, and taking S.P. Sharma's point earlier, there were 1,947 compliances required and things to be filled by a particular company in the manufacturing sector over a period of year. Over the reforms, this is actually reduced. The same compliance was for a large company and for a medium and small company. So that is what has happened here. But I think you must see the reforms and the thing from the view of a street vendor to a large businessman.
1: Yes.
2: A medium scale person and a street vendor, because of the digitization and the bank accounts thing, has now got access to credit. This was not available earlier. So respect, trust, accessibility, and the opportunity to start a fresh business, as he mentioned, the startups.
1: Yes.
2: And as you talk about new businesses, MSMEs, to grow,

0: agreements. Ninth is in process since the last 6-7 years. And these free trade agreements will become more fruitful with more and more ease of doing business.
1: Yes.
0: So as already we have undertaken many reforms for the ease of doing business, so this is the right time to move forward to become more and more strong in the global economic system with the free trade agreements with the promising economies. So this is the support of ease of doing business that the government is able to sign free trade agreements with the many competitive economies, in the advanced economies.
1: Yes.
0: Like 38 economies are advanced economies in the all free trade agreement which we have signed during the last 6-7 years.
1: Absolutely.
0: With a great confidence.
1: Yes.
0: That yes, we have a strong ease of doing business. We can compete with them in the global market or even in the domestic market, as ease of doing business has created a great level playing field in the economy. So going forward, I believe now we are very much capable to move forward and to become a great player in the global economy, to compete with many countries. Like Shunai mentioned that our PMI is now at the top of the competitive economies.
1: Absolutely.
0: We are, our PMI is higher than any economy in the top 10 economies, like our services PMI, our manufacturing PMI. Even despite the such kind of headwinds at the global level, our PMI is more and more resilient in the global economic
1: system.
0: Absolutely.
1: So, Mr. Chaloy, जैसा कि अभी डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हम और आपने भी कहा कि इतने हम आपदाओं से गुजरे, इतनी मुश्किल सिचुएशंस जो इंटरनेशनल लेवल पर हुई, चाहे वो पैंडेमिक हो, चाहे ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, बट फिर भी हमारे आर्थिक मजबूती बनी रही है. मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो सरकार के फ्लैगशिप स्कीम्स रही हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया या पीएम मुद्रा योजना, जिसमें आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए कोलैटरल फ्री बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है, या जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन सिस्टम बनाया गया था सरकार द्वारा, इनको आप कितना कहें कि क्रांतिकारी मानते हैं, जिन्होंने सबको, जिनकी भी ड्रीम थी एक व्यापार शुरू करने की, उसे पूरा करने का एक मौका दिया.
2: सुरेश जी, अगर आप देखें तो अगर एक बिजनेस शुरू करने के लिए, और आपने एसपी शर्मा से ये पूछा था कि क्या बदला है, ठीक है, तो पहला जो चीज बदला, जैसे उन्होंने समझाया कि आप घर बैठे बैठे, और आपने पूछा ऑनलाइन का, आप घर बैठे बैठे अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं और आप टैक्सेस भर सकते हैं. तो आपका जो समय बर्बाद होता था लाइनों में खड़े हुए और ये इंटरेक्ट करने के लिए, वो एक बहुत कम सा हो गया है. अगर आप देखें जो स्कीम्स जिसकी आपने बात की थी, तो ये स्कीम्स जो आपने इस तीन स्कीम्स की बात की थी ना, ये एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए है. जो आप देखें तो जो मुद्रा स्कीम है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और उनके लिए जो छोटे छोटे अमाउंट्स जो बैंक्स में एक बहुत अविश्वसनीय होती थी, क्योंकि बैंक के लेंडिंग पोर्टफोलियो में जिसकी उनको कॉस्ट पड़ती थी उस लोन को देने के लिए, वो उनका इंटरेस्ट कवर नहीं करता था. तो गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम एक तरीके से लागू किया, और इनमें ना मुद्रा स्कीम तो एक ही उस वर्ग के लिए, ठीक है, अलग अलग स्कीम जो है, स्ट्रीट वेंडर्स के लोन स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्कीम है. तो इस रिफॉर्म की एक खासियत है कि उन्होंने, और किसान क्रेडिट कार्ड उसको मत भूलिएगा,
1: जी जी,
2: उन्होंने पूरे जो इकोनॉमी में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है, लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट बिजनेसमैन एंड एफडीआई के लिए, हर कदम पे उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनकी क्या जरूरत है, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसको कारीगर को एक लोन मिलता है अपने टूल्स को करने के लिए और एक उनको स्किलिंग करते हैं. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. और जनधन योजना और जो आधार और मोबाइल का जो ट्रिनिटी है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल में लोगों की जिंदगी बदल दी है. और साथ में क्योंकि वो छोटे छोटे अमाउंट्स जो जनधन योजना में आए थे और जो करोड़ों अकाउंट्स खोले गए थे, अगर उसकी आप पूंजी जोड़िए तो वो सारा जो पूंजी है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के काम आई है. वो पहले तो एक अपने घर में रखी रहती थी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती थी. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आज के जमाने में 2012-13 में आप पूछे कि आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे, तो लोग कहते थे इंजीनियर, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का नाम ही नहीं आता था. और अगर किसी को कहते कि आप बिजनेस शुरू करें, तो माँ बाप कहते कि नहीं बेटा, बेटी आप मत जाओ इसमें, आप एक नौकरी करो. एक माइंडसेट चेंज हो गया है देश भर में, गांव गांव में. और अब एक एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ही इज्जत है और देश के लिए बहुत जरूरी.

0: और दूसरी जो उसके साथ में आया है, और आपको ये आंकड़ों से नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप बिजनेस में फेल करते हो कि आपकी बिजनेस चले नहीं, तो पहले ही एक बहुत ही बुरी नजरिए से देखा जाता था. आप कहते हैं नहीं बेटा, आप इस फेलियर से सीखो और दूसरा बिजनेस शुरू करो.
1: बिल्कुल
0: और ये एक खास, पहले ये रिफॉर्म्स होने से पहले ये एक बहुत खास डिफरेंस था भारत में और अलग अलग इकोनॉमीज में. अब इंडिया में भी वो एक तरीके से आ गया. और जो ग्लोबल स्तर पे अभी आप देखें तो मेडिकल डिवाइसेस में, ड्रोन्स में, कई कई सेक्टर्स है, स्पेस में यंग स्टार्टअप्स जो हैं, इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस स्पेस में देखे तो इसरो से कम्पीट कर रहे हैं, डिफेंस में DRDO से कम्पीट कर रहे हैं, मेडिकल में मेडिकल लेबोरेटरीज के.
1: और कम्पीट की जगह शायद हम कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन का एक सरकार का भी है कि उन्होंने सारे सेक्टर्स खोले हैं और वेलकम किया है.
0: बिल्कुल, आपने इमरजेंसी लोन फैसिलिटी किया था, लेकिन आप वो देखें, वो आत्मनिर्भर भारत का कोविड के अंतर्द्वान एक स्कीम था, जो कोविड में गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, NGOs और सिटीजन ने जो कोलैबोरेट किया था. अभी देखिए, कोविड के पहले तो हम ना PPE किट्स बनाते थे, ना वैक्सीन बनाते थे, ना वेंटिलेटर बनाते थे. पूरे गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ हमने वैक्सीन यूज की, अपनी ओन वैक्सीन, ठीक है. PPE किट्स में हम नंबर 1 बन गए थे, वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया था और कई एक तरीके से थे. और जो स्कीम्स आत्मनिर्भर 1, 2, 3, 4 मेरे ख्याल से थे, उसमें जो स्कीम्स दिए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इंडिया को स्टेबलाइज करने के लिए. और उसके खास बात की रिफॉर्म्स से अगर आप देखें तो जो हमने परसेंटेज ऑफ GDP उसमें लगाया था वो और देशों से बहुत ही कम था. लेकिन फिर भी अनाज 80 करोड़ लोगों को एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, विमेन के लिए, अलग अलग जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है जो आपके श्रोता सुन रहे होंगे वो अपने बिल्कुल संबंध करेंगे कि हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कुछ हुआ है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं.
1: सो हम मान सकते हैं कि ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है. जैसे आपने जन विश्वास बिल की अभी कुछ समय पहले बात की थी कि काफी सारे डिक्रिमिनलाइज हुए हैं ऑफेंसेस और सजा घटाई गई है ताकि एक जो वो डर का जो माहौल था वो ना हो. एक और जो अभी डॉक्टर शर्मा ने बात करी, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान BRAP जो 2015 में शुरू किया गया, और उसका एक ग्रासरूट्स लेवल की बात कर रहे हैं, ग्रासरूट्स लेवल पर डेवलपमेंट पे जो बल दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये BRAP है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान. सो आपको लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है भारत जैसे देश में जो इतना विस्तृत है, इतना विविध है, और हर एक ज्योग्राफी की अपनी कोई प्रोडक्ट है या अपना कोई ऐसा एक यूनिक प्रोपोजिशन है जो मोनेटाइज किया जा सकता है.
0: बिल्कुल सही कहा आपने सुनो जी. और उसमें आप देखें तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और एक कंपेटिटिव फेडरलिज्म है. पिछले 12 सालों में आपने दोनों देखे. तो मैं आपको एक दूसरी ओर ले जाता हूं, जो हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हम उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं. उसमें क्या किया, उसमें एक डैशबोर्ड बनाया कि भाई ये आपके इंडिकेटर, उसमें बिजनेस का भी इंडिकेटर है और एक साल में सबसे ज्यादा कौन तरक्की कर रहा है उसको एक अवार्ड दे रहे थे. तो वहां के जो कलेक्टर्स हैं और वहां ग्रास रूट लेवल पे आप देखें तो वो डैशबोर्ड को देखते थे और कहां कोई अच्छा कर रहा है उसको एक लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करने का देखते थे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली उससे सीख सकते थे. अब क्या हुआ है कि ऑल्दो ये वर्ल्ड बैंक ने अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बंद कर दिया है, बट इंटरनली भारत में ये कंपेरेटिव करते हैं स्टेट्स में कौन क्या कैसे रिफॉर्म कर रहा है
1: जी,
0: उसको कंटिन्यू हो रहा है. तीसरी जो चीज है, कई स्कीम्स बजट में आए हैं, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे आप इन्वायरमेंट पे देखें, या कई स्कीम्स हैं जिसमें अगर स्टेट रिफॉर्म करेगा और स्टेट कुछ करेगा उसके साथ ही आपको सेंटर से फाइनेंसिंग मिलेगा. 2014 के बाद हर स्टेट में एक इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है. हर स्टेट ये प्रेजेंट करना है उन्हें क्या रिफॉर्म किए हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किए हैं, और इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स का होता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करे कैटलिस्ट हो गया है कि रिफॉर्म करने का.
1: और ये धुरी यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ बहुत बढ़ी है. डॉक्टर शर्मा, अगर आपके पास आए तो मार्केट एक्सेस पर भी बहुत जो रिफॉर्म्स हुए हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन. ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हैज बीन अ बिग एनेबलर इन दीज 12 इयर्स, क्योंकि उसको बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है. जो अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा लाई गई, या जो ONDC है, वन नेशन डिजिटल, एंड लॉजिस्टिकल रिफॉर्म्स जो हुई है लॉजिस्टिक्स में, उनको आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं MSMEs के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अपना जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको पहुंचाने के लिए मार्केट.

0: तक।
1: जी बिल्कुल सोनू जी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के साथ साथ सरकार ने नई पॉलिसीज भी दी है, जैसे कि आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात की है, उसमें बायर्स और सेलर्स, जो आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको कैसे आगे सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसकी बायर कैसे बन सकती है।
0: yes.
1: और ONDC प्रोवाइड करता है कि जो ई कॉमर्स है आपका, उसमें बायर्स एंड सेलर्स मिलकर आपस में कैसे अपने जो बिजनेस है उसको आगे ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्या है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आपको बायर जो है इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं है, आप एक प्लेटफॉर्म पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं, तो फिर बायर आपको अपने आप ही मिलेगा। तो जैसे आपने रिफॉर्म्स की बात की, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार लेके आई जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट होता था 14% ऑफ GDP होता था, और इस पॉलिसी के साथ साथ जो रिफॉर्म्स हुई, जो सरकार ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स की, जो रेल कनेक्टिविटी में जो रिफॉर्म्स की, जो एयर कनेक्टिविटी में रिफॉर्म्स की, और जो वाटरवेज में जो रिफॉर्म्स की, तो उनके मद्देनजर जो अब हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है दैट इज नाउ 9-10% ऑफ GDP, तो उसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 6-7 वर्षों में। और साथ साथ में जो मैं बताना चाहूंगा कि PLI स्कीम, जो एक ऐसी स्कीम है जो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, सरकार ने ऐसे 14 सेक्टर्स चूज किए जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं, जहां पे सरकार ने इंसेंटिव बेस्ड उनको स्कीम में आने को बोला,
0: जिसमें yes,
1: जिसमें कि आप देखेंगे कि उस स्कीम के मद्देनजर हमारा जो एक्सपोर्ट है बहुत इंक्रीज हुआ है। नाउ वी आर मेकिंग न्यू एंड न्यू रिकॉर्ड्स इन आवर एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी। हमारा जो एक्सपोर्ट है पिछले 6-7 वर्षों में हर एक साल नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इवन के पिछले साल भी जब ये हेडविंड्स थे, जब टैरिफ हेडविंड्स भी थे, जब आपका ये जियोपॉलिटिक्स भी चरम सीमा पे चला गया, तब भी हमारा जो एक्सपोर्ट है उसने नया कीर्तिमान $863 बिलियन का स्थापित किया, जिसमें सर्विसेज और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स दोनों है। और जैसे चिनॉय साहब ने भी बात की कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अगर हम पीछे 2020 के बाद कोरोना पीरियड के बाद का अगर हम अपना ग्रोथ रेट देखते हैं, दैट इज मोर देन 7% ऑन एन एवरेज। इमीडिएट कोरोना के बाद हम 9.7% पे ग्रो किए, उसके बाद मोर देन 8% पे ग्रो किए, उसके बाद हम 7.3 पे ग्रो, अभी जो टोटल अगर हम देखेंगे दैट इज मोर देन 7% इन अ रो, तो एक बहुत बड़ी चीज है। जबकि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 6% से गिर के अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है वो लगभग कोई 2.7% रहेगी या 2.6% रहेगी। तो कितना ग्लोबल ग्रोथ में कितनी डिसेलरेशन हुई, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट जो है इंटैक्ट रहा। अभी भी जो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स हैं वो 6.6% पे, हमारे RBI का एस्टिमेट 6.5% पे, और हमारे जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एट अराउंड 7%। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अवर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अवर एक्सपोर्ट्स, अवर रिफॉर्म्स प्रोसेस एंड अवर रिफॉर्म्स फॉर दीज ऑफ डूइंग बिजनेस गो हैंड इन हैंड। ये चारों चीजें मिलके एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू जो है हमारी इकोनॉमी को दे रहे हैं। हमारे आगे लक्ष्य है, जैसे हम बात करते हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे 2047 तक, वो एक बहुत ही राइट डायरेक्शन में हमारी जो ग्रोथ हो रही है। जैसे 2030 का हमारे अनुमान है कि हमारा एक्सपोर्ट है जो हम $2 trillion का एक्सपोर्ट देखना चाहते हैं, जिसमें मर्चेंडाइज 1 trillion होगा, सर्विसेज 1 trillion होगा, और हमारी जो इकोनॉमी है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, और जो हमारा GDP का साइज ऑफ GDP दैट विल ऑल्सो क्रॉस 5 trillion। तो कुल मिला के जो स्टेटिस्टिक्स है और जो रिफॉर्म्स है और जो क्वालिटेटिव जो डेवलपमेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी सरकार ने एक भव्य स्कीम अनाउंस की है, उसके पहले सरकार ने जो एक इंसेंटिव्स दिए एक्सपोर्टर्स को के मद्देनजर के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, भले ही हम डायरेक्ट तौर पे इंसेंटिव्स नहीं दे सकते, फिर भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कि उनको जो ये वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसका जो इम्पैक्ट है कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। तो इन सब चीजों में सरकार बहुत तेज गति से आगे रिफॉर्म्स कर रही है। और जैसे चिनॉय साहब ने एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की बात की
0: जी,
1: जो सरकार ने कोरोना के टाइम पे अनाउंस की थी, वो बहुत सक्सेसफुल थी। अब वेस्ट एशिया क्राइसिस में सरकार ने उस स्कीम को दोबारा अनाउंस किया, 2,55,000 करोड़ का जो स्कीम है, खास करके जो MSME है उनको सपोर्ट करेगा, उनका जो वर्किंग कैपिटल है उसको सपोर्ट करेगा। नाउ दे आर रेजिलिएंट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर लुकिंग हैड टू बिकम मोर एंड मोर प्रॉमिसिंग इन द इकोनॉमिक सिस्टम।
0: Okay, another point, Mr. Chinoy, which I would like your, view on, that logistics, PM Gati Shakti, where they've taken a multimodal approach to physical connectivity. Then there is Logistics Data Bank 2.0, the way the technology has been used, where you can just track real-time cargo. Or there are so many reforms for faster custom clearances and stronger export support. How important are these for creating confidence in India as an investment destination, both for domestic and for the foreign investors?
2: So, Sunil ji, you've talked of 3 different things and I'll answer each one separately. So, first, if you look at it, one of the challenges in the whole system was that,

0: never been better. Some people may say some more changes are going to have required, but this is always work in progress. And the interesting part of this whole system is that the government is willing to listen to what changes need to be made. If you give a suggestion, it is looked at, it may be accepted, but the whole idea here is ease of doing business and ease of living.
1: Absolutely. In fact, we are totally running out of time. Would you like to say something, Dr. Sharma?
2: Yes, Sonuji, I would like to mention one more promising area, which is the artificial intelligence, which is promoting and supporting the business's trajectory and making them more and more easier. अगर आप देखें तो जो हम पहले बहुत बैकवर्ड माने जाते थे कि हम टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में अभी हम सबसे आगे हैं.
1: Yes.
2: हमारी जो ग्रोथ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अडॉप्शन में दैट इज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन एनी एडवांस्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम.
1: तो ये एक ब्रेकथ्रू मेजरली टू
2: यस जो सरकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन जो है जो सरकार ने लगभग कोई 10,000 करोड़ के फंड से शुरू किया तो आज वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ा हुआ है. अब कंपनीज नाउ आर कमिंग फॉरवर्ड टू अडॉप्ट मोर एंड मोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टू बिकम मोर एंड मोर प्रोडक्टिव एंड कंपेटिटिव इन द नॉट ओनली इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी बट एट द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम.
1: डॉक्टर शर्मा, मिस्टर चनोय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.
0: थैंक यू.
2: थैंक यू.
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे व्यापार में सुगमता, सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा. इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसपी शर्मा. परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद. यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं.
4: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं. रात्रि के 11:45 और 15 सेकंड हुए हैं. अब हमारे आज के कार्यक्रम यहीं संपन्न होते हैं. इसी मीटर पर कल प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे. तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए. शुभ रात्रि. जय हिंद.